0: नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
1: आज जब दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है।
2: He's a very smart man and a great

0: convicted by the POSCO court, leading to a fresh probe. Meanwhile, Vijay's TVK has attacked the DMK, questioning why the case was earlier sought to be closed. And of course, attention on the DUSU elections in Delhi University. The Delhi University's high-stakes student union battle now enters the final stretch with counting on votes today for the all four Delhi University student union posts. It is a three-way contest between ABVP, the NSUI and the SFI-ISA alliance, with the ABVP looking to repeat its 2025 performance when it won three of the four top posts. The NSUI, which took the vice president's post last year, is looking to flip that scorecard. But there is another political storyline running alongside the DUSU verdict. As students await their mandate in Delhi, Rahul Gandhi is taking his Chhatro Ki Goonj campaign to Indore today, pitching student issues including jobs and paper leaks. The DUSU results will be keenly watched, with many seeing it as a verdict on Rahul's student outreach.
1: दो पर अभी मेन बातें हो रही हैं, हॉस्टल अकोमोडेशन, विमेन सेफ्टी, इस पर अगर आप इलेक्ट होते हो तो क्या काम किया जाएगा एनएसयूआई से?
2: देखिए, हॉस्टल्स हो या विमेन सेफ्टी हो, हम बहुत क्लियर थे हमारे मैनिफेस्टो में भी कि हम इन चीज़ों की लड़ाई लड़ने वाले हैं, और हमें एक चीज़ पता है कि हम इलेक्ट होएंगे, और जब इलेक्ट होएंगे तो हम इस सिस्टम से लड़ाई लड़ना जानते हैं, हमने पहले भी लड़ी है, और आपने देखा है कि जो देश के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो एक साथ हो जाए तो वो क्या करने के काबिल है। तो हम स्टूडेंट्स की लड़ाई बिल्कुल लड़ेंगे, और आज हमारी काउंटिंग है, बस वो शुरू होने वाली है।
1: वीर, आप वोट काउंटिंग के लिए कैसे फील कर रहे हो, क्योंकि कल हमने देखा जो कॉलेज यूनियन इलेक्शंस हैं उसमें एबीवीपी ने काफ़ी कॉलेजेस में क्लीन स्वीप करा है, एनएसयूआई कहाँ स्टैंड कर रही है अभी?
2: देखिए, कॉलेज यूनियन इलेक्शंस आर टोटली अ डिफरेंट थिंग एंड DUSU इलेक्शंस इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। स्टूडेंट जो होता है वो दोनों इलेक्शंस में अलग माइंडसेट से वोट करता है, तो वी आर वेरी मच पॉजिटिव अबाउट विनिंग इन द DUSU इलेक्शंस।
3: सबसे पहला अगर हम यूनियन में आते हैं तो हमारा सबसे पहला काम रहेगा कि हर एक पीजी का, हर एक हॉस्टल का, हर एक कॉलेज का एक सेफ्टी ऑडिट कराया जाए, जिसकी रिपोर्ट को हम पब्लिक डोमेन पे डालें। उसके अलावा हम चाहते हैं कि नए हॉस्टल्स का निर्माण हो, हर एक कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल हो, और उसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए कि पीजी या हॉस्टल के स्टूडेंट को अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो उस पर तुरंत प्रभाव से हम एक्शन ले सके। और एक रूम रेंट कंट्रोल एक्ट का हमारा मुख्य मांग रहेगी, क्योंकि आप देखेंगे छोटे छोटे कमरों के स्टूडेंट से अपनी मन मर्जी के पैसे मांगे जाते हैं, हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स का ऐसे शोषण किया जाए।
0: That's the latest that we are picking up in regard to the DUSU elections, that is the Delhi University Students Union. It seems to be a direct contest between the NSUI, the student wing of the Congress Party, and ABVP, the student wing of the BJP as well. And Soumya Jaiswal is joining us on this big development, DUSU election and the counting taking place today. Soumya, how's the environment out there in Delhi University?
4: Well, yes, the early trends have started to come in. We just had the opportunity to speak to all of the candidates who were contesting for the DUSU elections 2026. And the energy is, of course, very much high when it comes to all the contesting candidates. As of now, the early trends that are out in the first round, the ABVP candidate Yash Dabas for the presidential post, he is leading. As of now, the count stands at 1,305 for ABVP's Yash Dabas. For NSUI's Meena, who is the presidential candidate, the count stands at 1,191. And for Ananya, who is from the Left Alliance, the count stands at 288. So these are the developments that we're picking up. It's a huge win, because if you see, yesterday also, when the results came for the college level election, ABVP had a clear sweep, including that from the SRCC as well. So as of now, the early trends are suggesting that it's
1: going to be a good news for ABVP. So these are the details that we're picking up as of now when we speak, when the countings have started and the early trends have started coming in.
0: All right, Soumya Jaiswal getting us the latest from the Delhi University Students Union. It's always exciting which party really scores more. It's a fierce fight between the NSUI and the ABVP. And Soumya, we will be coming back to you as the results come in. Meanwhile, in an exclusive conversation, Electronics and IT Minister of India, Ashwini Vaishnaw, spoke with

0: on top of this bulletin, there's breaking news coming in, viewers. This is concerning development. Hit and run incident now being reported from Greater Noida in Uttar Pradesh. A speeding car has struck 4 to 5 people. The driver has fled the scene after the collision. A video of the incident has gone viral now, and the police have taken cognizance of the matter. A case has been registered and an investigation is currently underway. The police teams in Greater Noida are conducting continuous raids to arrest the accused. The police are investigating all other aspects of the case, and the incident occurred in the Knowledge Park police station area. These are the initial details that we have picked up. This is a horrific video on your screens right now, viewers, where a car is in fact mowing down at least 4 to 5 people. They are injured. We do not know whether there are any casualties or not, but Anushka Garg is joining us live on this big story. Anushka, a very troublesome video on NDTV screens right now, and the Uttar Pradesh police in Greater Noida has also taken cognizance. Please tell us the latest on this development.
1: Well, that's right, Aditya. What we are seeing is that another hit-and-run incident that has in fact come to light. Remember, yesterday there was another such hit-and-drag incident that was reported from RKpuram area in Delhi, and now we are seeing this incident coming to light from Greater Noida's Knowledge Park, is what we are given to understand. In this video that can be seen on screen, it is very clear that a car driver is in fact ramming into 3 to 4 pedestrians that were walking on the side pavement of the road, and after ramming the car into the very people who were standing on the pavement, he ran away and drove the car as fast as he can and left from the very venue where this incident has in fact taken place. In the visual, it is quite clear that we can in fact also see that the car driver did not even stop to check in if whether or not those people who were the pedestrians who got hit by the car are okay or not. So far, what the details have come in is that they are receiving medical treatment, and the Greater Noida police have started doing raids in this case so that they can in fact arrest the very person who was behind the wheels at this very moment. And we are seeing that several locations are being in fact searched so that they can find as to who is responsible for such kind of a incident that has in fact taken place in Greater Noida. We have seen that based on the viral video, the Greater Noida police has taken suo motu cognizance, and now they are in fact trying to find out what was the sequence of events that led to this incident, and if he had some kind of enmity in his mind when he was trying to ram into the pedestrians who were walking on the side of the road, and after that the car hit all those 4 or 5 people when they were standing there, and the car driver ran away from the very scene. Over to you.
0: All right, Anushka Garg getting us the latest development from Greater Noida, where a viral video can be seen where 4 to 5 people have been rammed by a speeding car. Currently, the person who was driving the car has fled the scene, but the Greater Noida police in Uttar Pradesh has taken cognizance and is investigating the case further. Thanks, Anushka, for getting us the latest. And now, getting more updates from the death by suicide case in Mumbai. This is IIT Mumbai, which we are talking about, the IIT Bombay student suicide case. The Dean of the Administrative Affairs, Surya Narayan Gula, name has come up in the IIT Bombay suicide case. The IIT Bombay students have demanded resignation of the Dean of Administrative Affairs, Surya Narayan Gula. The students allege Dean Surya Narayan Gula spoke to Sahil Wakode before he was taken out, and the students claim IIT rules allow a student caught cheating to be given a fresh answer sheet and continue the exam inquiry into the alleged cheating, which is supposed to be conducted after the examination. A student on the ground of anonymity claimed. In Sahil Wakode's case, students allege he was taken out of the exam and not allowed to continue writing the paper. Students are now demanding an inquiry into the action taken against Sahil Wakode. This is the latest that NDTV is gathering on this case. Remember, students have been protesting relentlessly at the IIT Bombay campus and demanding action by the administration. So far, we haven't heard from the administration. The police has reacted and said that they have taken cognizance of the death by suicide. We will be going across to our reporters to get us the latest. Abhishek Awasthi, in fact, will be joining us on this broadcast on the big development. The students demand an inquiry in this case. Abhishek, what is the latest that you are picking up? Of course, the name of one of the faculty members, the dean, is coming up, and resignation demands are growing louder.
2: definitely, investigation or, internal inquiry has already been ordered. At the same time, what we understand as per the allegations being leveled by the student, is there a serious allegation, and also the series of events that has come out of this entire incident that has happened, students are raising several grave allegations against the dean himself, demanding resignation. And at the same time, we will also have to understand, the subsequently the suicides that are taking place, the mental pressure and depression on the student, and more importantly, how that the student was using ChatGPT, and definitely there is something gone wrong while he was counseled, is where the point needs to be noted. What exactly happened? Because what has been said, if that is what has happened, then he shouldn't have taken that extreme step. But what was the exact conversation between the dean and the authorities who counseled him? And after that, he came back to his room, and later he committed, or he took that extreme step, which is very, very concerning. And definitely a big step needs to be taken by such a reputed organization, where we have seen not once, but this is the third suicide, consecutively that has taken place. So definitely the demands of the student should be taken into account. And more importantly, an independent inquiry should also take place. Definitely the organization has ordered an internal inquiry, but there are serious allegations being leveled, and the students who have gathered the mass protest that took place yesterday night, though they were assured that action will be taken, necessary steps will be taken, and they are the organization is taking that, but at the same time the actual cause, the conversation between the authorities and that child after he took that step while doing that examination, where he used the GPT to ask answers, and he was caught with the mobile phone. There are several things that needs to be looked into.
0: All right, there are several questions. How he was counseled. Abhishek Awasthi joining us live. Thank you very much for getting us the latest. Meanwhile, a second year IIT Bombay student has died by suicide in what is now the third such reported case on the Powai campus in 7 months. The student, identified as Sahil Wakore from the Department of Energy Science and Engineering, was allegedly caught using a mobile phone during an exam. IIT Bombay says he had uploaded the question paper on ChatGPT to seek answers, but no disciplinary action has been initiated yet. The institute says the student was counseled and assured the incident would not affect his academic career. And now we will be cutting across live to Prime Minister Narendra Modi inaugurating the international conference.
3: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं. वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है. साथियों, आज का भारत पर्यावरण सुरक्षा के अपने प्राचीन विचारों को आधुनिक विजन में पिरोते हुए आगे बढ़ रहा है. बीते 12 वर्षों में पर्यावरण से जुड़े हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में भारत ने असाधारण प्रगति की है. हमारा बड़ा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर रहा है और इसने पर्यावरण सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई है. भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है, मैं G20 के बड़े बड़े लोग हैं ना, उनके सामने बता रहा हूं जी, इकलौता भारत ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। ये हिंदुस्तान की ताकत की मैं बात कर रहा हूं। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है। आप आंकड़ों को देखिए, 12 साल पहले भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 गीगावाट थी। 12 साल पहले 2 गीगावाट, अगर यहां वकील बैठे हैं तो जरा ध्यान रखें, आंकड़े कभी काम आएंगे। आज यह 160 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है। 2 गीगावाट से 160 गीगावाट 12 साल में। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों को ही सोलर पावर जनरेशन का केंद्र बनाने का मिशन शुरू किया। इस योजना के तहत अब तक 50 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल्स लग चुके हैं। ये दुनिया के कई देशों के टोटल घरों से ज्यादा है। इसके लिए सरकार ने हर घर को करीब 80,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी है। कुसुम योजना के तहत सरकार ने 30 लाख किसानों के खेतों में सोलर पंप्स लगाने का काम किया है। हमने वन नेशन वन ग्रिड का एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी पूरा कर लिया है। इतना ही नहीं, घरों में एलईडी बल्ब, जो बिजली की बचत करने में सफल पुरवार हुआ है, करोड़ों की तादाद में एलईडी बल्ब घरों में पहुंचाए हैं। और इन प्रयासों के परिणाम आज हमारे सामने है। अकेले सोलर एनर्जी से ही भारत में करीब, ये आंकड़ा भी वकीलों के लिए है, भारत में करीब 20 करोड़ टन कार्बन एमिशन रोकने में सफलता मिली है। साथियों, सोलर एनर्जी के साथ साथ क्लीन एनर्जी के दूसरे सेक्टर में भी भारत ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। बीते 12 साल में देश की विंड एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ी है, हाइड्रो एनर्जी कैपेसिटी में काफी बढ़ोतरी हुई है, और अब देश न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन पर तेजी से काम कर रहा है। और जो लोग एनवायरनमेंट पर लंबे लंबे भाषण झाड़ते रहते हैं, ये जब न्यूक्लियर एनर्जी का काम मैं आगे बढ़ाऊंगा, जब अदालतों में जाके खड़े हो जाएंगे रोकने के लिए। इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाने का रास्ता बनाया गया है। इन कोशिशों की वजह से आज भारत की नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी करीब करीब 4 गुना बढ़ गई है। भारत कोयले के और अधिक स्वच्छ उपयोग के लिए कोल गैसिफिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दे रहा है। साथियों, भारत आज क्लीन मोबिलिटी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली है और ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है। ये क्लीन मोबिलिटी के एक नए युग की शुरुआत है। साथियों, 12 वर्षों में हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या में करीब 950 गुना का इजाफा हुआ है, 950 गुना। 2014 से पहले के साल में भारत में 3000 से भी कम ईवी की बिक्री थी, 3000। वहीं पिछले साल करीब 25 लाख ईवी भारत में बिकी है। यानी ईवी रिवॉल्यूशन के इस अवसर को भारत पूरी ताकत से अपना रहा है और इससे पर्यावरण की भी मदद हो रही है। हमारे हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर फास्ट टैग की आधुनिक व्यवस्था से भी टोल बूथ पर वेटिंग कम हुआ है। इससे टोल बूथ पर जो फ्यूल वेस्ट होता है वो बंद हुआ है। साथियों, 2014 तक हमारे देश के 5 शहर में करीब 250 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क था, ये भी मेरे वकील मित्र याद रखे। 2014 के पहले सिर्फ 5 शहरों में 250 किलोमीटर से कम। आज देश के 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चल रही है और भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास 1000 किलोमीटर से ज्यादा का मेट्रो नेटवर्क है। साथियों, रेलवेज का लगभग 100% शत प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन होने से भी करोड़ों करोड़ लीटर डीजल जलने से बचा है, पर्यावरण की रक्षा हुई है। इसी महीने कुछ दिन पहले करीब 3000 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया है। इस पर चलने वाली हर ट्रेन एक बार में सैकड़ों ट्रक्स का लोड लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है। डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन अपने आप में ऐतिहासिक है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे कितने बड़े लेवल पर पर्यावरण की भी मदद होती है। साथियों, देश में आज करीब 5000 किलोमीटर लंबे वाटरवेज पर ट्रांसपोर्टेशन होने लगा है, जो सबसे ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली मोबिलिटी है। इन पर चलने वाला एक स्टैंडर्ड इनलैंड वेसल एक यात्रा में दर्जनों ट्रक के बराबर लोड ले जाता है। इससे भी पर्यावरण संरक्षण में बड़ी सहायता मिल रही है। साथियों, अकेले मोबिलिटी सेक्टर में ये सारे बदलाव इस बात के गवाह हैं कि हमारा डेवलपमेंट स्पीडी भी है और सस्टेनेबल भी है। साथियों, आज करोड़ों लोगों की भागीदारी से भारत में जल संरक्षण पर भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। मुझे खुशी है कि देश में 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है। कैच द रेन अभियान के तहत देश में करीब 1.5 करोड़ वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं, जिसमें बारिश का पानी संरक्षित हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए आज 2 करोड़ से ज्यादा किसान सिंचाई की आधुनिक सुविधाओं से जुड़े हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे इनिशिएटिव से भी पानी की बचत हो रही है। श्री अन्न यानी मिलेट्स, ये भी एक बहुत बड़ा सफल उदाहरण है। भारत मिलेट श्री अन्न की पैदावार को बढ़ावा दे रहा है, जो पानी की खपत कम करते हैं। बीते वर्षों में देश में मिलेट्स का उत्पादन भी बढ़ा है और निर्यात भी बढ़कर करीब 1.5 लाख टन हो गया है। इससे किसानों के लिए नए मौके तो बन ही रहे हैं, पानी की भी बचत हो रही है।

0: और इसी मॉडल के कारण दुनिया भी हमारे साथ जुड़ रही है। भारत के प्रयासों के कारण 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। साथियों, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत आज देश में करीब 12.5 लाख हेक्टेयर में नेचुरल फार्मिंग के 24,000 क्लस्टर्स बन चुके हैं। यही नहीं, देश में क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की भी करीब 3,000 वैरायटीज विकसित हो चुकी हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देकर भी हम कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर रहे हैं। साथियों, हमारे ये प्रयास कितने व्यापक है इसका एक उदाहरण भारत का फॉरेस्ट कवरेज भी है। ये भी मैं वकील मित्रों के लिए बताता हूं, बीते 12 वर्षों में हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर 22% से ज्यादा बढ़ा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के तहत भी देश में करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं और यह अभियान निरंतर जारी है। साथियों, पर्यावरण के सामने एक बड़ी चुनौती प्लास्टिक वेस्ट की भी रही है और इसलिए भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई है। हमने रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल के मंत्र के साथ सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। आज भारत में हर रोज हजारों टन वेस्ट को रिसाइकल किया जा रहा है। गोवर्धन योजना के माध्यम से गांवों में गोबर और दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट को भी उपयोगी संसाधन में बदला जा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि वेस्ट को समस्या न मानकर उसे वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पर एक रिसोर्स में बदला गया है। साथियों, ये सारे के सारे आंकड़े केवल भारत के विकास के आंकड़े नहीं है, ये मानवता के भविष्य के लिए भारत के योगदान के आंकड़े हैं। साथियों, हमारा सांस्कृतिक विचार है माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वीव्याः, अर्थात ये धरती हमारी मां है और हम इसकी संतान है। इसी सोच के साथ भारत भी एक रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल भविष्य बनाने के लिए काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस में होने वाले डिस्कशंस, उससे जो नए विचार नए समाधान सामने आएंगे, वो हो सकता है कि आने वाले पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संबल बनकर के निकलेंगे। एक बार फिर इस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That, ladies and gentlemen, is India under the leadership of Honorable Prime Minister Modi, translating and honoring every commitment of its on ground.
2: All right, Prime Minister Narendra Modi speaking at this climate summit in the national capital, an inaugural summit, and of course, Prime Minister making a big pitch for the green governance, which is in focus right now, India's development and of course, renewable energy, the top focus. India launched the Catch the Rain initiative, 1.5 crore rainwater harvesting structures being built. Prime Minister's message on carbon responsibility often wrongly placed on developing nations. India recorded 25 lakh EV sales in 2025, clearly indicative of the fact of how India is also moving towards climate change.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: name and flowers and grass symbol for the upcoming bi-polls. The BJP says the Election Commission acted within its rules while dealing with the rival claims over the TMC name and symbol. Rahul Gandhi has pointed to the TMC dispute alongside earlier Shiv Sena and NCP splits. Rahul has described the TMC episode as part of what he calls a wider pattern of vote theft, government theft and party theft as well. Rijiju has hit back at Rahul by pointing to the origins of both NCP and TMC as breakaways from the Congress.
1: দেখুন এগুলো নিয়ে ইলেকশন কমিশনের সিদ্ধান্ত ইলেকশন কমিশন তার নিয়ম মেনে সব পক্ষের কথা শুনে করেছে উনি উনার দলকে একদিন রাখতে পারেননি দলের মধ্যে কি দুভাগ তিনভাগ চার ভাগ হয়েছে তার দায় দায়িত্ব তো ওনার এটা আমাদের কোনো সরাসরি বিজেপির রোল নেই তবে আমি বলি একটা কথা বলি আমি নির্বাচনের দিন গণনার দিন রাত্রে হলদিয়াতে মিডনাইটে বলেছিলাম আর যেই থাকুক এরা থাকবেন তার কারণটা হচ্ছে অতি দর্পে হত লঙ্কা অতি মানে যখন
2: कई दिनों से कांग्रेस टॉप लीडरशिप के साथ हमारा लीडर ममता बनर्जी को बातचीत कम्युनिकेशन हो रहे थे लेकिन ये जो अभी तो ये जो डिसीजन है वो पॉलिटिकल डिसीजन है कि सामने पूरा देश में एंटी भाजपा जो यूनिटी का बात हम लोग कर रहे हैं सेकुलर फोर्स का डेमोक्रेटिक फोर्स का प्रोग्रेसिव फोर्स का तो इसीलिए नंदीग्राम कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए हमारा पार्टी डिसीजन लिए हुए है आज ममता दीदी ने ये अनाउंस कर दिया
3: In yet another attempt to defame the Election Commission of India and attack the Bharatiya Janata Party, Rahul Gandhi ends up exposing the sordid history of the Indian National Congress. Is it not true that in the year 1980, the then Congress government, misusing Article 356, dismissed 9 state governments? Why is it that Rahul Gandhi insists on attacking the Election Commission, which is hailed the world over as the harbinger of not only democracy, but also a commission that has used modern technology to ensure that every vote counts?
4: कांग्रेस पार्टी हमेशा मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर में डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहता है
5: जी।
4: चुनाव आयोग को जल्दी से जल्दी जो सिद्धांत लेना था वो नहीं लिया और उसका कारण जो आज ये डेमोक्रेसी में क्राइसिस क्रिएट हुआ है आज कोई सिंबल में कोई जीत जाता है उसका बाद उन्होंने दूसरी पार्टी में जाके काम करता है ये एक ऐसा एनार्की इनसाइड द डेमोक्रेसी व्हिच इज वेरी डिट्रीमेंटल इन आवर सोसाइटी इन आवर कंट्री
6: ममता बनर्जी का तृणमूल तो कोई खेला लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं किया करोड़ों लोगों को धोखा दिया था मेसी को लाकर एक झलक मेसी को देख नहीं पाए खेला हो बे खून को लेकर खेला किया तो फुटबॉल का प्रतीक मत लगाइए ममता बनर्जी खून का प्रतीक लगाइए 15 साल तो खून किया है अपना सरकार आपका सरकार खून हुआ है उसका विचार नहीं किया है खून किया है सत्ता के लिए तो फुटबॉल मत लगाइए फुटबॉल तो स्वामी विवेकानंद बोले थे कि भगवान के पास अगर जल्दी पहुंचना है तो खेलो फुटबॉल मत लगाइए आपका शोभा नहीं देता है खून का प्रतीक लगाइए
7: देखिए ऐसा करते करते चुनाव पार हो जाएगा ना कैंडिडेट दे पाएंगे ना लड़ पाएंगे अब किसी का भी अधिकार है कोर्ट में जाने का वो जाके देखे
0: And there's breaking news now coming in, and this is in regard to Rahul Gandhi's statement. In fact, Giriraj Singh has reacted on Rahul Gandhi's statement in Begusarai, Bihar. On Lok Sabha, Leader of the Opposition Rahul Gandhi's statement, Union Minister Giriraj Singh has reacted and said that Rahul Gandhi's robot remark is uncalled for, says Rahul speaks what is fed to him. Whatever is written and given to Rahul Gandhi, he speaks it out, just like a robot speaks out whatever is fed into it. This is what Giriraj Singh is saying. He goes on, and I quote, Rahul Gandhi should now be called Rahul Robot because so much has been fed to him. Does he have any knowledge? During the Congress era, how many times did the party split? Congress split 5 or 6 times. This is fresh attack by BJP leader and, of course, Union Minister Giriraj Singh against Rahul Gandhi. Let's listen in.
8: राहुल गांधी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: अगर मैं मर जाती तो आप आपका स्टेटमेंट यही होता कि मैं विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ
1: के चक्कर में आगे मेरे स्टमक में चाकू मारे, एक नहीं 6-7 का। मेल ईगो कितना बड़ा प्रॉब्लम है,

0: नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और आज मैं उस मुद्दे पर बात करने वाली हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरे जैसी कई फीमेल्स को यह आज़ादी का एहसास कराती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राइडिंग की। इट गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन इस एक घटना ने सबका ध्यान महिला सेफ्टी पर खींचा है, विमेन राइडर्स की सेफ्टी पर खींचा है। सिया के साथ जो कुछ हुआ उससे पूरे देश का खून खौल गया। आज मेरे साथ देश की जानी मानी विमेन राइडर्स हैं, अनुभवी हैं, सालों से प्रीमियम और जो बिग बाइक्स हैं वो चला रही हैं, अच्छा खासा अनुभव है। हम समझेंगे चुनौतियों को विमेन राइडर्स की और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि कैसे इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है। और साथ ही हमारे साथ सिया भी होंगी, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए। हम सिया से भी समझेंगे कि क्या सिनेरियो रहा। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ मेरी विमेन राइडर से। जिया है मेरे साथ। सबसे पहले जिया, बताएं अपने बारे में।
1: हाय, माय नेम इज़ जिया और मैं कुछ सालों से राइडिंग कर रही हूँ। आई एम अ बिगनर बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा राइडिंग का। और आई एम एन आर्टिस्ट।
2: आई एम पवित्र भारद्वाज, बास्केटबॉल प्रोफेशनल।
0: हमारे साथ देवी मैम है जो 40 सालों से बाइकिंग कर रही हैं और हमारी आज वो मार्शल भी रहने वाली है। वो हमें लीड करेंगी, वो हमें गाइड करेंगी। देवी मैम, अपने बारे में थोड़ा बताएं और वेलकम टू द शो।
3: थैंक यू। मेरा नाम देवी बनर्जी है। मैं बचपन से 84 से बाइक चला रही हूँ और ये मेरा मेडिटेशन है, ये मेरा पैशन है। और आज मैं अकेली हूँ तो ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा गर्लफ्रेंड है और लड़की थी।
0: जेके लाइनेस इनका नाम है, जसविंदर कौर। वेल्कम टू द शो जेके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ।
4: सो माई सेल्फ जेगरा लाइनस, एज इन्होंने कहा है। बेसिकली लोग मुझे जेगरा लाइनस के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि राइडिंग फ्रेटर्निटी में यही टैग लाइन जो है फेमस हो रखा है। सो दैट्स हाउ पीपल नो मी, क्योंकि जसविंदर कौर कोई बोलता नहीं था, लिटिल जेके जेके हुआ, फिर एक कुछ ट्रेजेडी ऐसी हुई तो उसके साथ वो द लाइनस भी आ गया। सो दैट्स हाउ पीपल कॉल मी जेके द लाइनस।
0: ट्रेजेडी के बारे में भी हम जानेंगे। आप लोगों से जो चैलेंजेस है उसके बारे में भी समझेंगे क्योंकि आप लोगों का काफ़ी एक्सपीरियंस है।
4: राइट।
0: तो अब हम अपनी जर्नी को शुरू करेंगे और सिया भी हमारे साथ जुड़ने वाली है कुछ ही देर में। देखिए, सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ, जब आपने सिया की वो तस्वीरें देखी, पहला रिएक्शन क्या था आपको, क्या लगा वो देख के आपने?
4: पहला रिएक्शन देखते ही बिल्कुल जैसे होता है ना, देखते ही जो आग बबला हुआ और वो जो एकदम से वो डर बैठ गया वो लड़की के लिए कि भाई वो ठीक है या नहीं है, तो वो दोनों रिएक्शंस ना, मतलब मिक्स इमोशंस था एक ही टाइम पे कि उस बंदे ने मारा कैसे, हाउ डेयर ही, एंड देन द गर्ल हु गॉट हिट वेरी बैडली।
0: राइट, सो यू वर कंसर्न अबाउट द गर्ल आल्सो।
4: यस यस यस यस यस, क्योंकि जिस तरीके से उस आदमी ने मारा है वो बहुत ही खतरनाक था। इट वाज स्ट्रेट अवे एन अटेम्प्ट टू मर्डर के।
0: डेफिनेटली, मुझे भी एग्जैक्टली यही फीलिंग आई थी कि ये कोई एक्सीडेंटल चीज़ नहीं है, ये डेलिब्रेटली किया हुआ हिट था जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और थैंक गॉड कि सिया ने तब 360 लगाया हुआ था तो वो सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। जी जी, एक बात और है यहाँ पर देखे, आपके अपने एक्सपीरियंसेस कैसे रहे?
4: एज अ फीमेल राइडर ये तो साथ में है ही, मतलब एट द बैक ऑफ द माइंड वी नो कि दिस ईव टीजिंग एंड एवरीथिंग इज नेचुरल, मतलब है ही है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, मतलब खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि यार देखो, प्रॉब्लम हमारी नहीं है, किसी की भी नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम की है। जब सिस्टम ही करप्ट है तो ये चीज़ें तो होती रहेंगी ना। सिस्टम कुछ कर ही नहीं रहा है, इससे पहले भी इतने सीरियस केसेस हुए हैं, उसके बाद भी अगर चीज़ें ऐसे होती आ रही हैं और अभी भी होती रहेंगी तो फिर सारा फॉल्ट सिस्टम का ही है, हमारा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। हमारे लिए तो डर बैठ गया है। अब वो बच्ची जिस तरीके से गिरी है, कुछ भी हो सकता था, शी कुड हैव गॉट सिवियर इंजरीज, वो तो टच वुड शी गॉट सर्वाइव फ्रॉम दैट, बट जो जिस तरीके से उस आदमी ने मारा है वो डेलिबरेटली, वो एक मेल ही है ना, वो साफ वही नज़र आ रही है कि लड़की रुकी कैसे नहीं या मेरी बात मानी कैसे नहीं, एंड विच इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। यार देखो, साफ सीधी बात है, आप किसी को कुछ भी नहीं कह सकते, आप कुछ ज़्यादा मर्जी गुस्सा आए कुछ भी आए अपने घर पे रखो, ठीक है? किसी को कोई राइट नहीं है किसी को मारने का या कुछ भी करने का। एंड दैट वॉज अ सीवियर क्राइम मैन, अटेम्प्ट टू मर्डर केस है, सीधा सीधा कैसे कर सकते हो आप?
0: बिल्कुल, तो जैसे जेके कह रही है कि बिल्कुल खून खोल गया था, वो तस्वीरें जब आपने देखी, क्या पहला रिएक्शन था आपका और क्या लगा उस वक्त आपको, क्योंकि आप भी बहुत सालों से राइड कर रही है पवित्र, तो आप भी ऐसा कुछ फील करती होंगी, फेस भी करती होंगी?
5: देखिए, पहले बार देखते ही तो एक फीमेल राइडर को तो वही लगता है कि हम अगर उसकी जगह होते तो हमको भी सेम फील होता है। तो फर्स्टली तो एक बहुत खुंदक आई कि यू नो क्यों, कौन किसको जबरदस्ती ऐसे कैसे मार सकता है, लाइक यू नो किसी को राइट नहीं है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो फॉर दैट मैटर। मगर एक जो कम्युनिटी होती है, वाइकिंग कम्युनिटी, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं चाहे हम जानते हो नहीं जानते हो। तो उसके साथ जब हुआ तो मेरे को लग रहा है कि जब सेफ्टी की बात करें, प्रोटोकॉल वगैरह के हिसाब से बात करें, तो अगर आप अच्छे से भी राइड कर रहे हो और कहीं से कोई साइड से आके ऐसे मार के चले जाए तो सेफ्टी तो कहीं भी नहीं है सिस्टम में, यू नो।
0: सो कभी एज अ फीमेल राइडर, आप भी बहुत सालों से राइड कर रही है, आपने भी अनसेफ फील किया है राइड करते वक्त? आप क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सोलो राइड्स भी करती है।
5: हाँ एकदम। मैं एक बार याद है मेरे को, हम पहली राइड के लिए बहुत दूर गए थे खजुराहो, मेरा पहला राइड था और वो करीब 10 आवर्स का था और मेरे लिए था कि ठीक है यू नो चैलेंजिंग होता है बट कैसे रहेगा, बिकॉज ग्रुप के साथ जाते तो आपको लगता है ठीक है सब लोग हैं तो, बट एक स्ट्रेच आया था जहाँ पे मैं बहुत अकेली थी और सब लोग निकल गए थे। तो गिवन द सिचुएशन ना, आपको लगता है कि आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इतने बड़े हाईवे में नॉट जस्ट एक्सीडेंट मतलब अदरवाइज ऑल्सो बींग अ वुमेन, हम इंडिया में सेफ तो वैसे ही फील नहीं करते, क्योंकि आई थिंक सिस्टम के साथ साथ हमें खुद भी आप कितना भी आप स्ट्रांग रह लो, कॉन्फिडेंट रह लो कि हाँ आपके कनेक्शंस हैं, कुछ भी है, हाउ यू शो अप दैट ऑल्सो मैटर्स।
0: आप कोई अपना ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जो आपने फेस किया हो, जब आपको वाकई में डर लगा हो, आपको लगा हो कि आज कुछ भी हो सकता था?
5: हाँ, तो एक बार क्या हुआ था, मैं इवनिंग में ऐसे ही निकल गई थी और मैंने गियर अप वगैरह कुछ नहीं करा था, क्योंकि हम जो लॉन्ग राइड्स के लिए जाते हैं तो गियर अप करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गियर अप एज बाइकर्स हमें इंपॉर्टेंट सेफ्टी के लिए होता ही है, बट कभी कभार जैसे शाम को निकल गए थोड़ा सा शॉर्ट राइड के लिए, तो मैं निकली थी, मेरे को याद है गुड़गांव इसी जगह पे गोल्फ कोर्स रोड पे ही, मेरे को याद है एक बंदे ने सेम चीज़ जो सिया के साथ हुआ, वो ही केम सो क्लोज विदाउट इंडिकेटर, तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस उसको बोला, जैसे वो आगे निकला आई स्टॉप माय बाइक उसके पास जाके मैंने बस उसको ये बोला, मैंने कहा आप इंडिकेटर दे सकते थे, बस इतना सा बोला मैंने। तो एक वो जो मेल ईगो होती है ना उसकी, वो इतनी हर्ट हो गई कि वो बंदा साइड में लगा के, और वो अपनी वाइफ के साथ था या गर्लफ्रेंड के साथ था, वो भी देख रही है, एंड यू नो व्हाट वाज अमेजिंग इज कि बीइंग अ फीमेल शी वाज नॉट स्पीकिंग अ वर्ड, वो कुछ ही नहीं बोल रही थी हमारे सपोर्ट में, वो बंदा बोल रहा है कि क्या करोगे, कर लो जो भी कुछ करना है। मैंने कहा अकड़ की बात नहीं है, आपको सिंपल सी चीज़ है, अगर आप इंडिकेटर दे देते तो हम भी सेफ्टी में है, ठीक है आप चला रहे हो तो और भी चला रहे हो, सबकी रोड है ना ये, और फिर वो मेरे को बोल रहा है आपको जो करना है कर लो, ऐसे मेरे को जो करना है कर लो तो नहीं, कर तो हम भी सकते हैं जो बहुत कुछ करना है, मगर जो गलत है है, और अगर नहीं चलानी आती ना तो घर पे बैठो, गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक एज मच एज ये सब चीज़ें चलता रहेगा, अगर हम एज फीमेल स्टैंड नहीं लेंगे ना अपने लिए, और हमको ऐसा कॉन्फिडेंटली शो नहीं करेंगे ना कि यू नो कि जस्ट बिकॉज वो बोलेंगे तो हम लोग डोमिनेंट हो जाएंगे और हम लोग चुप हो जाएंगे, मेरे को हमारे की आवाज़ भी, क्योंकि मेरे को लगता है ऑफन एट टाइम्स हम लोग खुद इतना डर के रहते हैं ना कि यू नो अगर कुछ हो गया तो क्या हो गया, क्योंकि ये हमको बचपन से ही एक जो हम बैकग्राउंड से, देखो सबका एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, तो मेरे को लगता है वो भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप कैसे बैकग्राउंड से आए हो, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, कैसे आपको, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मेरे तो बचपन से ही मैंने लड़कों के साथ खेला है, मैंने सब चीज़ लड़कों के साथ ही करी है। हाँ मैंने ये जो फेस करा है कि गर्ल्स अगेंस्ट बॉयज़ एंड ये सब चीज़ें, ये तो चलती रहेगी, ये इसमें कोई एंड नहीं है, मगर मेरे को लगता है हाउ यू शो अप ऑल्सो इवेंचुअली वो रिस्पेक्ट तब भी आ जाती है, तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी का सबके अगेंस्ट होता है, बट हाँ जो गलत है वो तो है।
0: यहाँ पर इससे कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग काफ़ी हैवी बाइक्स पर है चला रहे, तो ये ऑलरेडी चैलेंजिंग होता है हम लोगों के लिए, किस तरह की मशीन्स पर आप सेफ रहें, उसे अच्छे से चलाएं, लेकिन उस सबके बीच में जब सेफ्टी का इशू आ जाए या कोई मेन ईगो सामने आ जाए तो वो वाकई में बेहद परेशान करने वाला है कि इस चैलेंज को हम क्यों बेवजह झेल रहे हैं, क्यों नहीं लोग ये एक्सेप्ट कर लेते कि अगर हम चांद पर जा सकते हैं, अगर हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं, हम वैज्ञानिक बन सकते हैं, तो हम बाइक भी आसानी से चला सकते हैं। तो इस वक्त हम अपनी अपनी बाइक्स के साथ खड़े हुए हैं। अपनी बाइक के बारे में बताऊं, क्योंकि यहाँ पर बाइक्स के बारे में बात करना अब इसलिए ज़रूरी है जिस तरह का इंसिडेंट हुआ है उसके लिए हम आपको बताएं। मेरी जो बाइक है ये हार्ले नाइटस्टर है, 250 किलो के आसपास का इसका वज़न है और ये आसान नहीं है इसको हैंडल करना, ये बैलेंसिंग होती है। मैं मुश्किल से 60 से 62 किलो के आसपास हूँ और इस बाइक को जब मैं चलाती हूँ तो सब सुनते हैं तो लगता है कि आप अपने से बहुत ज़्यादा 3 गुनी 4 गुनी ज़्यादा भारी बाइक को हैंडल कर रहे हैं, बट ये टेक्निक का काम होता है और बैलेंस का काम होता है और साथ साथ जब आप अलर्ट होते हैं, आप फोकस्ड होते हैं, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि आप कितने सीसी की बाइक चला रहे हैं।
3: ये मेरे पास भी मैट्योर 350 है, बट बाइक मैटर करता है, जितना हाई होगा उतना चलाने में मज़ा बढ़िया रहेगा। हम जो भारी हल्का ये मैटर यहाँ करता है, सोच हमारी सोच को मैटर करता है और जितनी भारी बाइक होती रोड को पकड़ के रखता है।
0: हम एक्सेसरीज की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से हम लोग अपने मोबाइल जो है वो माउंट कर लेते हैं, यहाँ से हम अपना नेविगेशन ऑन कर लेते हैं और जिसके चलते हम चला सकते हैं, देख सकते हैं, हम फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स भी होते हैं। इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं ये 360 यहाँ पर लगा हुआ है। सिया का जो मामला हुआ उसको जब हमने देखा तो उसमें क्योंकि 360 लगा हुआ था इसीलिए वो आरोपी जो है वो काफ़ी ठीक से कैप्चर हुआ, उसकी जो गाड़ी का नंबर था वो ठीक से कैप्चर हुआ, जिसके चलते उसको आइडेंटिफाई करने में, गाड़ी के मालिक को आइडेंटिफाई करने में आसानी मिली। यहाँ पर हमारे साथ डुकाटी राइडर भी है, जेके।
6: हेलो,
0: फियरलेस राइडर है ये, मशहूर है ये। बताइए अपनी बाइक के बारे में।
6: सो ये डुकाटी की स्क्रैम्बलर 1100 है एंड स्टार्ट फ्रॉम 800 cc कैटेगरी, तो ये 1100 cc कैटेगरी में आ जाती है एंड इट्स अ रेट्रो स्टाइल, आप टूरिंग आराम से कर सकते।
0: राइडिंग आपके लिए क्या है?
3: मेडिटेशन, सिंपल मेडिटेशन, मेडिटेशन है। व्हेनेवर आई एम फीलिंग लोनली, रात को 2 बजे 3 बजे हो मैं निकल जाती हूँ।
0: और बड़ी बात ये है कि मैम 60 प्लस है जिया, यहाँ पे ये इंस्पिरेशन है हमें, हम मैम को देख के हमें ये लग रहा है, मैम आपको देख के देवी मैम ये हमें लग रहा है कि हमें ये स्टेज पर भी राइडिंग करनी है।
3: करनी है मेरे को और करनी है
0: ना, आपको और करनी है। लेकिन जब आप इस तरह के इंसिडेंट सुनते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा दुख होता है कि इस मेंटालिटी के लोग अभी भी मौजूद हैं जिन्हें ये बर्दाश्त नहीं है कि लड़कियां इतनी बढ़िया बाइक्स चला रही हैं, इस तरह की प्रीमियम सुपर बाइक्स चला रही हैं। तो चलिए अब बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगले स्टॉप पर चलते हैं। जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, चर्चा में है, सिया, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम लेकर आएंगे। अब सिया आइए।
7: Like this.
0: क्योंकि अब सिया चोटिल है तो इसलिए हम उन्हें ज़्यादा परेशान भी नहीं करना चाहते और अभी वो दोबारा बाइक पर बैठ भी नहीं पाएंगे। आप बैठिए प्लीज़ यहाँ पर। सिया सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आप कैसी हैं?
7: अभी कुछ चोटें हैं, जैसे स्पेशली माय लेफ्ट लेग, जिससे मुझे थोड़ा अभी चलने में दिक्कत है एंड जिस तरीके से आई फेल ऑन अ रोड सो देयर इज अ इंपैक्ट ऑन माय होल बॉडी, माय नेक बैक एंड स्पेशली पेल्विस एरिया। सो आई एम स्टिल रिकवरिंग फिजिकली एंड आई डोंट नो व्हेन आई विल बी लाइक मेंटली free from that incident.
0: I understand. पर जब आप गाड़ी चला रही थी और जब वो शख्स आपके पास आया था तब पहली बातचीत क्या हुई थी आप दोनों की?
7: लाइक द फर्स्ट इनकाउंटर, वो जब मेरे साइड में आए, द थिंग दैट कि वो उन्होंने पहले थम्स अप दिखाया, यूजुअली पीपल डू व्हेन दे सी अस,
0: राइट?
7: सो माय फर्स्ट रिएक्शन वाज लाइक थैंक यू एंड व्हेन दे वर ट्राइंग टू स्टॉप मी द गाय हु वाज सिटिंग बिसाइड हिम they were doing same actions and they were like something like I want to come near to you, that's it, yeah, aage ruko, something like that. And wo sai pass apni gaadi leke aa rahe us time pe mujhe bahut zyada dar lag gaya ki like gaadi mein char ladke hain and wo pass mein aa rahe hain rukne ke liye bol rahe hain what's the intention. Mujhe aisa lagta hai ki we all know what's the bad intention, what's the good intention when we ride on a road.
8: Bilkul.
7: So I felt that there is some bad intention and I got scared. Plus I was on a motorcycle and there were four guys in the car and wo pass aa rahe hain. So first thing click in my mind ki main tez chalati hu, aage jaati hu. Wo usually peeche ho jayenge.
8: Matlab aap thoda distance maintain karna cha rahe thi ki unse dur ho jayenge to shayad wo chale jaye.
7: Even maine unko us time pe bhi action kara ki aap dur ho jao. कि मतलब पास आओगे तो ऑब्वियसली मेरे को कुछ हो सकता है या मैं गिर सकती हूँ या मैं डिवाइडर में अंदर जा सकती हूँ. जब मुझे रियलाइज हुआ कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं देन मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि मैं थोड़ा स्पीड अप करती हूँ, वो आगे जाऊँगी, तीन चार गाड़ियाँ आगे होंगी तो वो कितना चेस करेंगे. और मुझे लगा कि उनको पता चलेगा कि दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू देम और कि मुझे अकेला छोड़ दो तो वो रुक जाएंगे ऐसा कुछ. पर जब वो जब मैंने अपने साइड मिरर में देखा वो कंटिन्यूसली चेज करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो मतलब एकदम साथ साथ मेरे साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं और ज़्यादा डर गई. तो मैं बस ये कोशिश कर रही थी कि मैं ये रोड मतलब गोल्फ कोर्स वाला ये जो रोड है रेड लाइट से राइट ले लूँ बस एक बार, आई जस्ट एग्जिट दिस रोड एज सून एज पॉसिबल. पर वहीं मेट्रो स्टेशन के नीचे एक गाड़ी यू टर्न करके मिड लेन में आती है and I have to stop there, I have to slow down my speed.
8: Right.
7: And उसके बाद I was in a third lane and I was like around 40 की स्पीड में या 35 ऐसे जो भी जब भी हम स्लो डाउन हो जाते हैं then suddenly like in few seconds मुझे इतना टाइम ही मिला कि मैं अपने मिरर में भी देखूँ एंड और ये मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि कोई इतना कर सकता है.
8: बिल्कुल.
7: The last thing people can do is chase you, can pass comments to you, do actions with us.
1: यही
7: होता है.
8: बिल्कुल.
7: तो लास्ट हमें लगता है कि वो चले जाएंगे, कोई मार के नहीं जाएगा. That was so unexpected incident. वो few second में आए, मुझे realize नहीं हुआ. And the like next second I find myself on the road कि मैं बस गिर गई हूँ और मुझे कुछ realize नहीं होता कि क्या हुआ है मेरे साथ.
3: ये उसको ये बोट सीएम को बोल दिया है. नो नो सीएम इज सेइंग कि अबे नो वी बाइकर्स आर व्हाट व्हेन दे कम क्लोजर टू अस सो आवर साइन इज अस
8: जी
3: अबे नो गिव स्पेस
8: राइट.
3: फिर वो बंदा गाड़ी लेके आया और पर्पस भी
8: जी
3: सीएम को हिट किया और द मोमेंट हिट किया ये गिरी, गिर के ये पीछे इसकी बाइक गई और ये लुढ़कती लुढ़कती गई.
8: बिल्कुल.
3: और वो मार के भाग गया. आई हैव सीन पूरा वीडियो मैंने.
8: बिल्कुल. और वो हम सब ने कई बार देखा है. बिल्कुल.
1: डेलिब्रेटली बहुत गंदे तरीके से इसको हिट किया और वो भागा है.
8: बिल्कुल.
1: एंड ही वाज नॉट इवन वरीड. रुका नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं. इट वाज इंटेंशनल. ऑफ कोर्स.
5: अगर इतना ही वरीड होता और अगर इंटेंशनल नहीं होता तो भागता भी नहीं. तो अगर गलती करेगा तभी तो भाग रहा है ना वो. नहीं तो वो रुक के कर्टेसी होती है कि उसके घर में भी बहन माँ होंगी ना सबके घर में. तो अगर खुद की बहन या किसी के साथ होता तो शायद नहीं पता चलता जस्ट बिकॉज वो कोई और लड़की थी. अगर वो भी तो किसी की बेटी है, किसी की कुछ लगती है ना.
8: मतलब इंसानियत के नाते ही आप रुक जाते.
5: अगर आप रुक सकते थे तो कर ही सकते थे, मगर नहीं, वो भाग गया. तो भाग गया वो क्लियरली इंटेंशनल था, वो प्रूव हो चुका है उसमें.
8: बिल्कुल. वो और सबसे अच्छी बात ये रही कि आपके पास कैमरा था, 360 आपने ऑन किया हुआ था. लेकिन सिया हम सब उस वक्त वो जब फुटेज देख रहे थे हम सब वरिड थे क्योंकि आपने जैकेट नहीं डाला हुआ था. तो हम लोगों को वाकई में बहुत टेंशन हुआ. हमने टीवी पर भी ये चर्चा है कि जो भी बाइकर्स आई कि वी वर जस्ट होपिंग यू नो कि कोई ऐसी इंजरी ना हो जाए जो आपको लाइफ टाइम के लिए परेशान कर दे. वो कर दे. डू यू फील देयर वाज अ मिस्टेक वहां पे?
7: आई एग्री जो आप कह रहे हो अबाउट द गियर्स. सो उस टाइम पे आई हैड माय राइडिंग शूज एंड माय ग्लव्स जिससे मेरा रिस्ट प्रोटेक्ट हुआ, मेरा एंकल प्रोटेक्ट हुआ एंड आई हैव लाइक राइडिंग जैकेट. मेरे पास रिविट का जैकेट है एंड लाइक सीजन की वजह से कि थोड़ा बहुत गर्मी हो रहा है सो प्लस इवन आई वॉज नॉट वेल फ्रॉम पास्ट लाइक टू वीक्स, तो मेरे को वो घबराहट हो रही थी. सो आई वॉज दैट टाइम आई डिसाइडेड कि लेट्स नॉट वेयर जैकेट, मैं ज्यादा तेज नहीं चलाऊंगी, मैं अपनी लेन में रहूंगी. ठीक है, दैट वॉज माई माइंड सेट एंड आई अग्री दैट it was my mistake that that day I was not wearing the jacket. I agree ki wo us din mujhe jacket pehenna chahiye tha, but mujhe ye laga and mujhe ye cheez us din realize hui ki beshak aap ye jitna bhi try karo ki aap safely chaloge, aap apni lane mein chaloge, aap apni speed limit maintain karoge, but you don't know ki dusra wala jo aapke saath chal raha hai uska kya intention hai.
4: So we and especially for the woman.
7: Yes.
4: If we are even riding a scooty, keep teasing hai hi. आपको follow करेंगे करेंगे, आपको परेशान करेंगे करेंगे, जान मूझ के करेंगे ताकि हम या तो गिर जाए या रुक जाए, और रुक जाए तो वो आगे हमारे को छेड़े या कुछ भी करे. सो ये मेंटेलिटी जो है ना, ये इसीलिए है क्योंकि हमारा लॉ is not voting for
7: yes actually
8: जी हाँ, ये आप भी फील करती हैं कि अगर कानून सख्ती से अपना काम करता तो लोग इस तरह की हरकतें करने से डरते.
5: डेफिनेटली अभी मैंने बोला स्कूटी, मैं तो बोलती हूँ कि आप नॉर्मल रोड पे चल रहे हो तब भी ऐसा है, तब भी ऐसा है. आपको हिट करके चले जाएंगे, आपको टीस करके चले जाएंगे. मैंने बहुत सारे केसेस सुने हैं, आपका दुपट्टा खींच देंगे, रोल करते हुए चले जाएंगे. यू नो वो रोल कर रही है,
4: बचपन से हो रहा है. आई वाज लिटिल गर्ल, इतनी इतनी सी थी. एक लड़का आता है वो ब्रेस्ट पे हाथ मार के चला जाता है, एक आ रहा है वो इतने गंदे गंदे कमेंट्स गली में. आप अपने घर की गली में ही हो जा रहे हो, इतना मतलब बचपन से वो हम स्केर्ड है ना, मतलब वो और उस पे इतना ज्यादा डर था. वो बंदा कम से कम दो ऐसे जो ईटीज़र्स थे मेरे कॉलोनी में घूमे थे, कम से कम वो महीने में 4 से 5 बार चक्कर जरूर लगाते लगाते. एंड मैं इतना डर के रह रही थी ना, मुझे पता है. बट अब बड़े हो गए हैं तो चीजें थोड़ी एडवांस हो चुकी है, हमारे को भी डर का जो वो खौफ जो है वो निकल चुका है. बट स्टिल हम नहीं डरते, बट स्टिल कहीं ना कहीं वी आर विमेन.
8: बिल्कुल बिल्कुल,
4: हम क्या ही कर लेंगे. कोई एक लड़का भी आगे हमारा हाथ पकड़ लिया, कुछ ऐसे करते.
8: घर वालों का पहला रिएक्शन क्या था? क्योंकि सबसे पहले माँ बाप इस बात से ही डरते हैं कि मत चलाओ बाइक. शुरुआत में सबको एक डर होता है जब लड़कियां बाइक चलाती हैं. आपने भी, हमने भी, सबने ये एक थोड़ा सा एक हेजिटेशन पेरेंट्स में महसूस किया है. जब ये हादसा हुआ तो किसी ने बोला कि यार अब मत चलाना, अब हमको डर बैठ गया?
7: बेसिकली जब ये इंसिडेंट हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने अप्रीलिया ली थी तो मेरे डैड का यही एक क्वेश्चन था कि इतनी सीसी की बाइक तुम दिल्ली के रोडों पे कैसे चलाओगे. लाइक ये कोई ऐसे रोड नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ढंग के रोड्स ही नहीं है, तो तुम कहाँ इतनी सीसी की बाइक लेके जाओगे. उनका तो पहला यही क्वेश्चन था जब उन्होंने देखा कि मैंने एक स्पोर्ट्स बाइक ली है.
8: अप्रिलिया R457 450 cc की बाइक होती है और करीब 195 किलो की ये बाइक होती है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक स्पोर्ट्स एडवेंचर काइंड ऑफ अ बाइक है जो सिया चला रही थी. तो यहाँ पर ये भी साबित होता है कि दुबले पतले होने से, हैवी होने से मशीन नहीं चलती, मशीन दिमाग से चलती है, आपकी टेक्निक से चलती है, आपके तरीकों से चलती है कि आपको चलाना आना चाहिए. और भले ही सिया ने जैकेट नहीं पहनी थी लेकिन वो जो बाकी के रूल्स थे, नॉर्म्स थे, उनका वो पालन कर रही थी. और शायद नेक्स्ट टाइम सिया आप अब कभी जिंदगी में बिना जैकेट के या बिना राइडिंग गियर्स के नहीं जाएंगे.
7: बिल्कुल भी नहीं. मैंने एक लेसन मैंने खुद सीखा है कि बेशक मैं कितना भी सेफ चला लूं, बट डोंट ट्रस्ट समवन जो और रोड पे चल रहे हैं आपके साथ.
8: ठीक है,
7: वो कुछ भी कर सकते हैं.
8: लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों से ये भी समझना चाह रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन में कई बार लगता है कि आप लड़ लो, कई बार लगता है कि आप क्या करो. मैम आप इतने सालों से, इतने डेकेड से आप बाइक चला रही है, मुझे ये भी आप लोगों को मैसेज देना है जो फीमेल राइडर्स हैं या जो मेल राइडर्स भी हैं कि जब ऐसा कोई सिचुएशन हो कि कोई झगड़ा होता हुआ नजर आए क्या करना है.
3: मैं ये सलाह देना चाहूंगी, जब भी आपका ऐसा कुछ सिचुएशन हो आप बाइक को साइड में रखो, आप खड़े हो जाओ, फेस इट. आपको भागने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू रन. आजकल हमारे पास एक मोबाइल है. आप किसी को, आपको डर लगता है ऐसा कुछ है सिचुएशन, आप उसको डाल एक को कॉन्फिडेंट पे रख लो.
8: बिल्कुल,
3: उसको ऑन करके रखो. आप ये जो आप भागते हैं हम ना, तब वो चेस करते हैं. अच्छा भाई
8: ठीक है,
3: तेरे को हम दिखाते हैं टाइप्स.
8: ठीक है, लेकिन ये आपसे मैं समझना चाहूंगी, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रुकना भी सेफ नहीं लगता. इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑल द टाइम यू आर स्टॉपिंग एंड यू विल बी सेव्ड. इट्स नॉट लाइक दैट. देन क्या करना चाहिए?
5: ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि शांत होइए,
9: मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मेरे साथ वो हुआ है, थैंक गॉड अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, आई गॉट ओनली एप्रिसिएशन, मुझे अच्छे लोग मिले, लेकिन अगर ऐसा होता है कहा साइकिल लगाइए बाइक, बट अपने अगल बगल कौन है वो भी देखिए, आप एक सुनसान जगह पे जा रही हूँ, मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगी वहां रुक जाइए, चार लोग थे सिया ने बताया, कुछ भी हो सकता था, हम रोज सुनते हैं
8: बिल्कुल
9: ठीक है, तो वहां मैं अगर ये अकेली कहीं जा रही होती तो मैं कभी इसको सलाह नहीं देती कि रुक लो, आप अपने हिसाब से अपने गियर्स पहनो, अपना पूरा सेफ्टी का ध्यान रखो और जितना हो सकता है अपने आप को बचाओ
8: जी,
9: दोनों तरीके से बाइकिंग से भी वैसे भी, यू नो द सिचुएशन आजकल चल रहा है
8: जेके, क्योंकि चैलेंजेस लड़कियां बहुत ज्यादा फेस कर रही हैं और सेफ्टी इशू, अब जब सिया का मामला आया तो कितनी सारी राइडर्स ने आके बताया कि क्या क्या हुआ है, गालियां बक्कर जा रहे हैं, हिट करके जा रहे हैं, कट मार के जा रहे हैं, वही जो ईगो की बात आई कि अगर लड़की ने स्पीड अप कर दिया है, लड़की आपसे थोड़ा सा आगे भी बढ़ गई है, वो भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, जबकि आप जानते भी नहीं है एक दूसरे को, वो अपनी राइड कर रही है, वो अपनी, आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, कोई किसी से कम्पीट नहीं कर रहा है, खासकर हम जो राइडर्स हैं, हम अपना एंजॉय करने के लिए, हम अपनी आजादी को एंजॉय करने के लिए बाइक चलाते हैं, हमें किसी को शो ऑफ नहीं करना है यहाँ पर,
10: एग्जैक्टली प्रॉब्लम ना एक्चुअली सारी लॉ की है,
8: हाँ.
10: अगर लॉ स्ट्रिक्ट हो जाए ना तो ये जो मेल ईगो है और इस तरीके की जो चीजें चल रही हैं, इतने ज्यादा क्राइम चल रहे हैं, ये सब बंद हो सकते हैं, एक सेकंड में बंद हो सकते हैं, पर नहीं, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है, इट्स नॉट अबाउट इवन बाइक्स, अगर आप नॉर्मल चल भी रहे हो तो आप सेफ हो ही नहीं, ये जो मेल ईगो है ना एक, ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये जो मेल ईगो जो किसको आप सही कर सकते हो, ये घर से ही होता है शुरू, जब घर में ही बाप दादा को आप मेल ईगो के साथ देख रहे हो, सब कुछ है, अगर उस चीज को बढ़ावती दी जा रही है तो मेल ईगो कहाँ जाएगी, वो तो और उत्पन्न होगी और बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी, जितनी जनरेशन जाती रहेगी उनमें भी और बढ़ती रहेगी, मेल ईगो इज द कॉज, क्योंकि मेल ईगो के चक्कर में मैं खुद एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस की विक्टिम हूं, जो मेरा केस अभी तक चल रहा है, 2019 में हुआ था, एंड इट वाज फॉर की एक लड़की को मैंने मना कर दिया जिसको मैं शादी के लिए देख लेती, वो शादी नहीं कर सकती, तो उसने मेल ईगो के चक्कर में आगे मेरे स्टमक में चाकू मारे एक नहीं 6-7 बार,
8: माय गॉड
10: जी, सो मैं बता रही हूँ ये मेल ईगो कितना बड़ा प्रॉब्लम है, अगर बंदा अगर एक मेल अपनी ईगो में आता है तो क्या क्या कर जाता है, प्रॉब्लम क्या है, किसके लिए, हमारे लिए है, एंड कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम इतने ज्यादा हेल्पलेस होते हैं, हम कुछ कर ही नहीं पाते यार,
8: देखिए यू गिव मी अ हग, यू हैव बीन थ्रू,
10: सीरियसली
8: रियली प्राउड ऑफ यू, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू रियली, और यहाँ पर देखिए जिस जिस बच्ची का जिक्र जेके कर रही है, हमारे साथ यहाँ पर माँ बेटी भी है, बहुत खूबसूरत ये तस्वीर देखने को मिल रही है, कहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि एक्सेप्टेंस नहीं है, और कहाँ देखिए एक नई राइडर भी भविष्य की यहाँ पर तैयार होती हुई नजर आ रही है, मैम क्या नाम है आपका,
11: सुषमा,
8: सुषमा आपका नाम क्या है बेटा,
11: रिद्धि,
8: रिद्धि आपको बाइक चलाना है बड़े होके, क्यों चलाना है, मम्मा की तरह बनना है, देखिए देखिए कितना बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ पर, कहाँ हम पहुंच गए हैं और अभी भी कुछ लोग कहाँ रुके हुए हैं, अभी भी वो उन बेड़ियों में ही लड़कियों को जकड़ना चाहते हैं जिनसे हम बहुत पहले खुद को आजाद कर चुके हैं, ये शायद बहुत जल्दी समझना होगा, सुषमा जी आप सिया के सामने हैं, आप शायद आपने भी देखा होगा और हम सब परेशान हुए होंगे, क्या आप सिया से कहना चाहती है, क्या आपके मन में आया उन तस्वीरों को देखकर, आपकी आंखों में आंसू भी मैं अभी देख रही हूँ,
12: एक्चुअली होता रहता है हम लोगों के साथ नॉर्मली होता है, तो मैं तो खुद एक ग्रुप राइड रन कर रही हूँ, तो लड़के जितने भी पास ऑन करते हैं तो वो ऐसे करते रहते हैं, तो अभी मेरी रिसेंटली फ्रेंड का भी एक्सीडेंट हुआ था, वो मुंबई में है, तो बस उनको देख के मुझे थोड़ा सा रहता है, तो जब लड़के होते हैं ना वो ऐसी चीजें करते रहते हैं, हम बाइक चलाने में, मैं अपनी बेटी को चाहती हूँ बाइक चलाने देना, बट ये जो इंसिडेंट्स होते हैं ना उसको देख के लगता है कि हाथ पैर तुड़वाने से अच्छा घर बैठे बढ़िया
8: सेफ रहे,
12: सेफ रहे बढ़िया, बट लेकिन मैं इसको चाहती हूँ अपने पैरों पर खड़ी हो कुछ हो, तो बस मैं सिया को यही कहती हूँ कि वो मेरी फ्रेंड की तो लेग पूरी टूट चुकी है, उसके 3-4 एक्सीडेंट हो ऑपरेशन हो चुके हैं, और पूरा मतलब उसका स्किन इधर से उतार के उधर लगाया है, तो टच वुड मैं सिया को देख के बहुत खुश हूँ कि वो बिल्कुल ठीक, मतलब मेरी फ्रेंड,
8: और इसीलिए सिया को हम देख रहे हैं लगातार, वो चोटिल है, वो दर्द में है, बावजूद उसके वो आ रही है, क्योंकि वो ये चाहती है, सिया ये चाहती है कि जो दूसरी फीमेल राइडर्स हैं वो सिया के केस को देख के घर ना बैठ जाएं, वो डर ना जाएं, और इसीलिए सिया लगातार इस लड़ाई को लड़ रही है।

0: सिया, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अभी जिस तरह से केस आगे बढ़ रहा है, हमने देखा पहले तो आरोपी किस तरह से फरार था, उसे पकड़ने में बहुत वक्त लग गया, जिसने कहीं ना कहीं हम सबको निराश किया। सिस्टम को लेकर हमारे भीतर नाराजगी थी कि इतना वक्त कैसे लग सकता है किसी एक दिल्ली NCR के इंसान को पकड़ने के लिए। क्या फीलिंग आ रही थी आपको, कहीं हेल्पलेसनेस लगने लगी थी
1: उस टाइम पे? जब बेसिकली जब इतना सब वो वीडियो वायरल हुआ, न्यूज पे चला, एंड उसके बाद जो है लड़के, मैं उनका वो न्यूज चैनल पे उनकी स्टेटमेंट सुनती हूँ कि वो सामने आके अपने लिए जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। मतलब हाउ समवन कैन गिव दिस काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन कि आप इतना कुछ करके वहां से भाग गए। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इतना टाइम कैसे मिल रहा है कि वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? लाइक डिपार्टमेंट एंड द सिस्टम हैज ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, द नंबर ऑफ कार, और स्टिल वो मीडिया पे आके जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। सी, हम मतलब इमिडिएट एक्शन नहीं होता तभी एक वो चीज और वो डर नहीं है किसी में। और हमारे साथ जैसे जो हुआ है, जैसे आपने बताया एंड यू टोल्ड अस अबाउट योर फ्रेंड, क्योंकि वो उनमें डर नहीं है, एंड शायद से जब एक्शन होगा या पता चलेगा कि भाई ये चीज करने की इतनी साल की सजा है, तो इंसान सोचेगा 10 बार कि भाई मत करो, कैमरा है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो इंसान सोचेगा 10 बार वो इंसिडेंट करने से पहले, बिकॉज वो स्ट्रिक्ट एक्शन और वो डर नहीं
2: है। एक एक्शन और लेना चाहिए जो मुझे लगता है, इन जो ऐसे करते हैं, इनके माँ बाप चाहे कितने भी बूढ़े हो, चाहे कुछ भी हो, इनको भी कोर्ट में खींचना चाहिए।
0: देखिए, वो कहा जाता है ना कि एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ पुरुष पढ़ता है, लेकिन जब एक महिला पढ़ती है ना तो एक पूरी पीढ़ी जो है ना वो एजुकेट करती है। तो ये फर्क है, ये फर्क है महिलाओं के होने का और महिलाओं के आगे बढ़ने का, और इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। आपने जब इन महिलाओं को आप सुन रहे हैं, ये कंडीशनिंग की बात है, बचपन से किस तरह से सिखाया जाता है, जो लड़के लड़कियों में फर्क किया जाता है, जब तक वो दूर नहीं होगा तब तक ये जो अलग भावना से देखने की जो रीत चली आ रही है ना लड़कियों को, वो खत्म नहीं होगी। 21वीं सदी में अगर सिया ये झेल रही है तो ये हम सबके लिए एक समाज के तौर पर, एक देश के तौर पर भी शर्म की बात है। सिया, आपको क्या लगा कंडीशनिंग की बात जो हम लोग कर रहे हैं, कि अभी भी यहाँ पर बहुत जरूरत है लोगों को
1: बहुत
0: अपने अपनी विचार बदलने की, अपनी मानसिकता बदलने की?
1: बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे अभी 1-2 दिन से मैं खुद ये चीज देख रही हूँ कि कैसे लोग अब उनके सपोर्ट में आके बोल रहे हैं कि सर वो तो आप पलवल गांव में आके देखिए, उनको कितना लोग जानते हैं, उनका कैसा नेचर है। इनफैक्ट कल ही मैंने एक मतलब 3-4 लड़कियों का भी मैंने स्टेटमेंट सुना है कि वो कह रही हैं कि वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते, आपने तो उनको क्रिमिनल बना दिया। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आप वो कह रहे हैं कि मैं विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हूँ या वो गलती से हो गया, मतलब ये सोचिए कि उनके साथ के जो उनके लोग हैं वो इस चीज का भी नहीं सोच रहे हैं कि व्हाट इफ अगर मैं उस टाइम पे मर जाती। बीइंग अ गर्ल, अगर ये चीज आपके साथ होती, आप तो पलवल गांव में रहते हो, बीइंग अ गर्ल ये चीज अगर आपके साथ होती, या जो लड़के वहां खड़े हो रहे हैं उनकी बहन होती, या जो मतलब बूढ़े लोग हो रहे उनकी बेटी होती, क्या आप उस टाइम पे भी यही स्टेटमेंट देते? अगर आज भगवान की दुआ से मैं बच गई हूँ, अगर मैं मर जाती,
3: जिस तरीके से उस आदमी ने
1: एब्सोल्युटली, अगर मैं मर जाती तो आपका स्टेटमेंट यही होता कि मैं विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, आपने हमारे सर को फंसाने की कोशिश करी है।
2: आप एक चीज को नोटिस करना, जिस घर से ऐसे लड़के आते हैं उनके घर के लड़कियां को घर से निकलने नहीं दिया जाता है।
1: देखो, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि कैसे आप उनको बड़ा करते हैं, क्या विचार देते हैं, क्या संस्कार देते हैं। ऑब्वियसली, एंड मेरे घर में मुझे तो स्टार्टिंग से एक बेटे की तरह ट्रीट करा गया है, तो मैं मतलब एक लड़का लड़की सेम है, अगर जो मेरा भाई कर सकता है वो मैं भी कर सकती हूँ, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन कोई मैंने कभी जिंदगी में फेस ही नहीं करा। तो ये हर एक अपनी अलग अलग घर की सोच की वो है, अगर जैसी आपकी मेंटालिटी होगी वैसी होगी। अगर शायद से वो लड़की की परवरिश ऐसी होती कि अगर मैं लड़का हूँ तो वो भी कर सकती है, तो शायद से वो इतना थॉट नहीं लेता कि वो लड़की बाइक चला रही है।
4: उन्होंने फर्स्ट टाइम ही देखा, उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा और उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ या झेल ही नहीं पाए।
0: तो उस दिन गोल्फ कोर्स रोड पर जो हुआ, अगर उस स्थिति को, उस सिनेरियो को हम समझने की कोशिश करें, सिया

इस तरह से जा रही थी, अचानक से यहाँ से एक बाइक आती है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि सिया का जो एंगल था वो जिस तरह से गिरी है, बाइक थैंकफुली बहुत

0: सिया उसकी चपेट में भी आ सकती थी, ये इतना बड़ा हादसा हो सकता था, ये जानलेवा हो सकता था। अगर बाइक आगे नहीं जाती तो सिया बाइक के नीचे भी आ सकती थी। तो यहाँ पर पवित्र, जो सिनेरियो हमने देखा, जो स्थिति आपने देखी, आसान नहीं थी वो स्थिति, किस्मत अच्छी थी सिया की।
1: एकदम सही। मेरे को वही लगा पहले देख के, जो वीडियो को देख के तो लगा कि बस सबसे पहले थैंक यू गॉड कि बच गई वो, क्योंकि यूजुअली इतना इंटेंसिटी से गिरी थी और बाइक इतना दूर गई है जिस हिसाब से वो पूरा स्किट कर रही है, इसमें बचना तो ना के बराबर। विदाउट द जैकेट इंजरीज तो मैंने बहुत राइडर्स का देखा भी है कि बैक, क्या बैक, हिप, नीज, एंकल सभी चला जाता है।
2: यस, जिस तरीके से वो गिरी थी, जो एंगल था, सबसे ज़्यादा जो इसको नुकसान पहुंच सकता था वो था सारा हमारा चेस्ट एरिया, स्टमक, द होल। और बताए क्या है, मैं खुद गिरी हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ, हमारे यहाँ पे बहुत फाइन नर्व होती है, अगर वो कट जाए तो आपका हाथ भी चलना बंद हो सकता है। तो वो जिस हिसाब से बची है, शी इज़ वेरी लकी।
0: बिल्कुल सिया, जब आप ये सब रिएक्शन सुन रही हैं, क्या है मन में?
3: मतलब जो सब कह रहे हैं ऑब्वियसली वो सच है, और सबसे बड़ी चीज़ दैट आई वाज लकी, एंड द वन थिंग आई ऑलवेज डू, आई ऑलवेज कैरी अ रुद्राक्ष इन माय टर्टल बैग, ऑलवेज व्हेन आई राइड, जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन। द ओनली एंड थिंग इज गॉड कैन सेव यू, एंड सेम थिंग हैपेंड विद मी। एंड जो हम इंसिडेंट बता रहे हैं ऑब्वियसली वो हो सकता था। अगर मैं बाइक के साथ होती, जैसे मेरा नीचे का वो रेयर ब्रेक का वो बाहर निकला हुआ था, जिसकी वजह से पूरी चिंगारी निकली और वो पूरा टूट गया। सपोज मेरा लेग उसी में होता, मेरा पूरा नी ब्रेक हो जाता, मेरा राइट लेग जा सकता।
0: आप इस तरफ आ जाइए। जी तो मैं वापस आ जाइए। हाँ,
3: लाइक एंड ऑल्सो वन थिंग, जो इनके पास टर्टल बैग है, आई वॉज हैविंग माई टर्टल बैग ऑन दिस थाई, उसके बाद भी आई हैड सो मच ऑफ इम्पैक्ट ऑन माई दिस थाई एंड especially this area. इतना होने के बाद उसमें काफी सामान था, जो मैंने घर पे जाके रियलाइज किया कि जब वो फटा कि मेरी that thing protected my thigh.
4: गियर्स का काम होता है आपको ये जो bruises होते हैं ना उनसे बचाना, आपकी जो स्किन छिलती है गियर्स उसको सबसे ज्यादा बचाते हैं। बट अगर आप गिर रहे हो और वो जो एक धक्का लगता है हड्डी पे, जो बोन पे आता है, वो तो आएगा ही आएगा, वो गियर्स ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। बट गियर्स का मतलब ये होता है कि वो आपको bruises और कई बार मैसिव जो होता है उससे भी बचा लेते हैं। मैं कितनी बार गिरी हूँ, मैं उठी हूँ, मैंने बाइक उठाई और मैं निकल गई, and it is all
0: because of the gears.
4: Yes, because of the gears, कुछ नहीं होता।
0: तो ऐसे में हम यहाँ पर यही सजेस्ट कर रहे हैं हम सब कि अगर ऐसी सिचुएशन आए, सिया ने कोशिश की डिस्टेंस मेंटेन करने की, वही होता अगर वो उस आरोपी का ये इंटेंशन नहीं होता तो सिया आराम से आगे बढ़ चुकी थी, वो डिस्टेंस मेंटेन कर चुकी थी, वो बात वही खत्म हो जाती। उस आरोपी का क्योंकि ईगो हर्ट हुआ था, उसका इंटेंशन खराब था, उसने आके सिया को हिट किया। लेकिन सिया, एक जल्दी से यहाँ पर क्विकली मैं आपका ये जानना चाहूंगी, हम सब बाइक लवर्स हैं, हम सब बाइक राइडर्स हैं, बाइक कैसी है भाई?
3: बाइक में तो खर्चा आया है बहुत।
4: कोई बात नहीं, बाइक दोबारा से वैसी होती।
0: लेकिन देखिए, आप ठीक है ना? आप ठीक है? चलो जल्दी से क्विक रिएक्शन,
4: इंसान वैसा नहीं होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जल्दी से मैं आपसे बहुत क्विक रिएक्शन चाहूंगी, क्या ऐसे हादसों से हमें डरने की जरूरत है? एक एक लाइन आप सबसे मुझे चाहिए।
4: नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं है, बस लॉ ठीक हो जाए और जितने भी ये मेल ईगो वाले हैं ना, ये सब डर जाए।
0: पवित्र,
5: मेरे को लगता है शो ऑफ करते रहो, चाहे कुछ भी हो, कितनी बार गिरो उठो। हम स्पोर्ट्स पर्सन भी रह जाए, मैं स्पोर्ट्स पर्सन मायसेल्फ, बहुत चीजें हुई है, बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीजें चलती रहेगी। जिस दिन हमने स्टॉप कर दिया ना, आई थिंक उनको एनकरेजमेंट मिल जाएगा कि करते रहेंगे। आई थिंक हमको खड़े होकर, वी जस्ट शुड जस्ट गो फॉर इट, कुछ भी हो।
6: Definitely, we should not, you know, get afraid of anything. हमें बिल्कुल राइड करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ वीकडे पे भी करो, वीकेंड्स पे भी करो, ठीक है? और इनसे नहीं डरना है, हमें करते रहना है। जैसा मैंने बताया, स्टे काम, वाइजली डिसीजन लो वहाँ क्या करना है, लेकिन रुकना तो बनता ही नहीं है ना।
0: मैम,
7: मैं चाहती हूँ कि सारी फीमेल्स बाइक चलाने लग जाएं, ताकि उनके लिए ये चीज नॉर्मल हो जाए और वो एक्सेप्ट कर ले और हमको नॉर्मली बिहेव करने दे।
0: आप कुछ कहना चाहोगे बेटा?
8: जी, मेरा एक मैसेज है
0: जी,
8: अपने को बुलंद बनाओ। आपका बॉडी लैंग्वेज बोलना चाहिए वो डिस्टेंस, आपको हाथ नहीं उठाना, आपको गाली नहीं देना, आपका बॉडी लैंग्वेज बोलेगा, बंदा वैसे ही डिस्टेंस ले लेगा। बंदा जो गलत काम करते ना, उनका एक हार्मोन काम करता है, डर।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
8: या तो वो डराएगा या डरेगा। अब यू हैव टू चूज
0: कि आपको डरना है कि
8: योर बॉडी लैंग्वेज, योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी।
4: ऐसे सिचुएशन में सबसे ज्यादा मेन पॉइंट होता है आपका अलर्ट होना।
0: बिल्कुल।

0: है कैसे भी हो रहा है, आप अलर्ट हो जाओ और आप इस सिचुएशन में जैसे एकदम से क्विकली डिसीजन होते हैं ना वो ले लीजिए।
1: बिल्कुल, जैसे हम बाइक चलाते हैं तो उस वक्त हम केयरफुल होते हैं, उतना अलर्ट रहना है। लास्ट क्वेश्चन सिया, आप डरी तो नहीं है, आगे हम आपको बाइक राइड करते हुए देखने वाले हैं?
2: इसलिए मैं देखो उस चीज से वो जो इंसान करके गया उससे तो ऑब्वियसली मैं डरने वाली नहीं हूँ। दैट्स द मेरा दूसरा रिएक्शन, जस्ट पोस्ट अ वीडियो एंड मेक हिम वायरल देश भर में, जो वो हो चुके हैं। बट इट विल टेक टाइम टू रिकवर, टू मेंटली रिकवर, बट लाइक आफ्टर सम टाइम आई विल कम बैक टू।
1: आप क्या फीमेल राइडर्स को, विमेन राइडर्स को मैसेज देना चाहते हैं?
2: मेरा यही मैसेज है दैट ये इंसिडेंट ऑब्वियसली सबके साथ हो सकता है, जो मैंने गलती करी, गेयर्स हम सबको पहनने चाहिए
1: जी,
2: जो मेरी एक मिस्टेक रही है। ऑब्वियसली किसी के लिए अपना पैशन छोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सिस्टम को बदलना हमारी जिम्मेदारी है, सबको अवेयर करना, विच वी आर डूइंग एंड ये ऑब्वियसली हम सबको इंस्पायर करेंगे तभी सब निकलेंगे। बट अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम द सिस्टम कि आपकी जिम्मेदारी है कि हम भी सेफ रहें।
1: बिल्कुल, तो जब मशीन ये फर्क नहीं करती कि उसे लड़का चला रहा है लड़की चला रही है, तो आप क्यों फर्क कर रहे हैं? और हम यहाँ पर बता दें कि ऐसे घटनाओं से, ऐसे इंसिडेंट से हम डरने वाले नहीं है। सो 3 चीयर्स for women riders, hip hip
3: hooray,
1: hip hip
3: hooray,
1: hip hip
3: hooray।
1: Siya, सबसे पहले आपको हम सब hug करना चाहते हैं। Guys,
2: thank you so much। Come, we all wish you speedy recovery,
4: right? Absolutely।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: पाकिस्तान से है कल. सो आई होप वी डू वेल इन दैट एंड वंस यू विन दैट देन वी हैव इट अगेंस्ट जापान. तो वो टफ होने वाला है डेफिनेटली एंड ऑफकोर्स देर आर सम गुड प्लेयर्स. सो मेन एम ये रहेगा कि आई होप आई गिव माई टीम अ पॉइंट एंड गिव दैट पॉजिटिव नोट. तो इंडिविजुअल्स का अभी तक नहीं आया ड्रॉ बट ओवरऑल इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ टूर्नामेंट क्योंकि एशियंस टॉप प्लेयर्स बहुत लोग हैं. चाइनीज, जापनीज, कोरियंस, थाईलैंड से भी है. तो एवरी गेम मैटर्स क्योंकि फर्स्ट राउंड से टफ रहने वाला है. तो इजी मैचेस नहीं रहेगा.
1: एक आखिरी सवाल करूंगी. मेरे नजर जा रहा है आपके इयररिंग्स पे. दीज आर लिटिल शटल कॉक्स. मैं अपने दर्शकों को बता दूं बहुत क्यूट है. यू लाइक टू कैरी अ लिटिल पीस ऑफ बैडमिंटन ऑन यू?
0: Yeah, actually this has been gifted by my husband. So yeah, I do nice really so I do really like to, yes.
1: Sindhu, NDTV ke darshakon ko bata dijiye ki is tournament se kya expect karna hai and please boliye ki aapke saath jude jab aap khel rahi hongi.
0: No, I'm sure bahut fans, bahut log Japan mein hai support karne ke liye, bahut Indians hai. But otherwise from India as well, keep supporting me, keep showing your love. Mujhe pata hai bahut they support me a lot. But at the same time, I hope I do well and definitely I will give my best and play my 100%.
1: Absolutely, we'll support you for a gold. Thank you.
2: That's all we have on this bulletin, but news and updates from India to Japan and rest of the world will continue on NDTV. Keep watching.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
4: गोल्ड रश ऑन द फील्ड,
5: इंडियास चैंपियंस आर रेडी।
4: द बैटल्स एंड द ब्रेकथ्रूज फ्रॉम द अरीना टू द पोडियम।
5: एशियन गेम्स 2026,
4: गो फॉर ग्लोरी ओनली ऑन NDTV।
6: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द NDTV गोल्फ प्रो एम बिगिंस हियर। बिगर बोल्डर टीइंग ऑफ अक्रॉस इंडिया, द कोर्स ऑफ चैंपियंस, द कन्वर्सेशन ऑफ लीडर्स।

0: And beginning this bulletin from the latest controversy brewing from West Bengal. A U-turn and then again a U-turn. This is big. A U-turn shift coming across from West Bengal, where a big twist in the West Bengal bipole drama has unfolded. This is ahead of the bipole in West Bengal. A big twist in the West Bengal bipole. Remember, we had brought you a story of Rabiul Chaudhary, who had in fact withdrawn his nomination, or at least announced that he will withdraw his nomination. But now he says that he has not in fact gone ahead and withdrawn the nomination. He will be in fact contesting the election. Let's listen in to his latest reaction.
1: যারা আমাদের কর্মী তাদের উপর যেন কোন রকম তর্চারি না হয় সেগুলো তো নিশ্চয়ই বলবো, নিশ্চয়ই বলবো।
2: তাহলে প্রচার কখন থেকে নামছে?
1: প্রচার আজকে কি নেমে যাবো?
2: প্রচার নেমে যাবো
3: দিদির সাথে কখন কথা হলো? কথা বললেন বেরিয়ে দিদি সে দেন তো কি দিলেন? প্রোটেকশন দেবেন
1: দিদি? প্রোটেকশন মানে দিদি প্রচারের যেটুকু দরকার সেটা দেবে। প্রোটেকশনের ব্যাপারে আমরা যেটা করবো এখানে আমাদের লোকাল নেতৃত্ব সেটা ঠিক করি।
3: দলের কোনো নেতৃত্ব উচ্চতর
1: সেটা করে ইয়ে হয়নি। কল্যাণ কথা
3: হচ্ছে
1: কল্যাণার সঙ্গে কথা হচ্ছে, মহামত্র আসবে, আরো কুনালরা ফুনালরা সবাই আসবে, যারা আছে
2: দিদি আসবে।
1: দিদির আসার কথা কিন্তু বলেছিল, আবার কথা বলবো আজকে এটা হইয়া।
0: Now viewers, it couldn't get funnier than this. This candidate of Mamata Banerjee took a U-turn this morning, and the U-turn has again turned into another U-turn. Ritik Bondal is joining us live from West Bengal. Now Ritik, this is turning out to be a political thriller that I haven't witnessed before. Now Mamata Banerjee has received quite a few setbacks in the last few months, but what's happening in West Bengal before the bipoles? I mean, are we watching a Netflix political thriller in front of our eyes?
4: Well, definitely no end to the high drama of Bengal's by-election politics. Hours after that, Rabiul Alam Chaudhary, Mamata's candidate from Rajinagar by-election, you know, wished to withdraw his nomination on the last day of the due process. Now he takes a U-turn, and we are given to understand we spoke to Mamata Banerjee, the top brass of the Mamata Trinamool Congress camp just a while from now, and over telephone Mamata Banerjee reassured him all kind of assistance from the top leaders of the Trinamool faction. You know, he has been assured that the top leaders like Kalyan Banerjee, Kunal Ghosh and others will be campaigning for him before this by-election. But it's seemingly it is very, very interesting because there were several setbacks for Mamata Banerjee, because one, she left her party symbol, and then she lost her the party name. And now what we did see after Mamata's Nandigram candidate, back out from contesting election, now Rabiul Alam Chaudhary, a very prominent leader from Murshidabad and very close confidant of Mamata Banerjee, he also wished and stating or citing the reason that his own colleagues and party line decided not to support, not to come out and work politically before the elections, which is why possibly it is making him things very difficult for the political campaign. Now, as Mamata Banerjee convinced him, and the very first reaction is coming from Kunal Ghosh, just a short while from now, he tweeted and said that Didi's all speculation put to rest now.
0: All right.
4: Didi's candidate will be contesting in Rajinagar by-election. So it's making the entire political drama more tricky, more eye-catchy. All eyes are fixed to Nandigram and Rajinagar for 6th October by-elections.
0: All right, the political drama continues. Thank you, Ritik, for getting us the latest. But here's hoping that this is the last U-turn and we don't have to see another U-turn by evening. But we'll be tracking this story very closely. In fact, in less than 24 hours, the entire bipole equation in Nandigram has changed. The seat vacated by Chief Minister Suvendu Adhikari himself is set for a bipole next month. First, in a shocking move, Mamata's Nandigram candidate, school teacher Sanchita Dey, withdrew her candidature from Nandigram just before the withdrawal deadline. This came after a surprise meeting with Chief Minister Suvendu himself. An infuriated Mamata Banerjee, in retaliation, declared support for the Congress in Nandigram. She said she was already in talks with Rahul Gandhi and had mulled to offer support. However, Just hours after her backing the Congress, Nandigram candidate Milan Pradhan was arrested by the police in an old murder case. Rahul Gandhi, meanwhile, called this political vendetta and claimed BJP doesn't want to contest a fair election. Meanwhile, Ritaprata Banerjee called this Mamta's failed attempt to reach a deal with Congress in the bipolls. He called the withdrawal a fixed fight. Let's listen in to some of the reactions that we are picking up.
5: We are not going to surrender our head. We will never bow down our head to this biased political persons of the party who are doing this nuisance. We'll fight it out, we'll fight the battle, and we'll bounce back.
3: দিদি প্রোডাকশন মানে দিদি প্রচারের যেটুকু দরকার সেটা দেবে, প্রোডাকশনের ব্যাপারে আমরা যেটা করবো এখানে আমাদের লোকাল নেতৃত্ব সেটা ঠিক করি।
6: দলের কোনো নেতৃত্ব উচ্চতর
3: সেটা করে ইয়ে হয়নি, কল্যাণ কথা
7: বলতে
3: কল্যাণের সঙ্গে কথা হচ্ছে, মহামৈত্র আসবে, আরো কুণালরা ফুণালরা সবাই আসবে, যারা আসবে
2: দিদি আসবে,
3: দিদিরা আসার কথা কিন্তু ভবিষ্যতে আবার কথা বলবো, আজকে এটা হইয়া
8: हम लोग अभी जा रहे हैं पीसीसी, 7:30 को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है पीसीसी प्रेसिडेंट, और देखिए यही तो है, आज मिलन प्रधान को ममता बनर्जी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने सपोर्ट एक्सटेंड किया, कुछ ही घंटों में ही गॉट अरेस्टेड, ही गॉट पिक्ड अप। तो मिलन प्रधान वहाँ के बहुत दिनों से वो कांग्रेस के लिए एक यू नो एक ईमानदार और एक ऑनेस्ट इंसान है, जो कांग्रेस के वॉरियर रह चुका है और कांग्रेस के लिए फाइट करते हैं, कांग्रेस आइडियोलॉजी के लिए फाइट करते हैं। तो ऐसे अगर आप यू नो डराओगे धमकाओगे तो इस तरह से कि आप अपोजिशन को स्पेस नहीं दोगे, आप ऑटोक्रेसी चाहते हो इस देश में या डेमोक्रेसी चाहते हो, ये तो इस देश के इंसान बताएगा, इस देश के जो वोटर्स हैं वो फाइनल डिसीजन लेगा। इस तरह अगर आप धमका के आपको लगता है कि आप कांग्रेस को रोक सकते हो, अपोजिशन को रोक सकते हो, तो आप शायद एक कंप्लीट मिसकंसेप्शन।
9: आज आपका जो पार्टी है आप दूसरी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, आपका पार्टी को देखिए, टीएमसी पार्टी का जो तोड़ कर गया है एनसीपी में, हम लोग तो नहीं बोले थे, आज टीएमसीपी में जो टीएमसी वाले ज्वाइन किए हैं सब वरिष्ठ नेता है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को बोलने का हिम्मत नहीं था हमारा, और बोलने का कुछ विषय है ही नहीं है, पार्टी टीएमसी बोल के ही कुछ है नहीं, हम लोग तो कंफ्यूज है, नागरिक भी कंफ्यूज है कि टीएमसी है कहाँ, वो जो जोड़ा फूल बोलता था वो गया कहाँ, सब टुकड़े टुकड़े हो गया, गैंग टुकड़े टुकड़े गैंग, हम सुनते थे जो बोलते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और ममता बनर्जी उसको सपोर्ट करते थे, आज ममता बनर्जी आपका पार्टी का भी टुकड़े टुकड़े हो गया है, ईश्वर है ईश्वर है।
10: मैं उम्मीद करूंगी कि राहुल जी के नेतृत्व में टीएमसी के साथ कांग्रेस जुड़े, अगर ये होता है तो ये एक बड़ा मैसेज जाएगा कि ये जो गठबंधन है ये असल मायने में गठबंधन है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं हो रहा है।
11: 7 दिन से मालूम पड़ा आप कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को नंदीग्राम छोड़ेंगे, खुद रेजीनगर लड़ेंगे, जब कांग्रेस इनकार कर दिया इतना आग बबूला हो गए, बोले पार्लियामेंट में भी उसके साथ बैठेंगे भी नहीं, अचानक आज उनका कैंडिडेचर विदड्रॉ कर लिया। तो हम लोग बोल रहे ये भी बीजेपी के साथ सेटिंग है, कोई फिलर भेजने के लिए गए, भेजे थे फिलर देने के लिए।
0: Alright, Shreyasi Day joining us live from Nandigram on this big story. Shreyasi, on one hand, Rahul Gandhi says that this is a murder of democracy. And of course, the faction of TMC from Mamata Banerjee also charging at the BJP. The BJP says wrongdoers won't be spared. Is this just a continuation of the attacks that will only be seen widening in the next few weeks?
9: Well, Aditya, the split within the Trinamool Congress has had a direct impact on Mamata Banerjee's party here in West Bengal. We have been seeing how she's having a difficult time fielding bipole candidates, and that is quite telling. But the only positive outcome of this entire episode

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger, bolder, teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Season announcement, 19 September.
5: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
6: गोल्ड रश ऑन द फील्ड,
7: इंडियास चैंपियंस आर रेडी।
6: द बैटल्स एंड द ब्रेकथ्रूज फ्रॉम द अरीना टू द पोडियम।
7: एशियन गेम्स 2026,
6: गो फॉर ग्लोरी ओनली ऑन एनडीटीवी।
8: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger, bolder, teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Season announcement, 19 September.
5: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
6: गोल्ड रश ऑन द फील्ड।
7: इंडियास चैंपियंस आर रेडी।
6: द बैटल्स एंड द ब्रेकथ्रूज फ्रॉम द अरीना टू द पोडियम।
7: एशियन गेम्स 2026।
6: गो फॉर ग्लोरी ओनली ऑन एनडीटीवी।
8: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
4: अ जनरेशन विद क्वेश्चंस
9: द स्टारिंग एंड द होल ग्लैमरस साइड ऑफ इट।
10: एज आई सेड लाइक आई कांट एम्पैथाइज विद इट।
4: अनकन्वेंशनल।
11: आई फील ब्लेस्ड एज लॉन्ग एज द वर्क इज गोइंग ऑन आई एम हैप्पी।
4: अनअपोलोजेटिक। Unafraid of change. Ready to challenge.
12: Aspirational.
4: The ideas. The issues.
13: You really are.
4: The young view.
13: Public perception.
4: NDTV Yuva. 28 September 2026. Only on the NDTV network.
14: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures.

0: नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
1: आज जब दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है।
2: He's a very smart man and a great friend of mine, actually, a great leader.
3: But Modi, he's great. Prime Minister, he's great.
4: Prime Minister Modi, true friend of Australia and a very dear friend of mine.
5: Dear Prime Minister, I want to thank you so much for your friendship. Hans loves you.

0: their alleged role in the case. We're getting in a reaction that's coming in from the Mumbai DCP on the incident. Let's listen into what he has to say.
1: आईआईटी के एक हॉस्टल में बीटेक सेकंड ईयर के एक स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट करने की एक घटना हुई थी. इसी घटना के संबंध में जो डिसीज स्टूडेंट है उनके पिताजी की कंप्लेंट पे पवई पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर किया गया है और उसका इन्वेस्टिगेशन पवई पुलिस की तरफ से किया जा रहा है. इसमें ये जो मामला है अबेटमेंट टू सुसाइड और अदर रिलेवेंट सेक्शंस के तहत हमने रजिस्टर किया है और मृतक स्टूडेंट के जो पिताजी हैं उन्होंने जिन जिन लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किया है उन सभी के खिलाफ अभी जांच चालू है.
0: All right, with that, it's time for us to slip in a very quick commercial break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.

0: इकोसिस्टम क्रिएशन बहुत ज़रूरी है। अभी तक ये इकोसिस्टम हमारे देश में क्यों नहीं था, और क्या आपने ऐसा अलग किया है पहले की सरकारों से, पहले के जो द रिजीम्स व्हिच वर देयर अर्लियर, व्हाट हैव यू डन डिफरेंटली एंड व्हाई दिस इतना ज्यादा फोकस इकोसिस्टम पर क्यों है, क्यों ये जरूरी है हमारे देश के लिए?
1: इकोसिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको जापान का, जापान में इकोसिस्टम होने के कारण दे कुड वेरी इमीडिएटली कम अप। इकोसिस्टम नहीं होता, देयर आर सो मेनी कंट्रीज व्हिच हैव फेल्ड, और उनके फेलियर के पीछे एक ही रीजन था कि उन्होंने जस्ट कहा कि एक फैब लेके आ जाओ, बाकी सब अपना आप हो जाएगा। नहीं,
0: हमारे देश में क्यों नहीं बना बेका की इकोसिस्टम?
1: तो सेमीकंडक्टर का प्रोग्राम ही तो अभी चालू हुआ है, सेमीकंडक्टर का प्रोग्राम ही अभी चालू हुआ।
0: तो आपने क्या डिफरेंट किया कि अब इकोसिस्टम, मतलब
2: थॉट अबाउट द इकोसिस्टम,
0: द पॉसिबिलिटी वाज ऑलवेज देयर दैट सच इकोसिस्टम कैन एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, व्हाट डिड यू डू डिफरेंटली फ्रॉम अर्लियर?
1: वी थॉट वेरी मेथोडिकली, वी लिस्टेड आउट ऑल द थिंग्स व्हिच गो इनटू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इकोसिस्टम। सो व्हाट आर दोस थिंग्स? फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइजेस दैट वी डिड वाज 250 स्पेशलिटी केमिकल्स विच गो इन टू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। उन सब की लंबी एक लिस्ट बनाई, कौन उनके मैन्युफैक्चरर्स है, वी कॉन्टेक्टेड ऑल ऑफ देम, वी इन्वाइटेड ऑल ऑफ देम टू कम टू इंडिया। दे वर लाइक सरप्राइज कि समबडी इज इन्वाइटिंग देम टू इंडिया। देन वी केम टू द मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स, ईच एंड एवरी कंज्यूमेबल विच गोज इन टू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, उन सब लोगों को बुलाया, उन सब की लिस्ट बनाई, सबको इन्वाइट किया इंडिया में, सबके साथ बातचीत की, क्या दिक्कत है आपको, क्या कर सकते हो, पार्टनर्स किस तरह के चाहिए, क्या आपको फैसिलिटीज चाहिए, वो सारी चीज़ें उनके साथ डिटेल में डिस्कस की। फिर इक्विपमेंट, ऑल द मशीन्स विच गो इनटू इट, एंड आई पर्सनली विजिटेड ऑल द अबाउट 35 ऑड मशीन मेकर्स, उनसे गए, बातचीत की, क्या आपको यहाँ पे डिफिकल्टी आती है, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, हाउ टू क्रिएट दैट इकोसिस्टम ऑफ प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, किस तरह के लोग हैं जिनके साथ उनको काम करना है, वो सारी चीज़ें जब काम की। देखो, इस प्रोग्राम की बिगनिंग में प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियरली हमको कहा था, डोंट टेक शॉर्टकट्स, इवन इफ इट गेट्स डिलेड बाय अ फ्यू इयर्स डोंट वरी, बट डू समथिंग विच विल बी गुड फॉर द कंट्री फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स, थिंक 20 इयर्स। पीएम साहब ने एकदम क्लियर हमें कहा था कि थिंक 20 इयर्स एंड थिंक ऑफ द इकोसिस्टम। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है ह्यूमन हिस्ट्री में, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग विच इज मैन्युफैक्चर्ड। आई गिव दिस एग्जाम्पल, If you have to write your name on the nail, you can write it. It's not very difficult. But try to write the names of all your classmates in all your classes on this nail. Would that be difficult? That would be difficult. Now try writing all the textbooks on this nail. That is what semiconductor manufacturing is. That precision is very, very difficult. So getting that precision required huge amount of effort. हमने वो एफर्ट लगाया और सबके साथ ह्यूमिलिटी के साथ, बहुत ही एक हमारे देश में नहीं है इंडस्ट्री, आप आइए हमको हेल्प कीजिए एंड वील डू वॉट एवर इज नीडेड टू बी डन, और वो हमने किया।
0: आप जब दूसरे फेज में जा रहे हैं, आप जो हमारा मिशन है उसके 2.0 वाले फेज में आप जा रहे हैं, बट कई सारे ऐसे अभी भी लोग हैं जो कहते हैं कि भाई यहाँ तो सिर्फ असेंबल हो रहा है, हम हमेशा मेक इन इंडिया की बात करते रहते हैं, बट दिस इज ओनली असेंबली, क्या कहेंगे आप उनको?
1: बहुत गलत बोलते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। पहली बात, अगर आप इस में जाओगे, आप देर आर सो मेनी पेविलियंस जहाँ पे इंडिया में डिजाइंड चिप्स आर नाउ गेटिंग एक्सपोर्टेड टू जापान, गेटिंग एक्सपोर्टेड टू यूरोप, गेटिंग सम ऑफ देम गेटिंग एक्सपोर्टेड इवन टू चाइना एंड टू US। दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर गेटिंग डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड हियर, दिस इज, एंड यू कैन गो एंड सी, दिस इज द रियलिटी। तो जो लोग नहीं जानते वो लोग एलिगेशंस लगाएंगे, लगाना उनका काम है, बट वी आर फीलिंग दैट यस, वी हैव रीच्ड अ लेवल वेयर द फाउंडेशन इज नाउ सेट, नाउ द टाइम टू बिल्ड इट इन अ बिग वे हैज कम।
0: बट व्हाट आर द स्पेसिफिक मेजर्स एंड इंसेंटिव्स दैट यू आर गिविंग? यू सेड आपने विश्व भर के जितने आपके जो ऐसी पावर्स हैं उनको बोला है कि आप आइए हेल्प अस टेक दिस मिशन फॉरवर्ड, बट व्हाट आर द इंसेंटिव्स दैट यू आर ऑफरिंग टू देम?
1: देखो, इंसेंटिव्स बाकी दुनिया जितनी देती है उतनी हम नहीं दे सकते, ऑब्वियसली बिकॉज हमारे फाइनेंशियल लिमिटेशंस अपने हैं, और जितना लाइक देर आर कंट्रीज विच हैव इन्वेस्टेड क्लोज टू $600 बिलियन, हमारा इन्वेस्टमेंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 13-15 बिलियन डॉलर्स टाइप का। फर्स्ट फेज वॉज $7-8 बिलियन, दिस इज अबाउट $17-18 बिलियन। बाकी कंट्रीज $100 बिलियन से नीचे बात नहीं करती, लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट

0: ओके, तो यू वुडेंट बी एबल टू काउंट मोर देन 20 यूनिवर्सिटीज जिसमें इस तरह का प्रोग्राम है. वी हैव डन इट इन 400 यूनिवर्स. तो इमेजिन अ स्टूडेंट गोइंग टू द इंडस्ट्री एंड टेलिंग दैट आई हैव डिजाइन दिस चिप, आई हैव टेप्ड इट आउट एज इन मैन्युफैक्चर्ड इट एंड आई हैव यूज्ड इट इन अ बोर्ड, एक्चुअली टेस्टेड इट. इस तरह की कैपेबिलिटी बहुत कम है दुनिया में. एंड वी हैव गिवन देम इंडस्ट्री ग्रेड टूल्स, कैडेंस का, सिनॉप्सिस का, सीमेंस का. वी हैव गिवन देम इंडस्ट्री ग्रेड टूल्स. ऐसा नहीं कि जस्ट टेस्ट लैब वैसा.
1: यू नो दिस इज सो फैसिनेटिंग, क्योंकि सर एक ऐसे वक्त पे हम बात कर रहे हैं जब सब लोग जेंजी की बात कर रहे हैं. एक ऐसा वक्त होता था जब एस्पिरेशन बस इतना होता था कि आप अपना इंजीनियर, डॉक्टर, शायद लॉयर बन जाएं. और अब आप कह रहे हैं कि दिसपुर या फिर बहरामपुर या फिर आई डोंट नो राउरकेला, बोलपुर में बच्चे बैठ करके, दिस इज वुड यू से Also the language or the grammar of Gen Z that everyone keeps talking about, एक वो भी Gen Z है.
0: हेमंत बिस्वा शर्मा जी कहते हैं ना कि मेरी राजनीति सेमीकंडक्टर है.
1: That's true though.
0: उन्होंने कहा मेरा कैंपेन सेमीकंडक्टर है. आसाम में हो रहा है प्लांट, इट्स अ फैंटास्टिक प्लांट, वर्ल्ड क्लास. जागीर रोड में आसाम से भी, गुवाहाटी से भी कितना दूर है. ये हो रहा आज, दैट्स अ रियलिटी. दैट्स व्हाट द इंडस्ट्री वाज सेइंग 4-5 साल पहले जब आप लोगों ने लॉन्च किया था. वी यूज टू थिंक कि इंटेंशन है. 50-60 साल से इंडिया हैज बीन सेइंग दिस. आज है कॉन्फिडेंस.
1: आपने टेपिंग आउट की बात की. आपने इनॉग्रल स्पीच में द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट टेप आउट मींस दैट व्हेन इट गोज इनटू प्रोडक्शन फ्रॉम डिजाइन बट द वर्क इज नॉट ओवर. फेज वन से फेज टू हो गया बट फिर भी वर्क इज नॉट ओवर.
0: अभी तो स्टार्ट हुआ है. मैं तो कहता हूँ कि ये फाउंडेशन है. और पीएम साहब ने जो कहा है वो एग्जैक्टली सही कहा है. ये जस्ट एक फाउंडेशन है. अब तक फाउंडेशन बनाना भी अपने आप में बहुत डिफिकल्ट था. लेकिन अब देखो बहुत सारे ग्लोबल चैलेंजेस आएंगे. रिमेम्बर जब एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग चालू हुआ था तो कुछ लोगों ने फूड पॉइजनिंग की. रॉयटर्स जैसी एक संस्था ने इतनी फेक न्यूज चलाई कि मैरिड वुमेन को अलाउड नहीं करते. इस तरह की चीजें चलाई, इलेक्ट्रिसिटी के तार काटे गए, कई तरह के ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें पीपल हु डिडंट लाइक इंडिया टू कम अप एज अ मैन्युफैक्चरर, दे ट्राइड ऑल ट्रिक्स.
1: आप कह रहे हैं सबोटाज किया गया इस तरीके से.
0: किया गया है
1: तार काट करके,
0: हर तरह से सबोटाज करने की कोशिश की. अब वो चैलेंज भी आएगा. अब हमें उस चैलेंज के लिए भी तैयार रहना चाहिए. अभी तो देखो ये बिगिनिंग है एंड द वर्ल्ड हैज टेकन नोट ऑफ इट. सो वंस पीपल स्टार्ट फीलिंग कि यार ये एक नया देश इस इंडस्ट्री में आया है, तो देर विल बी पीपल हु सपोर्ट अस, बट देर विल बी ऑल्सो पीपल हु अपोज अस, एंड दे आर द वंस हु आर गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स. आई हैव टोल्ड द एंटायर इंडस्ट्री बी प्रिपेयर्ड फॉर सच इंसिडेंट्स नाउ.
1: और ये सिर्फ फिजिकल सबोटाज नहीं है, एक नैरेटिव का सबोटाज.
0: नैरेटिव का सबोटाज ये होगा, पक्का होगा. देखना
1: किस तरीके का, आप किस तरीके के ऐसे चैलेंजेस फोर्सी
0: करेंगे. साइबर अटैक्स करेंगे, लोग बहुत सारी फेक न्यूज डालेंगे, हर तरह का फिजिकल अटैक करने की भी कोशिश करेंगे. वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री. दिस इज नॉट एन इंडस्ट्री वेयर पीपल विल गिव इन सो इजीली, राइट? सो वी हैव टू मेक आवर स्पेस. वी हैव टू बी वेरी वेरी मेथोडिकल, वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द चैलेंजेस एंड डू इट.
1: फाइनली आई वांट टू आस्क यू सर, This is generally, I would assume, a very young industry.
0: It is.
1: जो आप डिजाइन की बात कर रहे हैं, जिन लोगों से आप इंटरैक्ट करते हैं, जो लोगों को मैं देख रही हूँ यहाँ पे, they are very young. What would you like to say to the young people of our country? And because all the very many departments that you handle, they all in some way or the other interact with the young people of our country. What would you say to them today as minister, as somebody who has a stake in the growth of this country? What should they look forward to in the next 5 years?
0: One, there will be many more opportunities for semiconductor design, semiconductor manufacturing, semiconductor testing, semiconductor validation. It's a full value chain. Semiconductor equipment, materials, many more opportunities will come. Look at those opportunities, prepare for it. We'll help you from the ISM, from the mission, to help you prepare for that. One. Two, this is not an industry for people who are okay with taking shortcuts. This is an industry where you have to have real determination and discipline to be able to run it in a long term. I'll give you I mean, there are multiple examples. Let me not give any personal example. So this is an industry which requires a lot of determination, a lot of discipline. So those who want to be in this industry, be prepared for a marathon.
1: No, please give me that personal example. It would be great to hear.
0: You have to be of that mindset where you go deep. It cannot be for people who just want to be in this industry for 1 year or 2 years. It's not for them. So youngsters, those who want to be part of it, think long term. Go deep, really do deep dive. So,
1: final words. आपका जो एक वीडियो था जो बहुत लाखों लोगों ने देखा, जहाँ पे आप चिप एक्सप्लेन कर रहे थे, उसके पीछे थॉट क्या था? क्योंकि लोगों ने कहा यहाँ पर प्रॉपर किसी प्रोफेसर ने शायद इतने अच्छे से नहीं समझाया होगा जितना अश्विनी वैष्णव जी ने समझाया.
0: I enjoy
1: that. What was the thought behind it?
0: I just enjoy the subject because I like it. We got this semiconductor in the third year of our BTech program. So there was a book called J.P. Hayes, John P. Hayes. So just 3 or 4 chapters were there in the syllabus, and rest of the book was for masters and PhDs. But in the third year itself, I read the entire book. So I enjoy that subject.
1: Well, you can take a man out of his books, but you can't take the books out of the man. You know, the kira jisko kehte hai ki bhai, knowledge ka kira. Thank you very much, Mr. Ashwini Vaishnav, and always it's a pleasure. And very best of luck. May phase 2 be even better than phase 1. Thank you.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: वेलकम, सत श्री अकाल। मैं हूं तन्वी मल्हारा एंड दिस इज वंदे भारतम। 24 जून 2026 को शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट और आज उस मूवमेंट का आखिरी पड़ाव है। आज चुने जाएंगे टॉप 5 विनर्स एंड स्पेशल कैटेगरी विनर्स। देखिए, यहाँ तक की जर्नी बहुत स्पेशल थी, यहाँ तक की जर्नी ओवरवेलमिंग थी, एक्साइटिंग थी, लेकिन हमने जाना कि हर इनोवेटर में है जज्बा कि यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ कर दिखाना है। देखिए, फाउंडर की जर्नी आसान नहीं होती। फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग रिक्वायर्स करेज, पैशन एंड डिटर्मिनेशन। कुछ को मिले वंदे विंग्स, कुछ को मिला शुभारंभ, लेकिन एक चीज जो मुझे मिली है वो है ये कि यार, रेड कार्पेट अगर सेट हो गया तो मुझे अब ब्रांड एम्बेसडर से ब्रांड फाउंडर की जर्नी आज से शुरू करनी पड़ेगी। तो क्या कहते हैं, नाउ दैट द रेड कार्पेट इज रेडी, आर वी रेडी टू वेलकम ऑल आवर ब्रिलियंट इनोवेटर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया? आई थिंक वी आर। इज दिस योर फर्स्ट टाइम वॉकिंग द कार्पेट?
1: Yes.
2: ऐसा पर देखा नहीं था, मतलब ड्रीम कम ट्रू टाइप है। Yes.
0: You are here for the grand finale. कैसा फील हो रहा है आज? Can't control his reactions, emotions.
2: Extremely excited. Very proud that we could reach here. Super happy.
0: The founders from Chill Ho, so we are very chill right now, are we?
1: Yes, we are chill. There is a very high. We are feeling very good. थोड़ा बहुत celebrity का feel already आने लग गया है। सब अच्छा जा रहा है अभी तक। Hopefully हम जीत जाएं। Feel ऐसा आ रहा है कि जीतने वाले हैं या जीत चुके हैं।
3: जीत तो ये platform से ही मिल गई है। बाकी ऊपर वाले के ऊपर है।
0: Wow. कहते हैं कोई भी सफर की खूबसूरती उसके मंजिल में नहीं होती, लेकिन उन कहानियों में होती है जो हमें रास्ते में मिलती है। हमारे वंदे भारतम के सफर में हमारे साथ कोई ऐसे शख्स रहे जो उन्होंने हमारे इनोवेटर्स के साथ सिर्फ इनोवेशन की बातें ही नहीं, बल्कि उनके साथ उनकी पर्सनल कहानी भी जानी। और वंदे भारतम के इस सफर में एक दोस्त बनकर उनका हौसला भी बढ़ाया। तो आइए स्वागत करते हैं इस रेड कार्पेट पे। प्लीज हेल्प मी इन वेलकमिंग द होस्ट, द एक्टर, द हार्ट थ्रॉब and our brand ambassador, Mr. Rajiv Khandelwal. Hello.
4: Hi, Tanvi.
0: Look at you. You look so sharp.
4: You can't see my hand. It's a grand finale.
0: Mesmerized by your face.
4: That's
0: your hand.
4: That's a smart one.
0: राजीव, मुझे बताइए कि आपने इतने सारे दिन इतने इनोवेटर्स से बात करी, नॉट जस्ट एज अ होस्ट बट आल्सो एज अ फ्रेंड, ऐसा कोई मोमेंट था जब आपको लगा यार दिस इज गोना स्टे विद मी फॉरएवर?
4: तन्वी, एक मोमेंट नहीं था, मोमेंट्स के बाद मोमेंट्स थे, इनोवेटर्स के बाद इनोवेटर्स थे। आई थिंक अगर मुझसे पूछोगे कि किसी एक को याद करो तो बड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज आई थिंक एवरी डे देयर वर इनोवेटर्स who touched our hearts, who inspired us, who also encouraged us to be like them.
0: और कैसा लग रहा है, आप ग्रैंड फिनाले होस्ट करने वाले हो आज?
4: I'm excited, I'm nervous. It's all kind of energies mixed, but I think I'm getting late, so I better rush to the.
0: Yes, you should go, but before you go, I'm going to give you one emoji. You are our king.
4: Well, the kings are today our innovators.
0: Fire. Sure. Yes. Okay, bye now. Have fun.
4: You've been great.
0: Thank you. Learning from you. Bye.

उनके आइडियाज की शिद्दत को हमने दिल से महसूस की। वो नर्वस हुए तो हाथ हमारे कांपे, वो मुस्कुराए तो सुकून की सांस हमने भरी, और जब उनके सपनों को उड़ान मिली तो थैंक यू हमारे दिल से निकला। मैं बात कर रहा हूं कभी हार ना मानने की कसम खाकर आए हमारे इनक्रेडिबल इनोवेटर्स की। वेलकम टू वंदे भारतम, एन इनिशिएटिव बाय मिस्टर गौतम अदानी। थैंक यू सो मच। और मैं एक बार फिर आपका दोस्त राजीव खंडेलवाल सैल्यूट करता हूं हमारे इनोवेटर्स की सोच, उनके आइडियाज और उनके विजन को। 26,000 रजिस्ट्रेशन के बाद आज इस मंच पर हमसे मिलने आएंगे हमारे फाइनल 5 इनोवेटर। आज इस मंच पर वो भी आएंगे जो वंदे भारतम मंच की नींव, जिनकी सोच से हम सब जुड़े और जिनके सफर से हम सब प्रेरित हुए। कुछ लोग अकेले बिजनेस खड़ा करते हैं, कुछ लोग उस बिजनेस को साम्राज्य बनाते हैं, पर उनमें से कोई एक अपने साथ साथ करोड़ों लोगों की जिंदगी में रोशनी, मुस्कुराहट और खुशियां लेकर आता है। द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डर ऑफ इंडियाज ग्रीन ट्रांजिशन, प्लीज वेलकम द विजनरी बिहाइंड द मूवमेंट वंदे भारतम, श्री गौतम अदानी जी।

0: कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिनसे ना हाथ नहीं मिला जाता, उनके सामने सिर्फ अपना शीश झुकाया जाता है। आप उनमें से एक हैं सर। ये आपने सपना देखा था, ये आप ही की सोच थी, आज रियलिटी में बदल गई है।
1: नहीं, मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतना ये बड़ा सक्सेसफुल होगा। एवरीवन वर्क्स ऑन दिस वंदे भारतम थिंग्स इज आउटस्टैंडिंग।
0: आपकी सोच जुड़ी थी सर इसके साथ में। आपकी वो जो एक लाइन है जो आप हमेशा कहते हैं कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, वो सोच ने आई थिंक बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस दिया। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सोच आपके दिमाग में आई कैसे?
1: देश में काफी हुनर है, लोगों को एक मौका मिलना चाहिए। और ये जब चीज हमने देखा और जब स्टार्टअप इंडिया से लेके सब ये इनोवेशन जब हो रहा था, तब मेरे को लगा कि इसको और बढ़ावा देना चाहिए। और उसमें से ये सोच निकली कि वंदे भारतम के नाम पे ये इनिशिएटिव चालू करना चाहिए और उसमें अदानी ग्रुप को उसमें हेल्प करके सबको जो निखरा हुआ जो व्यक्तित्व है लोगों का वो कैसे बाहर निकाले। बिजनेस का भाग ही है कि आप दूसरे लोगों को भी किस तरह से साथ निभा के उसको आप आगे लेके आ सकते हो।
0: और कमाल की बात ये सर, आप इतना बिजी रहते हैं उसके बावजूद भी आपने एक ऐसी चीज सोची जो कि आपके बिजनेस वाली दुनिया में नहीं है, जो एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि दिस इज अबाउट एम्पावरिंग द एंटायर नेशन। एक चीज़ जो हमारे फाउंडर्स के बहुत काम आएगी कि आपने सपने देखे, आपने सपने पूरे किए और अब आप बहुत लोगों के सपने पूरा कर रहे हैं। इस सफ़र में जो सपनों से सपनों को पूरा करने का सफ़र होता है, उसमें कोई एक चीज़ जो लोगों को नहीं भूलनी चाहिए?
1: मेन है मेहनत। आप कोई नियत से मेहनत करेगा वो आदमी कभी ना कभी आगे पहुँचेगा। तो मेरी तो सबको गुजारिश है कि आप मेहनत के रास्ते से कमी नहीं करो और उसमें आगे बढ़ते।
0: थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। प्लीज अपनी किसी भी लेगेसी की सबसे खूबसूरत चीज ये होती है कि जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो ना सिर्फ उस लेगेसी को संभाले बल्कि अपनी सोच और अपनी विजन से उस लेगेसी को आगे लेकर जाए। वंदे भारतम के इस मंच पर हमें मौका मिला कि अदानी परिवार की जो नेक्स्ट जनरेशन है हम उनसे मिले, उनकी सोच और उनकी विजन को समझें। और आज एक बार फिर हम मिलते हैं अदानी परिवार की यंग जनरेशन से जो भारत के भविष्य को ना एक अलग पर्सपेक्टिव से देखती है। प्रणव, एक चीज इस मंच पर आने के बाद में जो आपके साथ रह गई,
2: ऑल द पार्टिसिपेंट्स, वन थिंग दैट आई सॉ इज द टेनेसिटी रियली टू स्टिक ऑन टू देयर आइडियाज। उसमें जो एक हमने देखी थी कंपनी, वो 8th स्टैंडर्ड, इनफैक्ट 7th स्टैंडर्ड से उसका ये ड्रीम था। दे आर ऑलरेडी क्रॉस्ड कॉलेज एंड दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट।
3: हम बिहार बाल भवन किलकारी, हर स्टेट में बाल भवन होता है, वहाँ हम दोनों साइंस विधा में सीखते थे प्रोफेशनल स्टेम। तो हमें वहाँ प्रोजेक्ट दिया गया कि बिहार से हमें, और ये समस्या बहुत लोकल है, इस पर आप लोग कुछ असेस करिए कि टेक्नोलॉजीज क्यों फेल होती है। तो तब से हमने साइंस कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया, हमें A+ ग्रेड मिला और बिहार सरकार ने हमें सपोर्ट किया इस प्रोजेक्ट को।
2: तो टेनेसिटी जो एक चीज़ है, एक चीज़ जो पकड़ के रखी है उन्होंने, दैट इज समथिंग दैट आई सॉ कॉमन अमंग एवरीवन ओवर हियर।
0: करण, आपने इतने लोगों को वंदे विंग्स दिए, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन यहाँ से? How do you see it turning out?
4: I am extremely positive that a lot of them, if they keep doing what they're doing and they keep on with their tenacity, as what Pranav bhai said, I think they will all be successful.
0: Thank you so much. Jeet, something which happened here which was unexpected.
5: You know, everyone was driven by a purpose. So, unhone jo bhi startup chalu kiya hai, jo bhi idea incubate kar rahe hai, it was all driven by some sense of purpose that they personally had. And I think that touched me a lot, that, you know, I could connect with that. Yeah, it was great to see everyone.
0: Fabulous. Thank you so much. And Srishti, how was your experience?
6: It was so humbling and so grounding to see the sheer persistence and grit jo hamare India ki yuva mein hai. मुझे सबसे ज़्यादा बात अच्छी ये लगी कि मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स दैट आई मेट, दे डिडंट स्टार्ट विद स्प्रेडशीट्स। उन्होंने अपने काफ़ी पर्सनल प्रॉब्लम को इनवर्ट देख के उसमें ट्रू ह्यूमन एम्पैथी, यू नो, देयर वर फाउंडर्स दैट वर वर्किंग ऑन रेयर डिजीजेस।
7: मैंने इतना जेनेटिक्स रेयर डिजीजेस के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि अब मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है।
6: There were founders, assistive technology, एंड थिंग्स जो हम डेली लाइफ में उतना नहीं सोचते हैं, पर उन्होंने एक प्रॉब्लम को पकड़ा.
8: वन प्रोडक्ट वन इंडिविजुअल इज अ सॉल्यूशन इन द मार्केट, आई गेट इट, बट आवर सॉल्यूशन इज बियॉन्ड मार्केट, इट्स अ सोशल इम्पैक्ट.
6: और एम्पथी के साथ हाउ डू दे लेयर इट विथ इकोनॉमिक्स, इट वॉज वेरी वेरी हार्टनिंग एंड वेरी वेरी हम्बलिंग टू सी.
0: ऑलराइट, तो आप गौतम सर की जर्नी के बारे में हम सब जानते हैं, हमने सब इनकी सक्सेस स्टोरी देखी है. But there are very few people, I think, who know or who have seen the struggle behind the journey. What makes him who he is today? So let's have a quick look at his magnificent journey, I would say.
9: जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या, मझधार क्या. हरिवंश राय बच्चन जी की कही ये बात गौतम अदाणी जी की पहचान है. एक मध्यम वर्ग के परिवार में जन्मे गौतम अदाणी जी के पास था तो सिर्फ उनके माता पिता का आशीर्वाद.
10: मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है.
9: और एक सपना, और उस सपने पर अटल विश्वास. कॉलेज की किताबों से ज्यादा जिंदगी के तजुर्बों से सीखा. 16 साल की उम्र में अहमदाबाद की गलियों से सीधा मुंबई की भीड़ में आ पहुंचे नौकरी की तलाश में. इन्होंने हर ठोकर को आने वाली जीत की सीढ़ी में बदल दिया. एक छोटे से ट्रेडिंग बिजनेस को भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम्स में बदल दिया. पोर्ट्स, पावर, एयरपोर्ट्स, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल, डिफेंस, रिन्यूएबल्स, ये सिर्फ बिजनेसेस नहीं है, ये भारत के भविष्य का बुनियादी ढांचा है. गौतम अदाणी जी का हमेशा से विश्वास रहा है कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी उसके लोग हैं. इसी विश्वास को अपना मकसद बनाकर इन्होंने दी उड़ान हमारे सैकड़ों युवाओं और उनके सपनों को, दिया एक बेहतर जिंदगी का भरोसा, भारत के गांव में बसे अनेक परिवारों को दिया रोजगार, दिया भारत के हजारों बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य का वरदान. सपने अकेले देखे जा सकते हैं, पर उन्हें साकार करने के लिए किसी अपने के साथ विश्वास और हौसले की जरूरत होती है. गौतम अदाणी जी के सफर में प्रीति अदाणी सिर्फ उनकी जीवन साथी नहीं है, एक ऐसी मजबूत ताकत भी है जिन्होंने गौतम अदाणी जी को कभी रुकने नहीं दिया. गौतम अदाणी जी की कहानी सिर्फ एक उद्योगपति की कहानी नहीं, भारत के सुनहरे भविष्य का सफर है. असली लेगेसी कंपनी के नाम से नहीं, राष्ट्र निर्माण से लिखी जाती है. वंदे भारतम का विजन जो उन्होंने 24 जून को लॉन्च किया था, आज देश के कोने कोने से हजारों इनोवेटर्स को उड़ान दे रहा है. वंदे भारतम आज 26,000 से भी ज्यादा लोगों के परिवार का रूप ले चुका है, और उनका यही परिवार उनसे कुछ कहना चाहता है.
11: मेरे लिए वंदे भारतम एक एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है.
12: वंदे भारतम एक ऐसा मंच है जहाँ अनसुनी आइडियाज को भी सुना जाता है.
13: एक ऐसा बिलीव कि वोकल फॉर द ग्लोकल, ग्लोबल एंड लोकल दोनों साथ.
14: ग्रासरूट इनोवेशन का एक प्लेटफॉर्म है जो इंडिया का सारे इनोवेटर के लिए.
15: जीवन का टर्निंग पॉइंट आया है वंदे भारतम से.
16: हमारा जैसा स्टार्टअप को बहुत ही खुशी हुआ, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म हमको मिल रहा है, तो जो भी कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है.
17: सर, यू आर एन इंस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ फ्यूजिंग कैपिटलिज्म विद नेशन बिल्डिंग.
18: इफ आई लुक अप टू समवन, दैट विल बी हिम. मैं उनके जैसा बनना चाहूंगी.
19: अदानी सर हैज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ द पीपल हु आर लुकिंग एट बिजनेस.
20: इन्होंने हमें समझा कि हाँ, हम आइडियाज इम्पॉर्टेंट होते हैं, आइडियाज मैटर करते हैं, चाहे कोई से भी एज हो, चाहे कुछ भी हो, आपको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए.
21: और जो लाइन है ना कि इफ आई कैन डू इट, एनीबॉडी कैन डू इट, इट्स लाइक अ ग्रेटेस्ट टेक अवे.
22: एंड द मैसेज फॉर मिस्टर गौतम अडानी जी इज दैट थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी.
23: वेरी स्पेशल थैंक्स टू गौतम अडानी जी टू मेकिंग दिस पॉसिबल.
24: आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया.
25: थैंक यू वंदे भारतम.
23: थैंक यू फॉर द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी.
25: थैंक यू.

0: Ma'am, मैं ये भी देख रहा था तो I actually realized that how much you are complimented for what you do to make Gautam Adani ji who he is. So this one is for you. What a journey this was. ये सिर्फ journey सिर्फ founders की नहीं थी. I think even the mentors जो यहाँ पर आए थे, I think they also had a really really good experience. कुछ लोग यहाँ पर हैं, जैसे विजय जी यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने पूरे शो पर गाना गाया. सर आए यहाँ पर. आपने इतना अच्छा गाना बनाया था हमारे शो के लिए, तो वही सुनना चाहेंगे हम.
1: तो ये गाना जल्दी से लिखा गया था 24 घंटे के अंदर में. माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि सर लिखा भी गया और जल्दी से रिकॉर्ड भी हुआ, तो शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा. मैं जरूरी त्रुटियाँ जरूर रहेगी तो माफ़ करना उसके लिए. मैं इसको आपको रिसाइट कर देता हूँ. ऐसा था कि सपनों को पंख लगाने का आया है ये त्योहार, हर नए प्रयास से ही होगा भारत का नव संचार.

0: विजय सर, आप यहाँ पर आई गए तो बता दीजिए कैसा था आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर?
1: नहीं, मैं ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा अनुभव मेरे को मिलेगा, क्योंकि ये ग्रास रूट से जुड़े हुए लोगों से मिलने का मौका मिला, उनको सुनने का मौका मिला, और उनको जो ये मंच मिला है ये बताता है कि हमारा आने वाला भारत कैसा होगा। अगर इनके हैंड होल्डिंग की जाए और इनको इनको अगर सहयोग किया जाए तो भारत उन्नति के पथ पर जरूर आगे बढ़ेगा।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए शामिल होते हैं वंदे भारतम की इस विजय यात्रा में। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज वंदे भारतम फिनाले एपिसोड, दिस इज वंदे भारतम अवार्ड्स नाइट। मेंटोर्स के स्कोर्स और एआई टेक्निक्स के जरिए हमें मिले हैं हमारे स्पेशल कैटेगरी विनर्स और टॉप 5 विनर्स। एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन आप जानते हैं यहाँ जो बाहर हमारे इनोवेटर्स बैठे हैं, जो फाउंडर्स बैठे हैं, दे आर ऑल्सो स्वेटिंग, उनको बहुत नर्वस हैं बाहर की किसका नाम लिया जाएगा। तो एक बार सर देखते हैं झलक बाहर हो क्या रहा है। तन्वी, आर यू देयर?
2: यस राजीव, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि यहाँ का जो तापमान है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। हमने हमारे होल्डिंग एरिया में दो वर्ड्स बैन कर दिए हैं, नर्वसनेस और एक्साइटमेंट, क्योंकि हम उससे बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। व्हाट वी आर फीलिंग इज इंस्ट्रूमेंटल, इट्स मॉन्यूमेंटल, बिकॉज वी नो

0: वी आर री राइटिंग हिस्ट्री, वी नो कि हम इतिहास क्रिएट कर रहे हैं, यस राइट?
1: किसी को वहाँ पर आइडिया है कि कौन आज इस मंच पर आने वाला है?
0: यहाँ पर कोई आइडिया नहीं है कौन आने वाला है, लेकिन यहाँ पर हर इंसान एक को बोल रहा है कि तुम भी जीत जाओगे, कोई नहीं, मेरी जीत तुम्हारी जीत में है, सो इट्स मोर लाइक अ फैमिली देन एनीथिंग एल्स।
1: मेरी तरफ से उन सबको बोल दीजिएगा कि वो सब जी चुके हैं। All of you, all the best.
0: राजीव, हमें एक चीज करनी है।
1: हाँ।
0: हमें ये कहना है, अगर आपकी आइडिया में है दम तो भारत कहेगा
1: वंदे। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं स्पेशल कैटेगरी अवार्ड से। किसी ने अपनी तकलीफ को सोल्यूशन बनाया, किसी ने अपने गांव की जरूरत को अपना मिशन, कोई टेक्नोलॉजी से बदलाव लेकर आया, तो किसी ने सिर्फ अपने हौसले से वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। और इन्हीं इंस्पायरिंग जर्नीज को सलाम करने के लिए आज हम कुछ स्पेशल कैटेगरी अवार्ड्स भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे विनर्स को मिलेगी वंदे भारतम की ट्रॉफी और 11 लाख का प्राइज मनी। नाम अनाउंस करने से पहले गौतम जी, मैं आपको यहाँ पर बुलाना चाहूंगा सर। ओके, तो हमारी जो पहली कैटेगरी है रूरल चेंज मेकर अवार्ड, उनके लिए जिन्होंने भारत के उन हिस्सों में बदलाव की रोशनी पहुंचाई जहां अक्सर सॉल्यूशंस सबसे आखिर में पहुंचते हैं। एंड द अवार्ड गोज टू फ्रंटियर मार्केट मिस अजायता शाह।
2: अजायता शाह ये है फ्रंटियर मार्केट्स की फाउंडर और सीईओ। विदेश में रहती थी पर जब भी भारत आती इन्हें लगता अपने देश के लिए कुछ करना है। इस तरह इन्होंने शुरू किया फ्रंटियर मार्केट्स कंसल्टिंग।
3: भारत जो है वो देश की आवाज है और कहीं ना कहीं महिला जो है सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कमाई जल्दी से करना चाहते हैं, तभी वो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना। हम लोग ने एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, सब चीज़ें प्लेटफॉर्म पे लेके आ चुके हैं।

0: थैंक यू।
1: एक ही चीज बोल सकती हूँ कि दिस वॉज फॉर द सहेलीज। अब ये लग रहा है कि अब पर निकल के आ रहे हैं तो अब हवा में उड़ेंगे और तेजी से जाएंगे।
2: हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है दिव्यांग इनोवेटर अवार्ड। ये उनके लिए जिन्होंने साबित किया कि आपकी सबसे बड़ी चुनौती भी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इस कैटेगरी में सिर्फ एक नहीं, दो लोगों को अवार्ड के लिए चुना गया है। तो पहला अवार्ड है इस कैटेगरी में, वो जाता है फ्रीडम व्हील्स के जिग्नेश शाह एंड मनीष शाह।
3: फ्रीडम व्हील्स इसके फाउंडर है जिग्नेश शाह। इन्होंने देखा कि दिव्यांग जनों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में होती है बड़ी समस्या, तो किया एक इनोवेशन
4: जो दिव्यांग जन को व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ही इंडिपेंडेंटली मोबिलिटी देता है, जो टोटली इलेक्ट्रिकल है। हर दिव्यांग की जरूरत के हिसाब से हम ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ताकि उनकी लाइफ ईजी हो जाए।
5: पर्पस मेरा ये है कि ऐसी सुविधा होनी चाहिए, मेरी 10 साल की जो मेहनत है उसको एक एक मुकाम पे ले जाने के लिए आया हूँ।
6: आई कैन गो आउट ऑफ द वे, मैंने कहू चुकी हूँ, तुमने हेल्प करीस, मेंटर करीस,

0: हमें हमारे हौसलों को, हमें हमारी मेहनत को सराहा है और हम आगे लोगों दिव्यांग तक पहुंच के ये हमारा जो मिशन है उसको कंप्लीट करेंगे।
1: हमारे इसी कैटेगरी के जो अगले विनर हैं उनका नाम है खेत की इनोवेशंस के रघु दत्त देगाला एंड धनराज कलूरी।
2: इनसे मिलिए, ये है रघु दत्त, काइटे की इनोवेशंस के फाउंडर। इन्होंने एक ऐसा इनोवेशन तैयार किया है जो दिव्यांगों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए रेस्ट रूम्स को बना रहा है ज्यादा एक्सेसिबल, सुरक्षित और सम्मानजनक। वंदे भारतम में मेंटोर्स के सामने अपनी पिच रखने के बाद इनके इनोवेशन के लिए खुले मेंटोरशिप, सपोर्टिंग स्टेक होल्डर्स और मार्केट कनेक्शन के द्वार।
3: I am talking about 200 families that are impacted with lesser caregivers. One product, one individual is a solution in the market. I get it. But our solution is beyond market.

0: super happy, super excited. First time, first entry, and we could do something, you know, for our own entire community.
1: We are very glad and happy for this opportunity, and glad that we won this.
2: Our next category is for Sustainable Innovation Award. उन इनोवेटर्स के लिए है जो आज की जरूरत पूरी करते हुए कल की दुनिया का भी ख्याल रख रहे हैं. एंड द अवार्ड गोज टू सस्टेनेबल इनोवेशन एक्स लीप मिस
3: रानू खड़े
2: एंड हितेश नरुला.
4: रानू खड़े ये है एक्स लीप केयर की फाउंडर. इन्होंने देखा कि सैनिटरी पैड्स को डिस्पोज होने में कई साल लगते हैं, तो इन्होंने बनाया प्लांट बेस्ड मटेरियल लेयर से बना सैनिटरी पैड.
5: अपना देश इंडिया इज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिफरेंट मटेरियल्स. हमने क्या किया, हमने डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल फाइबर्स को लिया, हमने 5 लेयर्स एब्सोल्युटली प्लांट बेस्ड मटेरियल से बना दिया. दैट मेक्स फ्लोटम डिफरेंट. समथिंग विच इज नेचुरली मेड गोज बैक टू द मदर अर्थ एंड डज नॉट क्रिएट एनी प्लास्टिक पोल्यूशन.
4: वंदे भारतम में इनके इनोवेशन को मिला मेंटर्स का साथ.
6: आई वुड लाइक टू पुट 3 CR.
4: 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ एस्ट्रोटॉक ऐप पर फ्री प्रमोशन का मौका भी.

0: I've been to other platforms before. The only question which keeps coming is like, how big you are. It was very different here. The question was, how big can you dream? It was a very different experience, tha, beautiful experience. And last but not the least, I would say ke dream big, bold.
1: Yeah.
0: Nothing can stop us.
2: Our last special category is Women Entrepreneur Award. This is for women innovators who have not only built business, but have also made new routes for themselves and others. And the award goes to... Humble Bee ki Miss Monica Shukla.
3: IIT mein padhai, New York mein naukri aur phir ek din sab chhodna jo koi soch nahi sakta par inhone kiya. Miliye Monica Shukla ji se. Ye hai Humble Bee ki founder.
4: Humble Bee ek honey company nahi hai. Hum ek end to end full stack beekeeping model hai. हम महिलाओं को साइंटिफिक बी कीपिंग ट्रेनिंग देकर के सशक्त करते हैं खोने के लिए कुछ खास है नहीं बस एक मिशन है मेरा सपना है कि जब इंडिया डेवलप्ड नेशन के पाथ पर चले तो इन लाखों महिला बी कीपर्स का नाम शामिल हो
3: वंदे भारतम के मंच से इन्होंने रखा भारत की बी कीपिंग इंडस्ट्री को बदलने का अपना विजन और इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए मिले वंदे विंग्स और 5 करोड़ रुपए की फंडिंग का ऑफर भी

0: बट यहाँ आना बहुत इम्पॉर्टेंट था और अभी तक हम लोग ग्रास रूट लेवल पे ब्लाइंडर्स लगा के काम कर रहे थे, किसी को समझ नहीं आता था कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर हमारा काम करोड़ों लोगों तक पहुँचे तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
1: सर, बहुत से लोग पूछना चाहेंगे कि आप शॉपिंग करते हैं?
2: मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ।
1: अगर पूछूं कि आपने लास्ट शॉपिंग क्या की थी?
2: मैं मेरे पैंट्स भी और यानी काफ़ी चीज़ें मैं ऑनलाइन ही लेता हूँ। तो होता क्या है कि मैं वहाँ शॉप में जाता हूँ तो काफ़ी लोग मेरे को पकड़ते हैं, इससे मैं ऑनलाइन ही तुम्हें पकड़ता
1: हूँ। ऑलराइट, बारी आ गई है फर्स्ट पोजीशन की। कौन आज वंदे भारतम के फाइनलिस्ट इनोवेटर्स में नंबर वन पोजीशन पर होंगे? So, winner of Vande Bharatam

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
2: देश का टायर जेके टायर।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
2: Siri AI can find what you need and get more done than ever.
3: And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
4: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
5: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
6: A generation with questions.
7: The starry and the whole glamorous side of it.
8: As I said, like, I can't empathize with it.
6: Unconventional.
9: I feel blessed. As long as the work is going on, I'm happy.
6: Unapologetic. Unafraid of change. Ready to challenge.
10: Aspirational.
6: The ideas. The issues.
11: You really are.
6: The young view.
12: Public perception.
6: NDTV Yuva. 28 September 2026. Only on the NDTV network.
13: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
14: Dr. Roma, manual winding. चार लोगों के पास है
15: कुछ इससे भी अनोखा
14: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला
6: A generation.
16: सर आप ना रोज रोज नहीं मिलेंगे मुझे आपसे इंटरेक्ट करने का मौका भी नहीं मिलेगा बट आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ बेसिक चीजें आपसे पूछना चाहता बस कुछ पूछना चाहता हूँ सर क्योंकि मैं ही नहीं बहुत से लोग पूछना चाहेंगे कि आप शॉपिंग करते हैं
17: मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ
16: आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आप वो हमारी तरह से अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जाके शॉपिंग करते हैं
17: काफी तरह
16: ये आप ही के ब्रांड्स हैं आप शॉपिंग करते हैं और अगर मैं पूछूं कि आपने लास्ट शॉपिंग क्या की थी
17: मैं मेरे पैंट्स भी और काफ़ी चीज़ें मैं ऑनलाइन ही लेता हूँ होता क्या है कि मैं वहाँ शॉप में जाता हूँ तो काफ़ी लोग मेरे को पकड़ते हैं इससे मैं ऑनलाइन ही तुम्हें पकड़ते
16: अच्छा आप इतना बिजी रहते हैं कभी ऐसा हुआ है ऑफकोर्स आप चेयरमैन हैं पूरे ग्रुप के घर की चेयरमैन ऑफकोर्स प्रीति मैम है पर कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी मीटिंग में उन्होंने फोन किया हो कि गौतम कहाँ पे हो तुम यार खाने पे लेट हो रहा है आ जाओ घर पे और आपने वो मीटिंग छोड़ के गए हो आप यार टाइम हो रहा है मुझे घर पे जाना है
17: ऐसा बना नहीं है अभी तक
16: ऐसा नहीं हुआ मैम कभी कभी नहीं हुआ ऐसा तो चलिए समय आ गया है हमारे टॉप 5 विनर अनाउंस करने का लेकिन उससे पहले देखते हैं बाहर हमारे इनोवेटर्स के साथ क्या चल रहा है वन फाइनल टाइम ओवर टू यू तन्वी
18: देखिए वो घड़ी आ गई है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर माहौल नर्वसनेस है एक्साइटमेंट है
16: देख रहा हूँ पीछे में सबके सब सेंटर उसमें एवरीवन अब टाइम आ गया है टॉप 5 इनोवेटर्स के नाम को यहाँ पर लेने का एक्साइटेड गाइस
19: यस
16: किसको लगता है कि किसका नाम लिया जाएगा हाथ खड़े कीजिए ऑलराइट लेट्स सी मालूम पड़ जाएगा अभी अगले कुछ सेकंड्स में ओके तो हमारे जो 5 फाइनलिस्ट हैं उसमें जो 5th पोजीशन पर हैं उनका नाम है स्पेस फील्ड के पूर्व मसूफ
20: स्पेस फील्ड्स इसके फाउंडर हैं अपूर्वा मसूक जब इन्होंने देखा कि रॉकेट्स और मिसाइल्स में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल 10 से 15 साल में एक्सपायर हो जाता है तो इरादा किया उसे नई लाइफ देने का वंदे भारतम के मंच से जब इन्होंने मेंटोर्स के आगे अपना इनोवेशन रखा तो सब हुए इम्प्रेस्ड और इन्होंने पाया ऑफलाइन असिस्टेंस वंदे विंग्स और अदानी डिफेंस कोलैबोरेशन

0: में मिलेंगे 15 लाख रुपए का कैश प्राइज। अपूर्व जी, अभी गौतम अदानी जी के सामने आपके पास कुल मिलाकर सिर्फ 45 सेकंड है इन्हें इम्प्रेस करने के लिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल काफी खुशी हो रही है सर मिलके। अब हमने 2020 में स्पेस फील्ड्स की शुरुआत की, जब स्पेस प्राइवेटाइजेशन अनाउंस हुआ। ऑल क्रेडिट टू यू सर, दिस इज द फर्स्ट टाइम सच अ यूनिक प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन द कंट्री। आपका जहाँ तक विजन रहता है नेशन बिल्डिंग के लिए, एंड हमें जैसे लीडर से भी सुनने को मिला 50 ईयर्स आगे कैसे देखना है, वो थॉट प्रोसेस आई थिंक मैं यहाँ से वापस लेके जाऊँगा सर।
0: मैनी कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। काफ़ी खुशी लग रहा है। आई थिंक संबलपुर से शांतिग्राम का ये जर्नी सक्सेसफुल रहा, एंड इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। जैसे कि इस प्लेटफॉर्म ने ना सिर्फ ग्रासरूट इनोवेशंस को मंच दिया है, बट ऑल्सो लॉट ऑफ डीप टेक एंटरप्रेन्योर्स को भी रिकॉग्नाइज किया है एंड अवार्ड किया है। तो आई थिंक दिस रिप्रेजेंट्स द इंडिया स्टोरी कि वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स इन आर ओन माइट।
0: फोर्थ पोजीशन पर जो है उनका नाम है जेन रोबोटिक्स के विमल गोविंद, अरुण जॉर्ज एंड अभिलाष।
2: इनसे मिलिए, ये हैं जेन रोबोटिक्स के फाउंडर्स। जहां मैनहोल की सफाई इंसानों की जान के लिए खतरा बन गई थी, वहीं इन्होंने बनाया एक ऐसा रोबोट जो इंसान की जगह मैनहोल में उतरकर सफाई करता है।
3: Bandicoot robot is actually the first product in the world to invent and do the complete aspect of a man inside a manhole. So it's replaced manhole to robohole.
4: In simple words, if you ask what is Gen Robotics story, it is very simple: using robotics and AI to empower people from sewer to space.
2: Vande Bharatam ke stage par inhone paya Vande Wings, mentorship, VCs se connections aur Adani Group ke saath collaboration.
0: कंग्रेचुलेशन, आपको मिलती है वंदे भारत की ट्रॉफी और 20 लाख रुपीज इन कैश। यू हैव 45 सेकंड्स टू इंप्रेस गौतम अदानी जी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
4: द रीजन व्हाई वी केम हियर टू रियली टू शोकेस द प्रॉब्लम दैट वी आर सॉल्विंग, लाइक द मैनुअल स्कैनिंग, एवरी 5 डेज 1 पर्सन इज डाइंग। सो एनी सपोर्ट टू

0: is exploding with innovations, and figuring out and correctly tracking it, a national platform is required, and it perfectly aligned with it. And I believe this empower the next generation of Indian innovations.
1: Third position par jo hai, unka naam hai Ambiator ke Tiger and Jiten Desai.
2: टाइगर एस्टर एम्बिएटर इकोसिस्टम के फाउंडर. इन्होंने जब देखा कि एसी घरों को तो ठंडा कर रहा है लेकिन बढ़ा रहा है प्लैनेट पर गर्मी भी, तो ये चल पड़े उसका हल निकालने.
3: इस प्रोडक्ट का आइडिया आया था कोविड के टाइम पे. हमने डिसाइड किया कि एक ऐसा प्रोडक्ट लाना चाहिए जो 100% फ्रेश एयर लेके आता है, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. तो हमने एम्बिएटर निकाला है एज अ ब्रिज बिटवीन एयर कूलिंग एंड एयर कंडीशनिंग.
2: वंदे भारतम के स्टेज पर इन्होंने पाया रियल एस्टेट व एयरपोर्ट्स में स्केल अप करने का रास्ता.
1: आपको मिलती है ट्रॉफी और साथ में 25 लाख का कैश प्राइज.
4: थैंक यू सर. आई थिंक दिस इज डूइंग अ लॉट फॉर द इकोसिस्टम इन इंडिया. इंडिया इज वेरी पैशनेट एंड वी वांट टू डू वेरी बिग थिंग्स. And your support and the energy that you've given us, the positive energy, I think it'll take us to big heights. Thank you so much for the opportunity.
3: Thank you.
1: Well done.
3: Thank you. The gears on this are the ones that are turning for India. And that means that next year's 100,000 from the grassroots is absolutely mandatory. Let's find them, bring them, and show them how amazing this is.
1: Second position par jo hain, unka naam hai Homeo Innovations ke innovators Deepak Reddy and Amresh Jana.
2: Jis zameen par pattharon ki wajah se kheti nahi ho pati thi, आज उसी समस्या का सलूशन बनाने वाले इस किसान पुत्र को मिलिए दीपक रेड्डी कोंगरी और अमरेश जाना से, फाउंडर्स ऑफ होम्या इनोवेटर्स.
5: मैं ये नोटिस किया कि थोड़ा सा मेरा एग्रीकल्चर लैंड बैरन पड़ा हुआ है. पत्थर के वजह से हम एग्रीकल्चर का काम इस पे नहीं कर सकते. तो उसी के साथ मैंने एक छोटा सा प्रोटोटाइप ने बिल्ड कर दिया.
6: मैं जो भारत का लाखों किसानों का आवाज बन के आया हूँ, जो हर साल फसल उगने से पहले पत्थरों से लड़ते.
2: वंदे भारतम के मंच से इन्होंने किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का अपना इनोवेशन मेंटर्स के सामने रखा और पाए 2 करोड़ रुपए 10% की इक्विटी पर.
1: कंग्रेचुलेशन, आपको मिलती है वंदे भारत की ट्रॉफी और 30 लाख प्राइज मनी. गाइस, इज़न दिस मोमेंट बिगर देन द इन्वेस्टमेंट दैट यू गॉट? दिस इज अ बिग मोमेंट फॉर यू गाइस. एंड आपके पास में 45 सेकंड्स टू थैंक गौतम अदानी जी.
5: सर, मैं तेलंगाना से एक छोटा सा गांव से हूँ सर. जो मेरा फादर जो है फार्मर है, तो हमारा छोटा सा एक जमीन है, उसमें से कई सब बैरन पड़ा हुआ है, वो भी जनरेशन से. मैं थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करने लगा तो मेरे को ये पता चला इस लैंड में बहुत सारा पत्थर है. तो पत्थर रहने वजह से हम खेती ही नहीं कर पा रहे. तो बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, मेरे को ये मौका लगा कि मैं इस जमीन को दोबारा खेती का लायक बनाना.
1: ओके, मैं आपकी जगह बोलता हूँ. मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ये बोलता कि सर, मैंने ना अपनी पढ़ाई छोड़ के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग छोड़ के, मैं अपनी मिट्टी पर वापस आया. मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने पिता जो मेरे किसान हैं उनकी खेत से पत्थर निकालूंगा. और सिर्फ पिता के खेत से नहीं, मैं बाकियों के खेत से भी किसान पत्थर निकालूंगा. वेल डन, आप सबको छोड़कर वापस आए. दैट इज वॉट यू नीड टू टेल हिम. मैनी कंग्रेचुलेशन.
5: थैंक यू सर. या हम जो अवार्ड या जो भी आज हमको मिला, तो इससे हम फील करते कि हमारा रिस्पांसिबिलिटी बढ़ गया. तो हम इसी रिस्पांसिबिलिटी के साथ आगे नेशन बिल्डिंग के काम पे हमारा फुल 100% देने के तैयार है. हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पे हमारा रोल जरूर फुलफिल करेंगे.
1: अभी इनकी प्रॉब्लम नहीं है सर, आपके सामने आके शब्द नहीं निकलते हैं, क्या करें. ऑलराइट, बारी आ गई है फर्स्ट पोजीशन की. कौन आज वंदे भारतम के फाइनलिस्ट इनोवेटर्स में नंबर 1 पोजीशन पर होंगे?

0: So put your hands together for the winner of Vande Bharatam. उनका नाम है माइकॉप के फाउंडर शशांक शेखर, अंकिता सिन्हा एंड ऋषभ माथुर।
1: माइकॉप इसके फाउंडर्स हैं अंकिता, शशांक और ऋषभ, और ये तीन IITians देश में इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं थ्रू 3D कंक्रीट प्रिंटिंग।
2: हमारा विजन है कि हम डिजिटली ऑटोमेटेड प्रोसेसेस के द्वारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का चेहरा बदल सकें।
1: वंदे भारतम के मंच से इन्होंने जब अपना इनोवेशन दिखाया, सभी मेंटर्स को खूब पसंद आया।
3: अमेजिंग कॉन्सेप्ट एंड ट्रस्ट मी फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस, एनीबॉडी हु कैन सॉल्व कंस्ट्रक्शन, दे वुड बी रियल एंजल्स फॉर एनी होम बायर।
4: 110 डील डन।
2: थैंक यू सो मच, ओह माय गॉड।
1: और इन्होंने पाया 30 करोड़ रुपए का निवेश और सपोर्ट फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट।
2: हमारा जो फर्स्ट प्लांट था वो यहाँ से, अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, शांतिग्राम के जस्ट पीछे है, तो वो डिस्टेंस कवर करना, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाले तो 600 मीटर की दूरी होगी, बट फॉर अस वो डिस्टेंस कवर करना बहुत बड़ी बात थी। वो दूरी हम इस तरीके से पूरी कर पाएंगे और यहाँ पे खड़े होकर कुछ लेके जाएंगे इतना बड़ा कंपनी के लिए, I think when I applied, I had not expected it. शायद सपने ऐसे सच होते हैं।
0: बिल्कुल ऐसे सच होते हैं और इस मंच पर तो बहुत ही खूबसूरती सच होते हैं। अगर आइडिया में है दम तो कहो
4: वंदे
0: भारतम। आपको मिलती है वंदे भारतम की ट्रॉफी और 50 लाख प्राइज मनी। ये तो आपको मिल गए अदानी ग्रुप से, ओके? आपको वंदे भारतम प्लेटफॉर्म से। मेरी तरफ से आपको मिलते हैं 1 मिनट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
2: भारत का जो हम सब सपना देख रहे हैं उसमें माइकॉप की तरफ से हम 3 कोर पिलर्स में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। पहला है डिफेंस, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे पहले आती है। दूसरा है घर, क्योंकि वो एक बेसिक नीड है एंड वी बिलीव कि हाउसिंग फॉर ऑल का सपना सब सच में साकार होना चाहिए। और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वो हमें बताता है कि हम एक देश के तौर पर कितनी तरक्की कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी से हमने बना दी है, अब वक्त है कि उस टेक्नोलॉजी को स्केल तक ले जाया जाए। इसके लिए हमें चाहिए आपकी पार्टनरशिप, आपका सपोर्ट, थोड़े ज़्यादा पैसे और बहुत सारी मदद।
0: ये आपके आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं?
2: सब बोलते हैं ना कि शूट फॉर द मून, एटलीस्ट यू विल एंड अप विद द स्टार्स। आई थिंक मून, स्टार, यूनिवर्स, सब आज रिसीव्ड एवरीथिंग। सो
0: मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, डू वेल। आई थिंक
2: थैंक यू सो मच।
5: अगेन बिलीव नहीं हो रहा है अभी भी। टॉप 5 तक का तो सोचा था मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट फर्स्ट पे एकदम मतलब दुनिया ही बदल गई।
0: कैन वी हैव ऑल द विनर्स? प्रीति मैम, कैसा लगा आपको ये थॉट? एक्चुअली ये बड़ा दिल का शो था, मतलब हमने सबने बड़े दिल से किया एंड आप सबकी आंखों में देख सकती हैं, सो ग्रेटफुल। तो एक कुछ आप इनसे कहना चाहती हैं तो हम सुनना चाहें, मैं सुनना पर्सनली सुनना चाहूँगा।
6: ये बहुत इमोशनल है और जिस तरह से ऐसा हुनर हमारे कंट्री में है वो देख के बहुत आनंद होता है एंड आई ऑल्सो फील सो प्राउड कि विकसित भारत की तरफ ये लोग, ये बच्चे जो आज देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं और उनकी जो innovations are towards the Viksit Bharat. It's wonderful to see this.
0: And it's wonderful to have you here and encourage them. Thank you so much. This is not the celebration of the grand finale. This celebration is a new start. Vande Bharatam.

0: एक ख्वाब के साथ शुरू हुआ था ये सफर, और इस सफर से जुड़ते गए आइडियाज, इनोवेटर्स और उनके सपने। 24 जून गौतम अदानी जी के जन्मदिन पर शुरू हुआ वंदे भारतम, एक ऐसे विजन के साथ जो भारत की मिट्टी से निकले आइडियाज को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने का विश्वास रखता है। देश के कोने कोने से आए इनोवेटर्स, हर किसी की अपनी कहानी थी।
1: मैं यहाँ आज भारत का लाखों किसानों का आवाज बन के आया हूँ।
0: अपना संघर्ष था।
2: मेरी 10 साल की जो मेहनत है उसको एक मुकाम पे ले जाने के लिए आया हूँ।
0: और कुछ कर दिखाने का अपना जुनून
3: है। मेरे में था कि नहीं यार, ऐसे कुछ रिस्क लेना है, कुछ तो करना है, तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस।
0: इस मंच पर एक के बाद एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइडिया सामने आए, कई इनोवेटर्स को मिले वंदे विंग्स।

तो कई को मिला नेटवर्किंग सपोर्ट, कई को मिले हॉस्पिटल कनेक्ट, इंजीनियरिंग सपोर्ट और ब्रांड कनेक्ट, तो कईयों को मिली डायरेक्ट मेंटरशिप, किसी को मिला स्टेक होल्डर्स से सीधा कनेक्ट, तो किसी को मिली अडानी के धारावी और अदानी डिफेंस जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में सीधी एंट्री, और कई इनोवेटर्स को मिला बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे कि माइकॉप को 110 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर मिले 30 करोड़ रुपए, हेयर ओरिजिनल्स को 100 करोड़ के मैक्स कैप पर 2 करोड़ रुपए, भौमे इनोवेशंस को 10% इक्विटी पर 2 करोड़ रुपए, एक्स स्लीप केयर को 45 करोड़ की वैल्यूएशन पर 3 करोड़ रुपए, प्राइमरी हेल्थ टेक को 100 करोड़ की वैल्यूएशन पर 1 करोड़ रुपए, वी जीनोमिक्स को 50 लाख रुपए, हम्बल बी को 5 करोड़ रुपए, चिल्हो को 1 करोड़ रुपए, टॉर्चिट को भी दिव्यांग बच्चों के लिए 50 लाख रुपए के डिवाइसेस खरीदने का मिला कमिटमेंट, तो स्कॉन्टो को मिला अदानी यूनिवर्सिटी से कनेक्ट और 20 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर 1.5 करोड़ रुपए का ऑफर, और इस पूरे सफर में वंदे भारतम पर कुल 50 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स ने इन आइडियाज और इनोवेटर्स के विश्वास को एक नई ताकत दी।

0: Good evening, hello and welcome. You're watching NDTV. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines first. The Delhi University Student Union election results have been declared after the completion of 20 rounds of vote counting. ABVP won 3 of the 4 central posts, President, Secretary and Joint Secretary. ABVP wins 3 posts. Independent Dipanshu Shocking creates history by securing the post of the Vice President in DUSU elections. And Bengal by polls see fresh twists as Mamata Banerjee, Reji Nagar candidate Rabiul Alam takes a U-turn. After announcing his withdrawal, Rabiul now says he will contest the by-poll. Mamata's Nandigram candidate withdrew nomination and Congress Milan Pradhan was arrested. It's a big NDTV impact in Bengaluru after NDTV reported on crumbling infrastructure on Bengaluru's Varthur Gunjur Road. Commissioner orders urgent road repairs to ensure the safety of school children and the public. From Mirabai Chanu to Preeti, India's Commonwealth Games stars head to Aichi Nagoya Asian Games with podium ambitions. And two residents of Saudi capital saw black smoke and flames emanating from an area near Riyadh's International Airport on Saturday, while other people in the city reported hearing explosions. And let's now talk about the Delhi University Student Union results. The results are out with celebrations on campus following a closely watched election. ABVP, the Akhil Bharatiya Vidya Parishad, the student wing of the BJP, won 3 central panel posts, while independent candidate Dipanshu Shocking secured the vice president post. Dipanshu Shocking victory gives an independent candidate the vice president post in this year's DUSU central panel. His independent campaign ends with a win in one of the election's key positions. He credited the younger generation of voters, saying Gen Z students are more aware and cannot be easily misled. Shocking said that his focus after the victory would be on doing what he described as honest work for the students. In a Gen Z coordinate post, he tweeted on his ex and said, "It's done, bro."
1: मैं बस यही कहना चाहूँगा, ये जीत समरसता की है, ये जीत देशभक्ति की है, ये जीत संघ शक्ति की है.
2: When we spoke in the morning, you were talking about the varied issues that you would be working upon. Now, what is the plan ahead, roadmap ahead?
1: जो मैंने आपको बताया था वही सेम है. ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद हम कुछ अलग हो जाएंगे. जो हमने काम कहा था, चाहे वो सेफ्टी ऑडिट को हो, चाहे नए हॉस्टल्स का हो, किसी भी तरीके का हो, विद्यार्थी परिषद पहले ही दिन से अपने काम पर जुट जाएगी.
2: Like to add in terms of, you know, how the contest went. There was a lot of neck to neck at one point with the NSUI candidate as well. And at this point, NSUI is alleging that it's been rigged by the ABVP.
1: ये सब students का आपने देखा, जो प्यार विद्यार्थी परिषद को मिला और कुछ अन्य candidates को भी मिला, लेकिन NSUI को 4-0 से clean sweep कर दिया है Delhi University के students ने.
3: मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. एबीवीपी से पहली कैंडिडेट हूँ मैं, अपने कॉलेज से पहली कैंडिडेट हूँ मैं, अपने एरिया से पहली कैंडिडेट हूँ, पहली लड़की हूँ, तो मुझे उस बात पे बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत थैंकफुल फील हो रहा है.
2: टेल अस योर एज, व्हाट इज योर एज, हाउ यंग यू आर?
3: 21 इयर्स.
2: 21 इयर्स रिया, व्हाट इज द प्लान अहेड? यू आर इनटू स्टूडेंट पॉलिटिक्स नाउ?
3: अभी तो हमें अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की चीज़ें देखनी है, जो जो हमें स्टूडेंट्स ने हमसे एक्सपेक्ट किया है वो चीज़ें पूरी करनी है, और अपने मैनिफेस्टो का पूरा करना है सबसे.
2: जैसे कि क्या, किन मुद्दों पर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे?
3: सबसे पहले गर्ल सेफ्टी ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद पीजी सेफ्टी, पीजी ऑडिट्स एंड कैंपस सेफ्टी, और बाकी जो जो चीज़ें हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखी है वो हम पूरी पूरी करने की कोशिश करेंगे.
2: क्या कहना चाहेंगी आप टू अदर स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग अस राइट नाउ, व्यूअर्स हु वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स?
3: कभी हार नहीं हारो, क्योंकि मैं अपने कॉलेज इलेक्शंस में प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हारी थी, और उसके अगले साल आज मैं सेक्रेटरी की पोस्ट पे जीती हूँ डूसू में. सो कभी अपने आप को डीमोटिवेट मत करना, यू कैन डू दैट.
4: विनोद, इस रिजल्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत भी की, लड़ाई भी लड़ी, लेकिन नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया?
5: देखिए, लड़ाई जो है कैसे लड़ी गई ये महत्वपूर्ण है. मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि डूसू इलेक्शन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता तक जो है एक स्टार कैंपेनर के तौर पे काम किया है और पूरे देश के अंदर विद्यार्थियों ने जो है NSY को बहुत मजबूती से जो है वोट दिया है। मैं सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने NSY के पैनल को वोट किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि NSY जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करी है वो उनके लिए लगातार पूरे साल काम करेगी और उनको उन वादों को मनवाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ेगी।
4: आप विनोद ये बोल रहे हैं कि हमने लड़ाई लड़ी, आपने जीतने की कोशिश भी की, आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए। सवाल तो इस बात पे भी खड़ा होता है ना कि फिर राहुल गांधी क्यों नहीं प्रचार करने जाते हैं? जब प्रधानमंत्री प्रचार करने जाते हैं, दूसरे इलेक्शन में भी वो जाते हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि राहुल गांधी एक और छात्रों की गूंज कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जेंजी हमारे साथ हैं, अब जो रिजल्ट आए हैं उसमें तो जेंजी ने अपना वोट दे दिया, स्पष्ट कर दिया।
5: देखिए ये मैंडेट जेंजी का नहीं है, आप देखिए ना कि सारे बिल्कुल बेशक चुनाव जीते हैं, उनका जीत का आंकड़ा देखिए, जीत का नंबर नॉट अ गेम, लड़ाई नंबर की नहीं है, हमें विपक्ष में कितना वोट पड़ा है वो महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी जी की रही प्रचार की बात, तो ये छात्रों का इलेक्शन है, छात्रों का इलेक्शन, छात्र लड़े, देश के प्रधानमंत्री जो है कैंपेन में आ रहे हैं, तो छात्रों का इलेक्शन तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है ना। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को यही डर सता रहा था कि कैसे भी करके जो है चुनाव जीतना है।
0: And as we just told you that the DUSU results, the Delhi University Student Union election results are out, with celebrations on campus following a closely watched election. ABVP won 3 central panel post. Independent candidate Deepanshu Shokin secured the vice president position, and his victory gives an independent candidate the vice president post in the DUSU central panel. That's rare, that doesn't happen very often. Shokin's independent campaign ends with a win in one of DUSU's key positions. It's important because independent candidates winning such positions is not very often in Delhi University's politics. He credited the younger generation of voters, saying Gen Z students are more aware and cannot be easily misled. He said his focus after the victory would be on doing what he described as honest work for students. In a Gen Z coordinate post, he tweeted on X and said he has finally done what he wanted to.
2: पांशु, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जीत पर? आपको NSUI की तरफ से आप खड़े होने वाले थे, पर फिर आपने विड्रॉ कर लिया अपना कैंडिडेचर, क्या हुआ एग्जैक्टली और अब आप अपनी जीत को कैसे देखते हो?
6: ये जीत छात्र शक्ति की हुई है, स्टूडेंट्स की हुई है, जो भरोसा स्टूडेंट्स ने मुझ पर दिखाया उनकी एक आप देख सकते हैं, इतने बड़े मार्जिन से जीत होना साफ दर्शाता है कि स्टूडेंट्स की पहली पसंद, जेन जी की पहली पसंद दीपांशु शौकीन को उन्होंने माना कि मैं उनके बीच से निकल कर उनकी आवाज़ को मैं उठा रहा हूँ, और स्टूडेंट्स ने जो भरोसा जताया है मैं उस पर खरा उतरूंगा।
2: क्या आप इससे CJP के बाद का एक aftermath इफेक्ट भी देखते हैं कि किस तरीके से वोटिंग पैटर्न्स चेंज हुए हैं DUSU में?
6: स्टूडेंट्स ने प्रूव किया है कि जब जब उनके साथ गलत हुआ है तो वो आवाज़ उठाते हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, और वही उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में करके दिखाया है।
0: Well, the Delhi University Student Union verdict gives BJP leaders fresh ammunition against the Congress party. Well, NSUI drew a blank. Kiran Rijiju said that the jhoot ki goonj has been demolished as Rahul Gandhi's Chhatron ki goonj campaign came under attack. ABVP, as we told you, has won 3 of the 4 key DUSU posts, retaining control of the central panel. Congress picked NSUI, the National Students Union of India, meanwhile, has failed to win any of the 4 central posts. Reacting to the verdict, Union Minister Kiran Rijiju and JP Nadda have mocked Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj campaign, saying that it's nothing but lies. The result comes amid Rahul Gandhi's special campaign targeting students. Also, Shokin's independent victory adds another dimension to the ABVP-NSUI contest. The DUSU politics has been a bipolar contest, mostly between these two student outfits, backed by the BJP and Congress respectively. The election also comes days after the Satya Niketan hostel collapse, you'd remember, amid NSUI allegations of poll rigging, administrative favoritism towards the ABVP. So the politics around students, their issues, has only been heating up in the last few days.
7: Delhi University mein ABVP का इतना प्रचंड जीत ये दिखाता है कि कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी ये छात्रों का गूंज के नाम से जो घूमता है वो वैसे तो ये झूठ का गूंज है, क्योंकि युवाओं ने बोल दिया है। अब इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में इतना भारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत दिलाना, मैं एवीबीपी के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं।
8: आज दूसू के परिणाम आए हैं, एबीवीपी ने 4 में से 3 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है। आपको बता दें कि दिल्ली में एबीवीपी की जो शुरुआत थी, जो बीज बोया था, वो जेपी नड्डा जी ने बोया था। हमारे साथ हैं नड्डा जी, आज की जीत पर आप क्या कहेंगे?
9: सबसे पहले तो बीज तो विद्यार्थी परिषद का मेरे से पहले बहुत बो दिया गया था, लेकिन हाँ, राष्ट्रवादी ताकतें आगे बढ़ी हैं और उसमें मुझे भी लंबे समय तक काम करने का मौका मिला है, दिल्ली में भी काम करने का एबीवीपी में मौका मिला है, लगभग 4.5 साल काम किया है। आज मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने शानदार जीत दर्ज कराई है, ये राष्ट्रवादी ताकतों
8: पर एक तरफ छात्रों की गूंज राहुल गांधी कर रहे हैं और एक यहाँ पर परिणाम है,
9: वहाँ की गूंज तो सुनाई ही नहीं, लेकिन ये धमाका सबने सुना।
10: मैंने अभी सुना है कि एनएसयूआई के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ काउंटिंग में और सेंटर्स में भी बहुत धांधली हुई है, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन छोटे मार्जिन जो हैं बाकी 2-3 सीट पे, उसमें इसका बड़ा असर हो सकता है। दूसरा, कैंपेनिंग में भी बहुत दिक्कत हुई, हमारे लोगों को हर जगह जाने नहीं दिया गया, रोका गया, तो उस कारण से हो सकता है कि जो छोटे छोटे मार्जिन की जो 2-3 सीटों पर हम लोग हारे हैं, ये जीत में भी तब्दील हो सकते थे।
0: And shifting our focus now, in less than 24 hours, the entire bipole equation in Nandigram has changed drastically. The seat that was vacated by Chief Minister Suvendu Adhikari himself is set for a bipole next month. First, in a shocking move, Mamta's Nandigram candidate, school teacher Sanchita Day, withdrew her candidature from Nandigram just hours before the withdrawal deadline. This came as a surprise, and this also came after a surprise meeting with the Chief Minister Suvendu himself. An infuriated Mamata Banerjee in retaliation declared support for the Congress party in Nandigram. She said she was already in talks with Rahul Gandhi and had mulled over the support. However, just hours after her backing the Congress, Nandigram candidate Milan Pradhan was arrested by police in an old murder case. Rahul Gandhi called this a political vendetta and claimed that BJP doesn't want to contest a fair election. Meanwhile, Ritabrata Banerjee called this Mamata Banerjee's failed attempt to reach a deal with the Congress party in the bipoles. He called the withdrawal nothing but a fixed fight.
11: We are not going to surrender our head. We are not going to, we will never bow down our head to this biased political persons of the party who are doing this nuisance. We'll fight it out, we'll fight the battle, and we'll bounce back.
12: সেটা আমি নিশ্চয়ই বলবো, আগে আজকে এটা হয়ে যাক, তারপর থানায় বলবো যে আপনি যারা আমাদের কর্মী তাদের উপর যেন কোন রকম কষ্ট না হয়, সেগুলো তো নিশ্চয়ই বলবো, নিশ্চয়ই বলবো।
13: তাহলে প্রচার কখন থেকে নামছে?
12: আমরা যেটা করবো এখানে আমাদের লোকাল নেতৃত্ব, সেটা ঠিক করি,
14: দলের কোন নেতৃত্ব উচ্চতর
12: সেটা কোনো ইয়ে হয়নি, কল্যাণ
14: কথা হচ্ছে,
12: কল্যাণের সঙ্গে কথা হচ্ছে, মহামৈত্র আসবে, আরো কুণালদা ফুণালদা সবাই আসবে, যারা আছে
13: দিদি আসবে,
15: आज आपका जो पार्टी है, आप दूसरे पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, आपका पार्टी को देखिए, टीएमसी पार्टी का जो तोड़ कर गया है एनसीपी में, हम लोग तो नहीं बोले थे, आज टीएमसीपी में जो टीएमसी वाले ज्वाइन किए हैं सब वरिष्ठ नेता है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को बोलने का हिम्मत नहीं था, हमारा और बोलने का कुछ विषय है ही नहीं है, पार्टी टीएमसी बोल के ही कुछ है नहीं, हम लोग तो कंफ्यूज है, नागरिक भी कंफ्यूज है कि टीएमसी है कहाँ, वो जो जोड़ा फूल बोलता था वो गया कहाँ, सब टुकड़े टुकड़े हो गया, गैंग टुकड़े टुकड़े गैंग, हम सुनते थे जो बोलते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और ममता बनर्जी उसको सपोर्ट करते थे, आज ममता बनर्जी आपका पार्टी का भी टुकड़े टुकड़े हो गया है, ईश्वर है ईश्वर है।
16: मैं उम्मीद करूंगी कि राहुल जी के नेतृत्व में टीएमसी के साथ कांग्रेस जुड़े। अगर ये होता है तो ये एक बड़ा मैसेज जाएगा कि ये जो गठबंधन है ये असल मायने में गठबंधन है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं हो रहा है।
17: 7 दिन से मालूम पड़ा आप कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को रजीना नंदीग्राम छोड़ेंगे, खुद रजीनगर लड़ेंगे। जब कांग्रेस इनकार कर दिया इतना आग बबूला हो गए, बोले पार्लियामेंट में भी उसके साथ बैठेंगे भी नहीं। अचानक आज उनका कैंडिडेचर विथड्रॉ कर लिया। तो हम लोग बोल रहे ये भी बीजेपी के साथ सेटिंग है, कोई फिलर भेजने के लिए गए, भेजे थे फिलर देने के लिए।
18: हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवेंद्र अधिकारी जी के नेतृत्व में जो आज गुंडागर्दी करने वाला के गुंडा दमन बिल भी लाया है, कोई यहाँ पे किसी का कोई यहाँ बंगाल में कोई करप्शन करेगा, कोई गुंडागर्दी करेगा, किसी का कोई दुष्कर्म करने वाला कोई रहेगा तो किसी को रियायत नहीं किया जाएगा।
19: Yes, I feel it is better. This is the better approach to be united all the anti-BJP forces in the country. If it happen, that I have no doubt about it, that the BJP government will go. So it depends on the Delhi how they will move all these things and other political parties too, what they want to do all these things. But the faction of the different small parties in the states, if they are thinking they are to move according to their own way, or they will, if, and they will play the ball in the hand of the BJP, that is something different. I don't know what they would do, but I feel personally the unity of the NDA group is the essential today to fight out the BJP forces in India.
0: And the TMC split has triggered a direct fight over the party's name and symbol and organizational control, with the Election Commission freezing the original identity for the upcoming by-polls. Mamata Banerjee has challenged the Election Commission order at the Apex Court after poll panel froze the original TMC name of flowers and grass symbol for the upcoming by-polls. BJP says that the Election Commission acted within its rules while dealing with the rival claims over the TMC name and symbol. Rahul Gandhi has pointed to the TMC dispute alongside earlier Shiv Sena and NCP splits. Rahul Gandhi has described the TMC episode as part of what he calls a wider pattern of vote theft, government theft and party theft. We have Union Minister Kiran Rijuju, who has hit back at Rahul Gandhi while pointing to the origins

0: So both NCP and TMC as nothing but breakaways from the Congress party.
1: দেখুন এগুলো নিয়ে কিছু হবে না, ইলেকশন কমিশনের সিদ্ধান্ত ইলেকশন কমিশন তার নিয়ম মেনে সব পক্ষের কথা শুনে করেছে। উনি ওনার দলকে একদিন রাখতে পারেননি, দলের মধ্যে কি দুভাগ তিনভাগ চারভাগ হয়েছে তার দায় দায়িত্ব ওনার, এটা আমাদের কোনো সরাসরি বিজেপির রোল নেই। তবে আমি বলি একটা কথা বলি, আমি নির্বাচনের দিন গণনার দিন রাত্রে হলদিয়াতে মিডনাইটে বলেছিলাম, আর যেই থাকুক এরা থাকবেন। তার কারণটা হচ্ছে অতি দর্পে হত লঙ্কা অতি মানে চক।
2: कई दिनों से कांग्रेस टॉप लीडरशिप के साथ हमारा लीडर ममता बनर्जी को बातचीत कम्युनिकेशन हो रहे थे, लेकिन ये जो अभी तो ये जो डिसीशन है वो पॉलिटिकल डिसीशन है। ये सामने पूरा देश में एंटी भाजपा जो यूनिटी का बात हम लोग कर रहे हैं, सेकुलर फोर्स का, डेमोक्रेटिक फोर्स का, प्रोग्रेसिव फोर्स का, तो इसीलिए नंदीग्राम कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए हमारा पार्टी डिसीजन लिए हुए है। आज ममता दीदी ने ये अनाउंस कर दिया।
3: In yet another attempt to defame the Election Commission of India and attack the Bharatiya Janata Party, Rahul Gandhi ends up exposing the sordid history of the Indian National Congress. Is it not true that in the year 1980, the then Congress government, misusing Article 356, dismissed 9 state governments? Why is it that Rahul Gandhi insists on attacking the Election Commission, which is hailed the world over as the harbinger of not only democracy, but also a commission that has used modern technology to ensure that every vote counts?
4: कांग्रेस पार्टी हमेशा मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर में डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहता है
5: जी।
4: चुनाव आयोग को जल्दी से जल्दी जो सिद्धांत लेना था वो नहीं लिया, और उसका कारण जो आज ये डेमोक्रेसी में क्राइसिस क्रिएट हुआ है, आज कोई सिंबल में कोई जीत जाता है उसका बाद उन्होंने दूसरी पार्टी में जाके काम करता है, ये एक ऐसा एनार्की इनसाइड द डेमोक्रेसी व्हिच इज वेरी डेट्रीमेंटल इन आवर्स सोसाइटी इन आवर कंट्री।
6: ममता बनर्जी का तृणमूल तो कोई खेला लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं किया, करोड़ों लोगों को धोखा दिया था मेसी को लाकर, एक झलक मेसी को देख नहीं पाए, खेला हो बे खून को लेकर खेला किया। तो फुटबॉल का प्रतीक मत लगाइए ममता बनर्जी, खून का प्रतीक लगाइए। 15 साल तो खून किया है अपना सरकार, आपका सरकार खून हुआ है, उसका विचार नहीं किया है, खून किया है सत्ता के लिए, तो फुटबॉल मत लगाइए। फुटबॉल तो स्वामी विवेकानंद बोले थे कि भगवान के पास अगर जल्दी पहुंचना है तो खेलो, फुटबॉल मत लगाइए, आपका शोभा नहीं देता है, खून का प्रतीक लगाइए।
7: देखिए ऐसा करते करते चुनाव पार हो जाएगा, ना कैंडिडेट दे पाएंगे ना लड़ पाएंगे, अब किसी का भी अधिकार है कोर्ट में जाने का, वो जाके देखे।
0: And shifting our focus now to the city of Bengaluru, our report on city's pothole mess has prompted action from the Karnataka government. Following the coverage, authorities have ordered repairs in potholes, culverts and identified black spots, while also planning alternate routes to ease traffic. The government has also directed officials to put safety measures in place, such as road repair work begins. The action comes after NDTV highlighted the dangerous state of Bengaluru's roads and questioned why key stretches remain in such poor condition.
8: इतनी परेशानी होती है कि कहीं कभी भी जाने के लिए 1.5 घंटे कम से कम लगता है, 1.5 से 2 घंटे। अभी मैं फ्लाइट मेरी छूट गई थी एक दिन, मैं इधर से जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, और ना तो इसका मेंटेनेंस हो रहा है, कुछ भी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं लोग, बहुत परेशानी है।
9: बट अभी देखिए सर, आप यहाँ पर पैच वर्क शुरू,
8: ये पैच वर्क से क्या होगा मैडम, हाँ ये तो आपने करा तब जाके हुआ है, लेकिन यहाँ हम लोग बहुत बहुत परेशान हैं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: drive in the Kia Sorento.
1: Kia, movement that inspires.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: across three key posts and what the NSCY's four-seat blank means for the Congress Party. And what does it mean for their student and the youth outreach program? The result has triggered a political war of words beyond the campus. BJP leaders have used the outcome to question the impact of Rahul Gandhi's recent Chhatron Ki Goonj outreach. Congress, however, has pushed back against the BJP's reading of the verdict, saying that the DUSU results don't give the national picture. The Delhi University Student Union election verdict offers a more complicated picture than a straightforward ABVP versus NSUI contest. Now, the result can be read as a reminder that Gen Z is not necessarily a single political bloc, and that student concerns or angers, their concerns towards institution do not automatically translate into an anti-BJP vote. At the same time, NSUI's failure to win any central panel seat provides a clear electoral reality check for the Congress Party, particularly as their key leader Rahul Gandhi is doing an outreach with the Chhatron Ki Goonj event. You also have an independent candidate who won the VP post, the vice president post. Shocking. His independent victory adds another dimension. His win shows that at least one major DUSU contest was not a simple two-way ABVP-NSUI battle like it always is. You had an independent candidate emerging from the outside, the two principal student organizations, to secure the vice president position.
1: मैं बस यही कहना चाहूँगा, ये जीत समरसता की है, ये जीत देशभक्ति की है, ये जीत संघ शक्ति की है.
2: When we spoke in the morning, you were talking about the varied issues that you would be working upon. Now, what is the plan ahead, roadmap ahead?
1: जो मैंने आपको बताया था वही सेम है. ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद हम कुछ अलग हो जाएंगे. जो हमने काम कहा था, चाहे वो सेफ्टी ऑडिट का हो, चाहे नए हॉस्टल्स का हो, किसी भी तरीके का हो, विद्यार्थी परिषद पहले ही दिन से अपने काम पर जुट जाएगी.
2: Like to add in terms of, you know, how the contest went. There was a lot of neck to neck at one point with the NSUI candidate as well. And at this point, NSUI is alleging that it's been rigged by the ABVP.
1: ये सब स्टूडेंट्स का आपने देखा, जो प्यार विद्यार्थी परिषद को मिला और कुछ अन्य कैंडिडेट्स को भी मिला, लेकिन एनएसयूआई को 4-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने.
3: विनोद, इस रिजल्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत भी की, लड़ाई भी लड़ी, लेकिन नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया?
4: देखिए, लड़ाई जो है कैसे लड़ी गई, ये महत्वपूर्ण है. मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि डूसू इलेक्शन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता तक जो है एक स्टार कैंपेनर के तौर पे काम किया है, और पूरे देश के अंदर विद्यार्थियों ने जो है एनएसयूआई को बहुत मजबूती से जो है वोट दिया है. मैं सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने एनएसयूआई के पैनल को वोट किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि एनएसयूआई जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करी है वो उनके लिए लगातार पूरे साल काम करेगी, और उनको उन वादों को मनवाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ेगी.
3: आप विनोद ये बोल रहे हैं कि हमने लड़ाई लड़ी, आपने जीतने की कोशिश भी की, आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए. सवाल तो इस बात पे भी खड़ा होता है ना कि फिर राहुल गांधी क्यों नहीं प्रचार करने जाते हैं? जब प्रधानमंत्री प्रचार करने जाते हैं, डूसू इलेक्शन में भी वो जाते हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि राहुल गांधी एक और छात्रों की गूंज कर रहे हैं. आप लोग कह रहे हैं कि जेन ज़ी हमारे साथ हैं, अब जो रिजल्ट आए हैं उसमें तो जेन ज़ी ने अपना वोट दे दिया, स्पष्ट कर दिया.
4: देखिए, ये मैंडेट जेन ज़ी का नहीं है. आप देखिए ना कि सारे बिल्कुल बेशक चुनाव जीते हैं, उनका जीत का आंकड़ा देखिए, जीत का नंबर नॉट अ गेम, लड़ाई नंबर की नहीं है. हमें विपक्ष में कितना वोट पड़ा है वो महत्वपूर्ण है. और राहुल गांधी जी की रही प्रचार की बात, तो ये छात्रों का इलेक्शन है, छात्रों का इलेक्शन, छात्र लड़े, देश के प्रधानमंत्री जो है कैंपेन में आ रहे हैं, तो छात्रों का इलेक्शन तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है ना. तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को यही डर सता रहा था कि कैसे भी करके जो है चुनाव जीतना है.
2: पांचों, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जीत पर? आपको एनएसयूआई की तरफ से आप खड़े होने वाले थे, पर फिर आपने विड्रॉ कर लिया अपना कैंडिडेचर. क्या हुआ एग्जैक्टली, और अब आप अपनी जीत को कैसे देखते हो?
5: ये जीत छात्र शक्ति की हुई है, स्टूडेंट्स की हुई है. जो भरोसा स्टूडेंट्स ने मुझ पर दिखाया, उनकी एक आप देख सकते हैं इतने बड़े मार्जिन से जीत होना साफ दर्शाता है कि स्टूडेंट्स की पहली पसंद, जेन ज़ी की पहली पसंद दीपांशु शौकीन को उन्होंने माना कि मैं उनके बीच से निकलकर उनकी आवाज़ को मैं उठा रहा हूं, और स्टूडेंट्स ने जो भरोसा जताया है मैं उस पर खरा उतरूंगा.
2: क्या आप इससे सीजेपी के बाद का एक आफ्टरमाथ इफेक्ट भी देखते हैं कि किस तरीके से वोटिंग पैटर्न्स चेंज हुए हैं डूसू में?
5: स्टूडेंट्स ने प्रूव किया है कि जब जब उनके साथ गलत हुआ है तो वो आवाज़ उठाते हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: Ops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: ना कुछ एक नई चीज सीखूंगी। और ट्रेनिंग तो सब सेम करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा करता है वही आगे निकलता है। तो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आज और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है। लाइफ में भी और बॉक्सिंग में भी गिव अप नहीं करना। अगर हम हार मान जाएंगे तो ना तो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और ना ही बॉक्सिंग, क्या किसी भी गेम में नहीं आगे बढ़ सकते।
1: मेरा नाम मीनाक्षी हुड्डा है और मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। मैं बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर

0: मेरा नाम सिमू है और मैं 23 इयर्स की हूँ और मैं असम से बिलोंग करती हूँ, बट मैं दिल्ली के थ्रू खेलती हूँ। इधर आ, इधर आ। हेलो, कहाँ से है तू?
1: हेलो सबको,
0: हैप्पी बर्थडे।
1: हैप्पी बर्थडे रिहाना,
0: हैप्पी बर्थडे।
2: हाथ मिला, थैंक यू।
0: चॉकलेट दे,
1: चॉकलेट दो।
3: चॉकलेट,
1: चॉकलेट कहाँ है तुम्हारा?
2: हेलो सुनीता,
0: पूरा रियलिटी खोल देती है ये। मैं हाथ से नहीं खाऊँ, हाथ से खाऊंगी। इस वीडियो में हमारा पोहा आएगा अभी।
4: देखो बत्तख पानी में तैर रही है, इनको कितना मजा आ रहा है।
5: हेलो हेलो,
4: मैंने 2013 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी इसी स्टेडियम से, और मैं यहाँ पे तब से ही ट्रेनिंग कर रही हूँ। रोहतक से लिवरपूल का सफ़र काफ़ी टफ रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जो मेरे बेसिक कोच हैं विजय हुडा, उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे को मोटिवेट भी किया। स्टार्टिंग में तो मतलब ये तो है नहीं कि प्लेयर हर बार जीतता ही है, हारता भी है, तो हारने के बाद जो साथ देता है वो एक कोच ही या फिर फैमिली वाले ही होते हैं। बाहर वाले तो बस बातें बना देते हैं कि हार गई है, लेकिन एक कोच को ही पता होता है कि उसने कितनी ट्रेनिंग की है खिलाड़ी ने और कितना मतलब स्ट्रगल किया है उसने। अब सबको मेरी मतलब कि जीत का तो पता है कि मैं लिवरपूल में मैंने मेडल जीता, लेकिन उसके पीछे का किसी को नहीं पता कि मैंने कितनी मेहनत की, कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग की और मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना किया। तो बहुत टफ था।

एक छोटे से गांव, रुड़की गांव से हूँ। तो गांव में तो लड़कियों का यही रहता है कि उसकी जल्दी से शादी कर दें या फिर घर का काम सिखा दें, ऐसा ही। लेकिन जैसे जैसे हमारे मेडल आने स्टार्ट हुए बॉक्सिंग में या फिर किसी भी गेम में, तो काफ़ी सपोर्ट करता है हमारा पूरा गांव ही सपोर्ट करता है।

0: अगर हम स्ट्रगल सोच के हम रह जाएंगे ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. अगर हम बोलते कि यार मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे दिखता नहीं है, मैं लड़की हूँ, मुझे क्या करूँगे. लोग काफ़ी पेरेंट्स ये सोचता है कि मेरी बेटी ब्लाइंड है, उसको मैं हॉस्टल नहीं, उनको मैं हॉस्टल नहीं भेजूँगी, क्या वो क्या कर लेगी जाके भी, उसको वैसे भी शादी करके भेजना है. लेकिन ये जो सोच है ना, ये सोच कभी एक पेरेंट्स को नहीं रखना चाहिए.
1: जल्दी दो,
0: बच्चों को दे दो. नहीं नहीं, मेरा मैं जब 5 साल की थी तब से मैंने खाना बनाना भी शुरू किया है. मैं सब कुछ बना लेती हूँ.
1: मेरे पापा ऑटो ड्राइवर हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं और हम 4 बहन भाई हैं. और एक मतलब कि प्लेयर को निकालना, प्लेयर की डाइट भी और वैसे भी इक्विपमेंट के भी बहुत सारे पैसे लगते हैं उन सारी चीज़ों में. तो स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई उनको. मैंने फर्स्ट नेशनल 2016 में खेली थी और मेरा उसमें गोल्ड मेडल आया था. फिर उसके बाद और ज़्यादा मतलब कि घर वालों का भी थोड़ा और ज़्यादा साथ मिला. बॉक्सिंग में जैसे 10 वेट कैटेगरी है, गर्ल्स में, बॉयज़ में. मैं 48 में खेलती हूँ, फर्स्ट वेट में खेलती हूँ.

जब मैं पैदा नहीं हुई थी 2001 में, तभी जब मैं मम्मी की गोख में थी, तभी 7 मंथ के, तब भी पापा छोड़ के चला गया, क्योंकि उसको लगा है कि मेरा भैया भी जो है वो भी डेफेंडा में ब्लाइंड है, ना सुन पाता है, तो उसके लिए उसको लगा कि मेरा दूसरा बच्चा भी ऐसा होगा, तो ये सोच के वो चला गया। तो उसके बाद मैं पैदा होने के बाद जब मैं 1 साल की थी, तब वो लेने आया था, पर मम्मी ने दिया नहीं, क्योंकि जब मुश्किल के वक्त में वो साथ नहीं दिया। तो अभी मैंने 1 साल उसको बड़ा कर दिया है, और अभी तो मैं अगर 1 साल में कर सकती हूँ, तो मैं लगभग और भी साल में कर पाऊँगी बोल के, ये सोच के मम्मी ने बोला मैं अपना बच्चे को नहीं दूँगी बोल के बोल दिया। तभी मम्मी ने काम करना शुरू किया, दूसरे के घर में खाना बनाना, ऐसे ही हम लोग को बड़ा किया, मतलब इतना एजुकेशन भी हेल्प किया है, हर चीज़ में हम लोग को हेल्प किया है।

बचपन से तो इसने खेल स्टार्ट कर दिया था, छठी सातवीं क्लास तक। और बच्चे जाते थे पड़ोस से, भाई मैं भी खेलने जाऊँगी। स्टेडियम बना था यहाँ गाँव में, तो सभी बच्चे खेलने जाते हैं। बोला मम्मी मैं भी जाऊँगी, मैं भाई जाओ। फिर इसने देखा कि मैं तो बॉक्सिंग खेलूँगी, मुझे पसंद है खेलना, कैसे बॉक्सिंग खेलते हैं वो तो भाई बच्चे देखे दे ऐसे खेलते हैं। तो भाई जब मैंने पता चले कि पापा तो पहले तो कुछ नहीं कहते, बाद में मना करने लग गए थे कि भाई ऐसे बच्चे को नहीं खिलाते, और बोल देते कहीं चोट लग जाएगी आँख नाक में। फिर ये बोली नहीं मैंने तो यही गेम करना है तो करना।

0: that this is a problem if I wouldn't solve now. It could be impacting many lives across the country.
1: ये इंडियन ड्रेस है, प्लेइंग ड्रेस, ड्रीम होता है, हर किसी को नहीं मिलता ये पहनने के लिए, लेकिन मुझे मिला है पहनने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर कोई लड़ता है इसको पहनने के लिए, और हर किसी का किस्मत नहीं होता है, लेकिन मेरे किस्मत ने मेरा साथ दिया। मुझे लगता है मेरा जर्सी नंबर वन है। ठीक है सर, बाय बाय बाय बाय सबको, थैंक यू। यहाँ से लेफ्ट, भैया बस नंबर 78 रहने से बता देना, 75 और 78। हाँ मोती नगर। कभी कभी ऐसा होता है कि अनसुना कर देते हैं लोग, लेकिन मैं सोचती हूँ तब मुझे फीलिंग्स आती है, काश मुझे दिखता तो किसी से पूछना नहीं पड़ता। असम से दिल्ली आना मेरा एजुकेशन की पर्पस से आना हुआ है 2019 में। क्रिकेट खेलना 2022 में मैंने शुरू किया। व्हेन आई स्टार्टेड टू प्ले लाइक नो वन वर सपोर्टिंग मी, एवरीवन वाज टेलिंग बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ ब्लाइंड, हाउ विल यू एबल टू प्ले, बट दैट आई शोन इनटू एक्शन।

0: if our Indian youth or Gen Z, so-called, what we say, our Indian strength is our youth, first point, because we are in number, we are the biggest youth population of the world. If you see a decade back, China was having on the position one for youth population. But China have made the youth not as a liability, but as an asset with a right skills at right point. If our Indian youth adapt right skills at right point, this is the right time. I believe humko US banne se nahi, humko India banne se koi nahi rok sakta.
1: अभी तक भी लोग जानते नहीं है ब्लाइंड क्रिकेट क्या हुआ है. वर्ल्ड कप जीतने के बाद थोड़ा सा फेमस हुआ है कि हाँ, मतलब वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट भी होता है, लड़कियाँ भी खेलते हैं, ऐसा अभी तक लोगों को पता चला है. इतना उससे पहले किसी को पता नहीं होता था कि ब्लाइंड क्रिकेट भी है. हाँ, बॉयज़ के लिए है, लेकिन गर्ल्स के लिए तो नहीं है कुछ भी. लेकिन ये वर्ल्ड कप ने हर चीज़ पता कर दिया लोगों को, क्या है नहीं है.
2: मतलब सोचती थी मैं कि लेकिन मेरे को ये नहीं था कि मैं शायद जीत पाऊँगी. मेरे को ये था कि पता नहीं कब मैं भी जीतूँगी. तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था जब मैं लिवरपूल में जीती. बहुत मतलब इमोशनल हो गई थी मैं काफ़ी. कुछ समझ नहीं आ रहा था रिंग पे कि मैं मतलब कि मेरा हाथ उठा तो मेरे को मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी कि क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं. कुछ सेकंड के लिए तो फिर थोड़ा नॉर्मल हुई फिर.

मेरे को और ज़्यादा ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, और इस वेट में भी रहने के लिए मेरे को और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार गोल्ड आना तो आसान है लेकिन उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल रहता है।

0: I'm winning the World Cup.
1: अब हम स्टेडियम पहुंच चुके हैं और आज की ट्रेनिंग करेंगे अब थोड़ी देर में स्टार्ट।
0: दो ही चीज़ है, फोकस करना है और अपना मन में एक इशारा रखना है कि चलो अभी इसने बॉल छोड़ दिया तो मतलब अभी आने वाला है। सो ये दो ही चीज़ हम लोग को आगे बढ़ाते हैं। You can see the ball again. You can hear the sound also. This ball is the main thing through which we play. First, we need to focus on the sound. When the bowler says that ready bat, that means I'm ready. Like, so when the bowler says play, at the time play means the ball is relieved. Ball जब छोड़ देते हैं ना तो हम लोग को एटलीस्ट हम गिनती करते हैं, एक गिनती करते हैं और आवाज़ में आवाज़ मतलब बॉल की आवाज़ हम सुनते हैं, फोकस करते हैं।
2: विकसित भारत विच अवर मोदी जी इज प्लानिंग 2047 इज समथिंग विच विल टेक अवर इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल।
0: व्हेन आई जॉइन फर्स्ट टाइम मुझे थोड़ा प्रेशर लगा था कि यार मैं कैसे खेलूंगी, हाउ विल आई प्ले यार, सो टफ। व्हेन आई सो दैट girls are playing, then I just feel myself that why I can't play, I also can play. If they are able to play, then I also.
1: हार जीत तो चलती रहती है और एक अगर मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन जीत जरूर मिलेगी।

0: It's a big NDTV impact in Bengaluru after NDTV reported on crumbling infrastructure on Bengaluru's Varthur-Gunjur Road. Commissioner has now ordered for urgent road repairs to ensure the safety of school children and public. From Mirabai Chanu to Preeti, India's Commonwealth Games stars head to Japan for Asian Games with the podium ambitions. Two residents of the Saudi capital saw black smoke and flames from an area near the Riyadh International Airport, while other people in the city reportedly heard explosions. We're starting this edition with the breaking news that's just coming in, and this is a reaction that's coming from the former Union Education Minister Dharmendra Pradhan, who has now hit out at Rahul Gandhi after Delhi University Students Union elections result were declared. Now Dharmendra Pradhan has slammed Rahul Gandhi, saying it is system versus students narrative that has been set, and that students need not need solutions, they need not need theatre. Dharmendra Pradhan has flagged higher education access as well, and he has said that politics for students, not over students, should be the motto. And remember, this reaction of Dharmendra Pradhan has come after AVVP, student wing of the BJP, had swept the Delhi University Students Union election. And these are not university elections that we're talking about. These are, of course, going to have implications that are going to expand nationally as far as the political forum and further elections are concerned. Moving on to some other stories that we are tracking, and this is regarding the Delhi University Students Union election, where, like I just said, AVVP has swept the Delhi University Students Union election. It was the NSUI who had a zero in the election results, and an independent candidate, Dipanshu Shaukeen, had won the place of a vice president. And all of this, remember, has having national implications. So what does the Delhi University Students Union elections result mean politically? It means that it is going to have a political implication as far as the elections are concerned. And there is a political war of words, of course, which has erupted. But before we get to that, let's first hear to what the president, the vice president, and the NSUI candidate had to say on the Delhi University student election results today.
1: मैं बस यही कहना चाहूँगा, ये जीत समरसता की है, ये जीत देशभक्ति की है, ये जीत संघ शक्ति की है.
2: When we spoke in the morning, you were talking about the varied issues that you would be working upon. Now, what is the plan ahead, roadmap ahead?
1: जो मैंने आपको बताया था वही सेम है. ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद हम कुछ अलग हो जाएंगे. जो हमने काम कहा था, चाहे वो सेफ्टी ऑडिट को हो, चाहे नए हॉस्टल्स का हो, किसी भी तरीके का हो, विद्यार्थी परिषद पहले ही दिन से अपने काम पर जुट जाएगी.
2: Like to add in terms of, you know, how the contest went. There was a lot of neck to neck at one point with the NSUI candidate as well. And at this point, NSUI is alleging that it's been rigged by the ABVP.
1: ये सब स्टूडेंट्स का आपने देखा, जो प्यार विद्यार्थी परिषद को मिला और कुछ अन्य कैंडिडेट्स को भी मिला, लेकिन NSUI को 4-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने.
3: मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. ABVP से पहली कैंडिडेट हूँ मैं, अपने कॉलेज से पहली कैंडिडेट हूँ मैं, अपने एरिया से पहली कैंडिडेट हूँ, पहली लड़की हूँ, तो मुझे उस बात पे बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत थैंकफुल फील हो रहा है.
2: Tell us your age. What is your age? How young you are?
3: 21 years.
2: 21 years, Riya. What is the plan ahead? You're into student politics now.
3: अभी तो हमें अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की चीज़ें देखनी है. जो जो हमें स्टूडेंट्स ने हमसे एक्सपेक्ट किया है वो चीज़ें पूरी करनी है. अपने मैनिफेस्टो को पूरा करना है सबसे.
2: जैसे कि क्या, किन मुद्दों पर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे?
3: सबसे पहले गर्ल सेफ्टी ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद PG सेफ्टीज, PG ऑडिट्स एंड कैंपस सेफ्टी, और बाकी जो जो चीज़ें हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखी है वो हम पूरी पूरी करने की कोशिश करेंगे.
2: क्या कहना चाहेंगी आप टू अदर स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग अस राइट नाउ, व्यूअर्स हु वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स?
3: कभी हार नहीं हारो, क्योंकि मैं अपने कॉलेज इलेक्शंस में प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हारी थी और उसके अगले साल आज मैं सेक्रेटरी की पोस्ट पे जीती हूँ डूसू में. सो कभी अपने आप को डीमोटिवेट मत करना, यू कैन डू दैट.
4: विनोद, इस रिजल्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत भी की, लड़ाई भी लड़ी, लेकिन नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया?
5: देखिए, लड़ाई जो है कैसे लड़ी गई ये महत्वपूर्ण है. मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि डूसू इलेक्शन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता तक जो है एक स्टार कैंपेनर के तौर पे काम किया है और पूरे देश के अंदर विद्यार्थियों ने जो है एनएसयूआई को बहुत मजबूती से जो है वोट दिया है। मैं सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने एनएसयूआई के पैनल को वोट किया है मैं उनको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि एनएसयूआई जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करी है वो उनके लिए लगातार पूरे साल काम करेगी और उनको उन वादों को मनवाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ेगी।
4: आप विनोद ये बोल रहे हैं कि हमने लड़ाई लड़ी, आपने जीतने की कोशिश भी की, आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए। सवाल तो इस बात पे भी खड़ा होता है ना कि फिर राहुल गांधी क्यों नहीं प्रचार करने जाते हैं? जब प्रधानमंत्री प्रचार करने जाते हैं डूसू इलेक्शन में भी वो जाते हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि राहुल गांधी एक और छात्रों की गूंज कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जेंजी हमारे साथ हैं, अब जो रिजल्ट आए हैं उसमें तो जेंजी ने अपना वोट दे दिया, स्पष्ट कर दिया।
5: देखिए ये मैंडेट जेंजी का नहीं है, आप देखिए ना कि सारे बिल्कुल बेशक चुनाव जीते हैं उनका जीत का आंकड़ा देखिए, जीत का नंबर नॉट अ गेम, लड़ाई नंबर की नहीं है, हमें विपक्ष में कितना वोट पड़ा है वो महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी जी की रही प्रचार की बात, तो ये छात्रों का इलेक्शन है, छात्रों का इलेक्शन, छात्र लड़े, देश के प्रधानमंत्री जो है कैंपेन में आ रहे हैं तो छात्रों का इलेक्शन तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है ना। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को यही डर सता रहा था कि कैसे भी करके जो है चुनाव जीतना है।
0: And with the Delhi University Students Union elections result that are now out, celebrations were there on the campus following a closely watched election. The AVVP won 3 central panel posts while independent candidate Dipanshu Shaukeen secured the vice presidential post. Dipanshu Shaukeen's victory gives an independent candidate the vice president post in year's DUSU central panel, and Shaukeen's independent campaign ends with a win in one of Delhi University Student Union's key positions. Shaukeen, remember, has credited the younger generation of the voters, saying Gen Z students are more aware and cannot be easily misled. Shaukeen has also said that his focus after the victory would be on doing what he described as honest work for students in a Gen Z coordinate post. He tweeted on X and said, "It's done, bro."
2: पांचो अब क्या करना चाहेंगे अपनी जीत पर? आपको एनएसयूआई की तरफ से आप खड़े होने वाले थे पर फिर आपने विड्रॉ कर लिया अपना कैंडिडेचर, क्या हुआ एग्जैक्टली और अब आप अपनी जीत को कैसे देखते हो?
6: ये जीत छात्र शक्ति की हुई है, स्टूडेंट्स की हुई है, जो भरोसा स्टूडेंट्स ने मुझ पर दिखाया उनकी एक आप देख सकते हैं इतने बड़े मार्जिन से जीत होना साफ दर्शाता है कि स्टूडेंट्स की पहली पसंद, जेन जी की पहली पसंद दीपांशु शौकीन को उन्होंने माना कि मैं उनके बीच से निकल कर उनकी आवाज़ को मैं उठा रहा हूँ और स्टूडेंट्स ने जो भरोसा जताया है मैं उस पर खरा उतरूंगा।
2: क्या आप इससे सीजेपी के बाद का एक आफ्टरमाथ इफेक्ट भी देखते हैं कि किस तरीके से वोटिंग पैटर्न्स चेंज हुए हैं डूसू में?
6: स्टूडेंट्स ने प्रूव किया है कि जब जब उनके साथ गलत हुआ है तो वो आवाज़ उठाते हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं और वही उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में करके दिखाया है।
0: Now the results of the Delhi University Student Union elections have given the BJP leaders fresh ammunition against the Congress party. While the NSUI drew a blank, Kiran Rijiju said that Jhoot Ki Goonj has been demolished completely as Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign came under fire. The ABVP has won 3 of the 4 key DUSU posts, retaining control of the central panel. A Congress-backed NSUI, meanwhile, has failed to win any of the 4 central positions. Reacting to the verdict was also Union Minister Kiran Rijiju and JP Nadda, who mocked Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign, saying Jhoot Ki Goonj has been demolished completely. The result comes amid Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign that is being recently held in Indore in Madhya Pradesh, while Shaukeen's independent victory has another dimension to the AVVP-NSUI contest. The election also comes days after the Satyaniketan hostel collapse and amid NSUI allegations of poll rigging and administrative favoritism towards the AVVP.
7: Delhi University mein AVVP ka itna prachand jeet ye dikhata hai ki Congress aur opposition party ये छात्रों का गूंज के नाम से जो घूमता है वो वैसे तो ये झूठ का गूंज है क्योंकि युवाओं ने बोल दिया है। अब इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में इतना भारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत दिलाना, मैं एवीबीपी के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूँ।
8: आज डूसू के परिणाम आए हैं, एबीवीपी ने 4 में से 3 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है। आपको बता दें कि दिल्ली में एबीवीपी की जो शुरुआत थी, जो बीज बोया था, वो जेपी नड्डा जी ने बोया था। हमारे साथ हैं नड्डा जी, आज की जीत पर आप क्या कहें?

0: सबसे पहले तो बीज तो विद्यार्थी परिषद का मेरे से पहले बहुत बो दिया गया था, लेकिन हाँ राष्ट्रवादी ताकतें आगे बढ़ी हैं और उसमें मुझे भी लंबे समय तक काम करने का मौका मिला है, दिल्ली में भी काम करने का एडीपी में मौका मिला है, लगभग साढ़े चार साल काम किया है। आज मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिस तरीके से उन्होंने शानदार जीत दर्ज कराई है। ये राष्ट्रवादी ताकत
1: एक तरफ छात्रों की गूंज राहुल गांधी कर रहे हैं और एक यहाँ पर परिणाम है,
0: वहां की गूंज तो सुनाई ही नहीं लेकिन ये धमाका सबने सुना।
2: मैंने अभी सुना है कि NSUI के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि वहाँ काउंटिंग में और सेंटर्स में भी बहुत धांधली हुई है, उसको देखना पड़ेगा क्योंकि इन छोटे मार्जिन जो हैं बाकी दो तीन सीट पे उसमें इसका बड़ा असर हो सकता है। दूसरा कैंपेनिंग में भी बहुत दिक्कत हुई, हमारे लोगों को हर जगह जाने नहीं दिया गया, रोका गया, तो उस कारण से हो सकता है कि जो छोटे छोटे मार्जिन की जो दो तीन सीटों पर हम लोग हारे हैं ये जीत में भी तब्दील हो सकते थे।
3: On to other stories that we're tracking from the state of West Bengal, the TMC split has triggered a direct fight over the party's name, symbol and organizational control, with the Election Commission freezing the original identity for the upcoming by-polls. Mamata Banerjee has challenged the Election Commission order in the Supreme Court after the poll panel froze the original TMC name and flowers and grass symbol for the upcoming by-polls. The BJP says that the Election Commission acted within its rule while dealing with the rival claims over the TMC name and symbol. Rahul Gandhi has pointed to the TMC dispute alongside earlier Shiv Sena and NCP split. Rahul has described the TMC episode as a part of a what he calls a wider pattern of vote theft, government theft and the party theft as well. Rijiju meanwhile has hit back at Rahul by pointing to the origins of both NCP and the TMC as breakaways from the Congress party.
4: দেখুন এগুলো নিয়ে কিছু করবেন না, ইলেকশন কমিশনের সিদ্ধান্ত ইলেকশন কমিশন তার নিয়ম মেনে সব পক্ষের কথা শুনে করেছে। উনি উনারা দলকে একদিন রাখতে পারেননি, দলের মধ্যে কি দুভাগ তিনভাগ চার ভাগ হয়েছে তার দায় দায়িত্ব তো ওনার, এটা আমাদের কোনো সরাসরি বিজেপির রোল নেই। তবে আমি বলি একটা কথা বলি, আমি নির্বাচনের দিন গণনার দিন রাত্রে হলদিয়াতে মিড নাইটে বলেছিলাম আর যেই থাকুক এরা থাকবেন, তার কারণটা হচ্ছে অতি দর্পে হতলঙ্কা অতি মানে চ
5: कई दिनों से कांग्रेस टॉप लीडरशिप के साथ हमारा लीडर ममता बनर्जी को बातचीत कम्युनिकेशन हो रहे थे, लेकिन ये जो अभी तो ये जो डिसीशन है वो पॉलिटिकल डिसीशन है। ये सामने पूरा देश में एंटी भाजपा जो यूनिटी का बात हम लोग कर रहे हैं, सेकुलर फोर्स का, डेमोक्रेटिक फोर्स का, प्रोग्रेसिव फोर्स का, तो इसीलिए नंदीग्राम कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए हमारा पार्टी डिसीजन लिए हुए है। आज ममता दीदी ने ये अनाउंस कर दिया।
6: In yet another attempt to defame the Election Commission of India and attack the Bharatiya Janata Party, Rahul Gandhi ends up exposing the sordid history of the Indian National Congress. Is it not true that in the year 1980, the then Congress government, misusing Article 356, dismissed 9 state governments? Why is it that Rahul Gandhi insists on attacking the Election Commission, which is hailed the world over as the harbinger of not only democracy, but also a commission that has used modern technology to ensure that every vote counts?
7: कांग्रेस पार्टी हमेशा मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर में डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहता है
8: जी।
7: चुनाव आयोग को जल्दी से जल्दी जो सिद्धांत लेना था वो नहीं लिया और उसका कारण जो आज ये डेमोक्रेसी में क्राइसिस क्रिएट हुआ है, आज कोई सिंबल में कोई जीत जाता है उसका बाद उन्होंने दूसरी पार्टी में जाके काम करता है, ये एक ऐसा एनार्की इनसाइड द डेमोक्रेसी व्हिच इज वेरी डेट्रीमेंटल इन आवर सोसाइटी इन आवर कंट्री।
9: ममता बनर्जी का तृणमूल तो कोई खेला लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं किया, करोड़ों लोगों को धोखा दिया था मेसी को लाकर, एक झलक मेसी को देख नहीं पाए, खेला हो बे खून को लेकर खेला किया, तो फुटबॉल का प्रतीक मत लगाइए ममता बनर्जी, खून का प्रतीक लगाइए। 15 साल तो खून किया है अपना सरकार, आपका सरकार खून हुआ है, उसका विचार नहीं किया है, खून किया है सत्ता के लिए, तो फुटबॉल मत लगाइए। फुटबॉल तो स्वामी विवेकानंद बोले थे कि भगवान के पास अगर जल्दी पहुंचना है तो खेलो, फुटबॉल खेलो, फुटबॉल मत लगाइए, आपका शोभा नहीं देता।

0: are crossing a heavy ridge line now. We are going to be descending into the valley where the damage has taken place. This is the Bhotekoshi River now. It used to be Trishuli downstream. It's now the Bhotekoshi. This is the first look that we saw by helicopter of the exact spot where the floods broke through. To my left over here, they were all homes. Ashwini, you see the bank of the river over here? They were all homes. None of them exist. They've been completely washed away. There is 100% destruction over here. 100%. There are no homes, no structures at all. As we go back towards Kathmandu, there's a helicopter right there. It's got dead bodies slung underneath it.
1: Hello and welcome. You're watching NDTV. Before we get to the big stories of the day, here's a quick check of the headlines that we're tracking. Delhi University Students Union elections have been declared after the completion of 20 rounds of vote counting. The AVVP won 3 of 4 central posts, president, secretary and the joint secretary as well. AVVP wins 3 posts. Independent Dipanshu Shaukeen creates history by securing the post of the VP in the Delhi University Students elections. Bengal bipolar see a fresh twist as Mamata Banerjee's Rejinagar candidate Raibul Alam takes a U-turn after announcing his withdrawal. Raibul now says that he will contest the bipolar. Mamata's Nandigram candidate withdrew nomination and Congress's Milan Pradhan was arrested. It's a big NDTV impact in Bengaluru after NDTV reported on crumbling infrastructure on Bengaluru's Varthur-Gunjur road. Commissioner has now ordered for urgent road repairs to ensure the safety of school children and public. From Mirabai Chanu to Preeti, India's Commonwealth Games stars head to Japan for Asian Games with the podium ambitions. Two residents of the Saudi capital saw black smoke and flames from an area near the Riyadh International Airport, while other people in the city reportedly heard explosions. We're starting this edition with the breaking news that's just coming in, and this is a reaction that's coming from the former Union Education Minister Dharmendra Pradhan, who has now hit out at Rahul Gandhi after Delhi University Students Union elections result were declared. Now Dharmendra Pradhan has slammed Rahul Gandhi, saying it is system versus students narrative that has been set and that students need not need solutions, they need not need theatre. Dharmendra Pradhan has flagged higher education access as well, and he has said that politics for students, not over students, should be the motto. And remember, this reaction of Dharmendra Pradhan has come after AVVP, student wing of the BJP, had swept the Delhi University Students Union election. And these are not university elections that we're talking about. These are, of course, going to have implications that are going to expand nationally as far as the political forum and further elections are concerned. Moving on to some other stories that we are tracking, and this is regarding the Delhi University Students Union election, where, like I just said, AVVP has swept the Delhi University Students Union election. It was the NSUI who had a zero in the election results, and an independent candidate, Dipanshu Shaukeen, had won the place of a vice president. And all of this, remember, has having national implications. So what does the Delhi University Students Union elections result mean politically? It means that it is going to have a political implication as far as the elections are concerned. And there is a political war of words, of course, which has erupted. But before we get to that, let's first hear to what the president, the vice president and the NSUI candidate had to say on the Delhi University student election results today.
2: मैं बस यही कहना चाहूंगा, ये जीत समरसता की है, ये जीत देशभक्ति की है, ये जीत संघ शक्ति की है.
3: When we spoke in the morning, you were talking about the varied issues that you would be working upon. Now what is the plan ahead, roadmap ahead?
2: जो मैंने आपको बताया था वही सेम है. ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद हम कुछ अलग हो जाएंगे. जो हमने काम कहा था, चाहे वो सेफ्टी ऑडिट को हो, चाहे नए हॉस्टल्स का हो, किसी भी तरीके का हो, विद्यार्थी परिषद पहले ही दिन से अपने काम पर जुट जाएगी.
3: Anything else that you would like to add in terms of, you know, how the contest went. There was a lot of neck to neck at one point with the NSUI candidate as well. And at this point, NSUI is alleging that it's been rigged by the ABVP.
2: ये सब स्टूडेंट्स का आपने देखा जो प्यार विद्यार्थी परिषद को मिला और कुछ अन्य कैंडिडेट्स को भी मिला, लेकिन एनएसयूआई को 4-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने।
4: मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, एबीवीपी से पहली कैंडिडेट हूँ मैं, अपने कॉलेज से पहली कैंडिडेट हूँ मैं, अपने एरिया से पहली कैंडिडेट हूँ, पहली लड़की हूँ, तो मुझे उस बात पे बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत थैंकफुल फील हो रहा है।
3: Tell us your age. What is your age? How young you are?
4: 21 years.
3: 21 years, Riya. What is the plan ahead? You're into student politics now.
4: अभी तो हमें अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की चीज़ें देखनी है, जो जो हमें स्टूडेंट्स ने हमसे एक्सपेक्ट किया है वो चीज़ें पूरी करनी है, अपने मैनिफेस्टो का पूरा करना है सबसे।
3: जैसे कि क्या, किन मुद्दों पर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे?
4: सबसे पहले गर्ल सेफ्टी ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद पीजी सेफ्टी, पीजी ऑडिट्स एंड कैंपस सेफ्टी, और बाकी जो जो चीज़ें हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखी है वो हम पूरी पूरी करने की कोशिश करेंगे।
3: क्या कहना चाहेंगी आप टू अदर स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग अस राइट नाउ, व्यूअर्स हु वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स?
4: कभी हार नहीं हारो, क्योंकि मैं अपने कॉलेज इलेक्शंस में प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हारी थी और उसके अगले साल आज मैं सेक्रेटरी की पोस्ट पे जीती हूँ डूसू में। सो कभी अपने आप को डिमोटिवेट मत करना, यू कैन डू दैट।
5: विनोद, इस रिजल्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत भी की, लड़ाई भी लड़ी, लेकिन नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया?
6: देखिए, लड़ाई जो है कैसे लड़ी गई ये महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि डूसू इलेक्शन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता तक जो है एक स्टार कैंपेनर के तौर पे काम किया है, और पूरे देश के अंदर विद्यार्थियों ने जो है एनएसयूआई को बहुत मजबूती से जो है वोट दिया है। मैं सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने एनएसयूआई के पैनल को वोट किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि एनएसयूआई जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करी है वो उनके लिए लगातार पूरे साल काम करेगी और उनको उन वादों को मनवाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ेगी।
5: आप विनोद ये बोल रहे हैं कि हमने लड़ाई लड़ी, आपने जीतने की कोशिश भी की, आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए। सवाल तो इस बात पे भी खड़ा होता है ना कि फिर राहुल गांधी क्यों नहीं प्रचार करने जाते हैं? जब प्रधानमंत्री प्रचार करने जाते हैं, डूसू इलेक्शन में भी वो जाते हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि राहुल गांधी एक और छात्रों की गूंज कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जेंजी हमारे साथ हैं, अब जो रिजल्ट आए हैं उसमें तो जेंजी ने अपना वोट दे दिया, स्पष्ट कर दिया।
6: देखिए, ये मैंडेट जेंजी का नहीं है। आप देखिए ना कि सारे बिल्कुल बेशक चुनाव जीते हैं, उनका जीत का आंकड़ा देखिए, जीत का नंबर नॉट अ गेम, लड़ाई नंबर की नहीं है। हमें विपक्ष में कितना वोट पड़ा है वो महत्वपूर्ण है, और राहुल गांधी जी की रही प्रचार की बात, तो ये छात्रों का इलेक्शन है, छात्रों का इलेक्शन, छात्र लड़े, देश के प्रधानमंत्री जो है कैंपेन में आ रहे हैं, तो छात्रों का इलेक्शन तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है ना। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को यही डर सता रहा था कि कैसे भी करके जो है चुनाव जीतना है।
1: And with the Delhi University Students Union elections result that are now out, celebrations were there on the campus following a closely watched election. The AVVP won 3 central panel posts, while independent candidate Dipanshu Shaukeen secured the vice presidential post. Dipanshu Shaukeen's victory gives an independent candidate the vice president post in year's DUSU central panel, and Shaukeen's independent campaign ends with a win in one of Delhi University Student Union's key positions. Shaukeen, remember, has credited the younger generation of the voters, saying Gen Z students are more aware and cannot be easily misled. Shaukeen has also said that that his focus after the victory would be on doing what he described as honest work for students in a Gen Z coordinate post. He tweeted on X and said, "It's done, bro."
3: पांचो, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जीत पर? आपको एनएसयूआई की तरफ से आप खड़े होने वाले थे, पर फिर आपने विड्रॉ कर लिया अपना कैंडिडेचर, क्या हुआ एग्जैक्टली, और अब आप अपनी जीत को कैसे देखते हो?
7: ये जीत छात्र शक्ति की हुई है, स्टूडेंट्स की हुई है, जो भरोसा स्टूडेंट्स ने मुझ पर दिखाया, उनकी एक आप देख सकते हैं इतने बड़े मार्जिन से जीत होना साफ दर्शाता है कि स्टूडेंट्स की पहली पसंद, जेंजी की पहली पसंद दीपांशु शौकीन को उन्होंने माना कि मैं उनके बीच से निकल कर उनकी आवाज़ को मैं उठा रहा हूँ, और स्टूडेंट्स ने जो भरोसा जताया है मैं उस पर खरा उतरूंगा।
3: क्या आप इससे सीजेपी के बाद का एक आफ्टरमाथ इफेक्ट भी देखते हैं कि किस तरीके से वोटिंग पैटर्न्स चेंज हुए हैं डूसू में?
7: स्टूडेंट्स ने प्रूव किया है कि जब जब

0: के साथ गलत हुआ है तो वो आवाज़ उठाते हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, और वही उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में करके दिखाया है।
1: Now the results of the Delhi University Student Union elections have given the BJP leaders fresh ammunition against the Congress party. While the NSUI drew a blank, Kiran Rijiju said that Jhoot Ki Goonj has been demolished completely as Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign came under fire. The ABVP has won 3 of the 4 key DUSU posts, retaining control of the central panel. A Congress-backed NSUI, meanwhile, has failed to win any of the 4 central positions. Reacting to the verdict was also Union Minister Kiran Rijiju and JP Nadda, who mocked Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign, saying Jhoot Ki Goonj has been demolished completely. The result comes amid Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign that is being recently held in Indore in Madhya Pradesh, while Shokin's independent victory has another dimension to the ABVP-NSUI contest. The election also comes days after the Satyaniketan hostel collapse and amid NSUI allegations of poll rigging and administrative favoritism towards the ABVP.
2: दिल्ली यूनिवर्सिटी में एवीबीपी का इतना प्रचंड जीत ये दिखाता है कि कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी ये छात्रों का गूंज के नाम से जो घूमता है वो वैसे तो ये झूठ का गूंज है, क्योंकि युवाओं ने बोल दिया है। अब इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में इतना भारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत दिलाना, मैं एवीबीपी के सारे कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं।
3: आज दूसू के परिणाम आए हैं, एबीवीपी ने 4 में से 3 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है। आपको बता दें कि दिल्ली में एबीवीपी की जो शुरुआत थी, जो बीज बोया था, वो जेपी नड्डा जी ने बोया था। हमारे साथ हैं नड्डा जी, आज की जीत पर आप क्या कहेंगे?
4: सबसे पहले तो बीज तो विद्यार्थी परिषद का मेरे से पहले बहुत वो दिया गया था, लेकिन हाँ, राष्ट्रवादी ताकतें आगे बढ़ी हैं और उसमें मुझे भी लंबे समय तक काम करने का मौका मिला है। दिल्ली में भी काम करने का एबीवीपी में मौका मिला है, लगभग 4.5 साल काम किया है। आज मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने शानदार जीत दर्ज कराई है, ये राष्ट्रवादी ताकतों
3: पर एक तरफ छात्रों की गूंज राहुल गांधी कर रहे हैं और एक यहाँ पर परिणाम है,
4: वहाँ की गूंज तो सुनाई दी नहीं, लेकिन ये धमाका समय सुना।
5: मैंने अभी सुना है कि एनएसयूआई के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि वहाँ काउंटिंग में और सेंटर्स में भी बहुत धांधली हुई है, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन छोटे मार्जिन जो हैं बाकी 2-3 सीट पे उसमें इसका बड़ा असर हो सकता है। दूसरा, कैंपेनिंग में भी बहुत दिक्कत हुई, हमारे लोगों को हर जगह जाने नहीं दिया गया, रोका गया, तो उस कारण से हो सकता है कि जो छोटे छोटे मार्जिन की जो 2-3 सीटों पर हम लोग हारे हैं ये जीत में भी तब्दील हो सकते थे।
1: On to other stories that we're tracking from the state of West Bengal, the TMC split has triggered a direct fight over the party's name, symbol and organizational control, with the Election Commission freezing the original identity for the upcoming by-polls. Mamata Banerjee has challenged the Election Commission order in the Supreme Court after the poll panel froze the original TMC name and flowers and grass symbol for the upcoming by-polls. The BJP says that the Election Commission acted within its rule while dealing with the rival claims over the TMC name and symbol. Rahul Gandhi has pointed to the TMC dispute alongside earlier Shiv Sena and NCP split. Rahul has described the TMC episode as a part of what he calls a wider pattern of vote theft, government theft and the party theft as well. Rijiju, meanwhile, has hit back at Rahul by pointing to the origins of both NCP and the TMC as breakaway.

0: রাত্রে হলদিয়াতে মিডনাইটে বলেছিলাম, আর যেই থাকুক এরা থাকবেন। তার কারণটা হচ্ছে অতি দর্পে হত লঙ্কা অতি মানে চক।
1: कई दिनों से कांग्रेस टॉप लीडरशिप के साथ हमारा लीडर ममता बनर्जी को बातचीत कम्युनिकेशन हो रहे थे, लेकिन ये जो अभी तो ये जो डिसीजन है वो पॉलिटिकल डिसीजन है। ये सामने पूरा देश में एंटी भाजपा जो यूनिटी का बात हम लोग कर रहे हैं, सेकुलर फोर्स का, डेमोक्रेटिक फोर्स का, प्रोग्रेसिव फोर्स का, तो इसीलिए नंदीग्राम कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए हमारा पार्टी डिसीजन लिए हुए है। आज ममता दीदी ने ये अनाउंस कर दिया।
2: In yet another attempt to defame the Election Commission of India and attack the Bharatiya Janata Party, Rahul Gandhi ends up exposing the sordid history of the Indian National Congress. Is it not true that in the year 1980, the then Congress government, misusing Article 356, dismissed 9 state governments? Why is it that Rahul Gandhi insists on attacking the Election Commission, which is hailed the world over as the harbinger of not only democracy, but also a commission that has used modern technology to ensure that every vote counts?
0: कांग्रेस पार्टी हमेशा मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर में डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहता है
3: जी।
0: चुनाव आयोग को जल्दी से जल्दी जो सिद्धांत लेना था वो नहीं लिया, और उसका कारण जो आज ये डेमोक्रेसी में क्राइसिस क्रिएट हुआ है। आज कोई सिंबल में कोई जीत जाता है, उसका बाद उन्होंने दूसरी पार्टी में जाके काम करता है। ये एक ऐसा एनार्की इनसाइड द डेमोक्रेसी व्हिच इज वेरी डेट्रीमेंटल इन आवर्स society in our country।
4: ममता बनर्जी का तृणमूल तो कोई खेला लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं किया। करोड़ों लोगों को धोखा दिया था मेसी को लाकर, एक झलक मेसी को देख नहीं पाए। खेला हो बे खून को लेकर खेला किया, तो फुटबॉल का प्रतीक मत लगाइए ममता बनर्जी, खून का प्रतीक लगाइए। 15 साल तो खून किया है अपना सरकार, आपका सरकार खून हुआ है, उसका विचार नहीं किया है, खून किया है सत्ता के लिए, तो फुटबॉल मत लगाइए। फुटबॉल तो स्वामी विवेकानंद बोले थे कि भगवान के पास अगर जल्दी पहुंचना है तो खेलो, फुटबॉल मत लगाइए, आपका शोभा नहीं देता है, खून का प्रतीक लगाइए।
5: देखिए, ऐसा करते करते चुनाव पार हो जाएगा, ना कैंडिडेट दे पाएंगे ना लड़ पाएंगे। अब किसी का भी अधिकार है कोर्ट में जाने का, वो जाके देखे।
6: Moving on to other stories that we are tracking from the state of Maharashtra, and this is in regard with a second year IIT Bombay student that has died by suicide in what is now the third such reported case on the Powai campus in 7 months. The student, identified as Sahil Wakode from the Department of Energy Science and Engineering, was allegedly caught using a mobile phone during an exam. The IIT Bombay University now says that he had uploaded the question paper on ChatGPT to seek answers, but no disciplinary action had been initiated. The institute says that the student was counseled and assured the incident would not affect his academic career. However, the students protesting on the campus are alleging a different sequence of events, including claims that he was removed from the exam. They were demanding an inquiry into the action taken against Sahil and have also sought the resignation of the Dean of Administrative Affairs in the university. We have a couple of reactions coming in on that big story.
7: आज हमारा ये प्रोटेस्ट के कारण है कि आज हमारा कॉलेज में सुसाइड हुआ था, तो इसीलिए हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और आंसरेबल होने के लिए हम आज प्रोटेस्ट के लिए आया था। और अभी ये पहली नहीं है, यही साल में 4 हो गया और 2 महीने में 2 हो गया, तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है सब कुछ। हमारा डीन, डायरेक्टर सब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है उसको हमको बस ये रिपोर्ट दे दो कि हम जानकारी लेंगे, हम वी विल बी आंसरेबल टू दैट, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंसी सब हम लेंगे, और इससे आगे कुछ ऐसे नहीं होगा हमारी तरफ से।
8: IIT पवई में एक स्टूडेंट ने सुसाइड की थी, उसके बाद

0: आईआईटी के कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए और उनकी मांगों के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। इसमें आईआईटी एडमिनिस्ट्रेशन उनसे चर्चा करके कुछ अमिकेबल सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे पुलिस का भी एक प्रॉपर बंदोबस्त रखा गया है।
1: A major NDTV impact in Bengaluru has taken place. Our report on the city's pothole mess has prompted action from the Karnataka government. Following our coverage, authorities have ordered repairs of potholes and identified black spots as well, while also planning an alternate route to ease the traffic. The government has also directed officials to put safety measures in place as road repair work begins. The action comes after NDTV highlighted the dangerous state of Bengaluru's roads and questioned why key stretches remain in such poor condition.
2: इतनी परेशानी होती है कि कहीं कभी भी जाने के लिए डेढ़ घंटे कम से कम लगता है, डेढ़ से दो घंटे। अभी मैं फ्लाइट मेरी छूट गई थी एक दिन, मैं इधर से जाने का कोई रास्ता ही नहीं है और ना तो इसका मेंटेनेंस हो रहा है, कुछ भी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं लोग, बहुत परेशानी है।
3: अभी देखिए सर, आप यहाँ पर पैच वर्क शुरू,
2: ये पैच वर्क से क्या होगा मैडम? हाँ, ये तो आपने करा तब जाके हुआ है, लेकिन यहाँ हम लोग बहुत बहुत परेशान हैं। कभी भी हमारा माने कभी ट्रेन छूट जाएगा, कभी वो छूट जाएगा, हम दो घंटे पहले चलेंगे तब भी प्रॉब्लम हो जाता है।
4: यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है मैम, क्योंकि अभी डे बिफोर यस्टरडे बच्चे, स्कूल के बच्चे, मतलब मेरी खुद की बेटी 2 आवर्स सिर्फ ट्रैफिक में फंसी हुई थी और उसका एग्ज़ाम भी था उस दिन, तो वो उस पैनिक में उसने उसका एग्ज़ाम भी उतना अच्छा हुआ नहीं मेरे ख्याल से। और मैं मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट था और मुझे इतना फीवरिश था, मेरे को पहुँचने के लिए हॉस्पिटल मुझे 2 घंटे लग गए सिर्फ जस्ट शोभा ड्रीम एकर से यहाँ पे हार्डली 5 से 6 किलोमीटर के लिए। तो मतलब बहुत टेरिबल कंडीशन है यहाँ पे, बहुत प्रॉब्लम है।
3: बट हमने बताया उसके बाद जो है ये काम शुरू हुआ है, तो किस तरीके से आपको क्या लगता है कि हम जब बताते हैं, जब मीडिया बताती है तभी दरअसल काम शुरू?
4: वही, जब जब जब आप लोग कुछ इस पे लाइट डालते हैं तभी कुछ होता है, नहीं तो फिर ये कुछ नहीं करते यहाँ के जो भी है लोकल MLA।
1: A day after NDTV showed the deplorable conditions of Bengaluru's Vartur Gunjur stretches, in fact, right there you have now an impact that's seen on the ground. Right after NDTV reported about how that the traffic congestions are often seen in these stretches and, you know, the commuters facing various difficulties, not just the commuters, in fact, also the school children's as well. And there you see now the civic body has swung into an action and the pothole filling work has began in these stretches. So that's the impact that the NDTV has made it on ground. In fact, now these, just a day back that there was a video that had gone viral of whether the school children's were seen traveling for, you know, for 4 kilometers, not less than 2 hours that they really took to reach their homes. The parents were seen being quite panicked and they had also expressed their frustration as well and the anger while speaking to NDTV. And the school students, in fact, had also appealed the state government and the civic bodies to take up the work in a right manner and give them a proper roads, which is their right. And there you have, right after NDTV reported this whole, the impact is seen on the ground, whether the pothole filling work has begun. The officials, in fact, are also now, are been said that, you know, that they will be working on these stretches overnight from today onwards until unless all the patchworks are been done at this particular stretch now. But hopefully, you see, what is more important is that for the people here who are commuting day and night, it's a matter of their safety as well. It's also about the school students who are spending maximum of their time on the roads. So the safety roads, right road is their right, is what is, of course, the residents and the school students have also expressed while speaking to NDTV. But hopefully this will not be seen as the temporary fix is what that the residents are hoping. And there should be a permanent solution is what that they say. With video journalist Govindritu Rajpurohit for NDTV from Bengaluru. And before we slip into a short break, here are pictures that Deepika Padukone and Ranveer Singh shared on Instagram, where they have welcomed their second child, a baby girl, today. The couple announced the arrival with a joint social media post reading, "Welcome baby girl 19-9-2026, signed by Dua, Deepika and Ranveer." Their first daughter, Dua, was born in September 2024 and is now a big sister. The baby's name has not been revealed yet.
5: and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our product.
6: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
7: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV.
1: Now, in the latest attack and escalation in West Asia, black smoke was seen rising near Riyadh's King Khalid International Airport after Saudi Arabia issued its first air raid alert for the capital amid renewed tensions with Yemen Houthis. Now, reports say that an Aramco fuel tank near the airport caught fire while flight operations were disrupted. Residents reported hearing multiple explosions overnight. This is our report regarding the recent escalation.
8: Residents say they heard a round of explosions after the alerts went out overnight. An AFP journalist reports firefighters are battling a burnt-out Aramco fuel tank near King Khalid International Airport. Saudi authorities have not commented on it yet. The Saudi Civil Defense sent phone alerts overnight, then gave the all-clear Saturday morning. One resident called it terrifying. It comes a day after the Houthis said Saudi Arabia carried out 300 strikes across Yemen this past week and warned the reported attacks on Sana'a would not go unanswered. The Houthis have seized the port city of Mocha and Perim Island and now control the Red Sea coastline, giving them a grip on the vital Bab al-Mandab Strait. That matters for Saudi Arabia, whose oil exports have relied on that route since the Strait of Hormuz was effectively shut. Meanwhile, Washington has approved a $24.3 billion sale of 48 F-35 jets to the kingdom. The UN says the renewed fighting has displaced more than 112,000 people. Bureau report, NDTV World.
1: And well, there is word of a deal on Greenland and reactions are already coming in. NATO's top military officer has welcomed it, and in Copenhagen, people say it's a relief. The agreement between the United States, Denmark and Greenland would boost the American military presence on the island, while Greenland says under the Danish control. Here is our report. We leave you with it.
8: First, NATO, its top military officer, called the deal very, very welcome, but said he won't go deep on the details. What he did say was, NATO already has plenty going on in the Arctic.
9: From NATO point of view, of course, I match what Mika just said. I mean, it's an agreement, so it's a very, very welcome. Well, we are not going in deep for that. Again, we have a lot of stuff going on there from the military point of view.
8: In Copenhagen, the mood is one of relief. Residents say the past few months have been tense, especially after President Trump posted a map showing Greenland and Iceland as part of the US just 2 weeks ago.
10: It's great that it's over, because just a fortnight ago, Donald Trump posted this map showing Greenland and also Iceland as part of the US. So we were kind of worried that you know, he would take all of Greenland by force. So the fact that we can settle this in a diplomatic way, and also that the US help us defend Greenland, I think it's good.
11: I think it's the most realistic solution for us right now, because we are a small nation, and of course we have to cooperate with bigger countries and also the European Union. So we need to stick together.
8: President Trump announced the deal Friday, saying it gives the United States permanent control over security and all other needs in Greenland. Under the agreement, the US would expand its military presence on the Arctic island, but Denmark would keep control of the territory. The deal isn't done yet. The Prime Minister's office says all three governments will sign next week during the UN General Assembly. But Denmark's and Greenland's parliaments still have to sign off before anything takes effect. For now, many Danes say they're just glad the standoff ended at the negotiating table. The real test comes next week when the signatures go on the page. Bureau Report, NDTV World.
12: A generation with questions.
13: The starring and the whole glamorous side of it.
14: As I said, like, I can't empathize with it.
12: Unconventional.
15: I feel blessed. As long as the work is going on, I'm happy.
12: Unapologetic. Unafraid of change. Ready to challenge.
16: Aspirational.
12: The ideas. The issues.
17: You really are.
12: The young view.
17: Public perception.
12: NDTV Yuva. 28th September 2026. Only on the NDTV network.
18: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
19: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
20: High rate, check the audio. High rate, check the audio.
19: Let's do it. Let's start.
21: Breaking story, we're jumping straight into it.
19: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
22: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
23: Very special ground report from the line of control. It was some...
1: Hello and welcome. You're watching NDTV. Before we get to the big stories of the day, here's a quick check of the headlines that we're tracking. Delhi University Students' Union elections have been declared after the completion of 20 rounds of vote counting. The AVVP won 3 of 4 central posts, president, secretary and the joint secretary as well. AVVP wins 3 posts. Independent Dipanshu Shokin creates history by securing the post of the VP in the Delhi University Students' elections. Bengal bipolar see a fresh twist as Mamata Banerjee's Rejinagar candidate Raibul Alam takes a U-turn after announcing his withdrawal. Raibul now says that he will contest the bipolar. Mamata's Nandigram candidate withdrew nomination and Congress's Milan Pradhan was arrested. It's a big NDTV impact in Bengaluru after NDTV reported on crumbling infrastructure on Bengaluru's Varthur-Gunjur road. Commissioner has now ordered for urgent road repairs to ensure the safety of school children and public. From Mirabai Chanu to Preeti, India's Commonwealth Games stars head to Japan for Asian Games with the podium ambitions. Two residents of the Saudi capital saw black smoke and flames from an area near the Riyadh International Airport, while other people in the city reportedly heard explosions. We're starting this edition with the breaking news that's just coming in, and this is a reaction that's coming from the former Union Education Minister Dharmendra Pradhan, who has now hit out at Rahul Gandhi after Delhi University Students' Union elections result were declared. Now Dharmendra Pradhan has slammed Rahul Gandhi, saying it is system versus students narrative that has been set and that students need not need solutions, they need not need theatre. Dharmendra Pradhan has flagged higher education access as well, and he has said that politics for students, not over students, should be the motto. And remember, this reaction of Dharmendra Pradhan has come after AVVP, student wing of the BJP, had swept the Delhi University Students' Union election. And these are not university elections that we're talking about. These are, of course, going to have implications that are going to expand nationally as far as the political forum and further elections are concerned. Moving on to some other stories that we are tracking, and this is regarding the Delhi University Students' Union election, where, like I just said, AVVP has swept
0: the Delhi University Students Union election. It was the NSUI who had a zero in the election results, and an independent candidate, Dipanshu Shaukeen, had won the place of a vice president. And all of this, remember, has having national implications. So what does the Delhi University Students Union elections result mean politically? It means that it is going to have a political implication as far as the elections are concerned. And there is a political war of words, of course, which has erupted. But before we get to that, let's first hear in to what the president, the vice president and the NSUI candidate had to say on the Delhi University student election results today.
2: मैं बस यही कहना चाहूंगा, ये जीत समरसता की है, ये जीत देशभक्ति की है, ये जीत संघ शक्ति की है.
3: When we spoke in the morning, you were talking about the varied issues that you would be working upon. Now, what is the plan ahead, roadmap ahead?
2: जो मैंने आपको बताया था वही सेम है. ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद हम कुछ अलग हो जाएंगे. जो हमने काम कहा था, चाहे वो सेफ्टी ऑडिट को हो, चाहे नए हॉस्टल्स का हो, किसी भी तरीके का हो, विद्यार्थी परिषद पहले ही दिन से अपने काम पर जुट जाएगी.
3: Like to add in terms of, you know, how the contest went. There was a lot of neck to neck at one point with the NSUI candidate as well. And at this point, NSUI is alleging that it's been rigged by the ABVP.
2: ये सब students का आपने देखा, जो प्यार विद्यार्थी परिषद को मिला और कुछ अन्य candidates को भी मिला, लेकिन NSUI को 4-0 से clean sweep कर दिया है Delhi University के students ने.
16: मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. एबीवीपी से पहली कैंडिडेट हूँ मैं, अपने कॉलेज से पहली कैंडिडेट हूँ मैं, अपने एरिया से पहली कैंडिडेट हूँ, पहली लड़की हूँ, तो मुझे उस बात पे बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत थैंकफुल फील हो रहा है.
3: Tell us your age. What is your age? How young you are?
16: 21 years.
3: 21 years, Riya. What is the plan ahead? You're into student politics now.
16: अभी तो हमें अपने Delhi University की चीजें देखनी है. जो जो हमें students ने हमसे expect किया है वो चीजें पूरी करनी है. अपने manifesto का पूरा करना है सबसे.
3: जैसे कि क्या, किन मुद्दों पर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे?
16: सबसे पहले girl safety of course, and उसके बाद PG safeties, PG audits and campus safety, और बाकी जो जो चीजें हमने अपने manifesto में लिखी है वो हम पूरी पूरी करने की कोशिश करेंगे.
3: क्या कहना चाहेंगी आप टू अदर स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग अस राइट नाउ, व्यूअर्स हु वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स?
16: कभी हार नहीं हारो, क्योंकि मैं अपने कॉलेज इलेक्शंस में प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हारी थी और उसके अगले साल आज मैं सेक्रेटरी की पोस्ट पे जीती हूँ डूसू में. सो कभी अपने आप को डीमोटिवेट मत करना, यू कैन डू दैट.
24: विनोद, इस रिजल्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत भी की, लड़ाई भी लड़ी, लेकिन नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया?
25: देखिए, लड़ाई जो है कैसे लड़ी गई ये महत्वपूर्ण है. मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि डूसू इलेक्शन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता तक जो है एक स्टार कैंपेनर के तौर पे काम किया है, और पूरे देश के अंदर विद्यार्थियों ने जो है NSUI को बहुत मजबूती से जो है वोट दिया है. मैं सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने NSUI के पैनल को वोट किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि NSUI जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करी है वो उनके लिए लगातार पूरे साल काम करेगी और उनको उन वादों को मनवाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ेगी.
24: आप विनोद ये बोल रहे हैं कि हमने लड़ाई लड़ी, आपने जीतने की कोशिश भी की, आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए. सवाल तो इस बात पे भी खड़ा होता है ना कि फिर राहुल गांधी क्यों नहीं प्रचार करने जाते हैं? जब प्रधानमंत्री प्रचार करने जाते हैं, डूसू इलेक्शन में भी वो जाते हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि राहुल गांधी एक और छात्रों की गूंज कर रहे हैं. आप लोग कह रहे हैं कि जेंजी हमारे साथ हैं, अब जो रिजल्ट आए हैं उसमें तो जेंजी ने अपना वोट दे दिया, स्पष्ट कर दिया.
25: देखिए, ये मैंडेट जेंजी का नहीं है. आप देखिए ना कि सारे बिल्कुल बेशक चुनाव जीते, उनका जीत का आंकड़ा देखिए, जीत का नंबर नॉट अ गेम, लड़ाई नंबर की नहीं है. हमें विपक्ष में कितना वोट पड़ा है वो महत्वपूर्ण है. और राहुल गांधी जी की रही प्रचार की बात, तो ये छात्रों का इलेक्शन है, छात्रों का इलेक्शन, छात्र लड़े, देश के प्रधानमंत्री जो है कैंपेन में आ रहे हैं, तो छात्रों का इलेक्शन तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है ना. तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को यही डर सता रहा था कि कैसे भी करके जो है चुनाव जीतना है.
0: And with the Delhi University Students Union elections result that are now out, celebrations were there on the campus following a closely watched election. The AVVP won 3 central panel posts, while independent candidate Dipanshu Shaukeen secured the vice presidential post. Dipanshu Shaukeen's victory gives an independent candidate the vice president post in year's DUSU central panel, and Shaukeen's independent campaign ends with a win in one of Delhi University Student Union's key positions. Shaukeen, remember, has credited the young younger generation of the voters, saying Gen Z students are more aware and cannot be easily misled. Shaukeen has also said that his focus after the victory would be on doing what he described as honest work for students in a Gen Z coordinate post. He tweeted on X and said, "It's done, bro."
3: पांचों आप क्या करना चाहेंगे अपनी जीत पर? आपको एनएसयूआई की तरफ से आप खड़े होने वाले थे, पर फिर आपने विड्रॉ कर लिया अपना कैंडिडेचर. क्या हुआ एग्जैक्टली और अब आप अपनी जीत को कैसे देखते हो?
4: ये जीत छात्र शक्ति की हुई है, स्टूडेंट्स की हुई है. जो भरोसा स्टूडेंट्स ने मुझ पर दिखाया, उनकी एक आप देख सकते हैं इतने बड़े मार्जिन से जीत होना साफ दर्शाता है कि स्टूडेंट्स की पहली पसंद, जेन जी की पहली पसंद दीपांशु शौकीन को उन्होंने माना कि मैं उनके बीच से निकल कर उनकी आवाज़ को मैं उठा रहा हूँ, और स्टूडेंट्स ने जो भरोसा जताया है मैं उस पर खरा उतरूंगा.
3: क्या आप इससे सीजेपी के बाद का एक आफ्टरमाथ इफेक्ट भी देखते हैं कि किस तरीके से वोटिंग पैटर्न्स चेंज हुए हैं डूसू में?
4: स्टूडेंट्स ने प्रूव किया है कि जब जब उनके साथ गलत हुआ है तो वो आवाज़ उठाते हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, और वही उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में करके दिखाया है.
0: Now the results of the Delhi University Student Union elections have given the BJP leaders fresh ammunition against the Congress party. While the NSUI drew a blank, Kiran Rijiju said that Jhoot Ki Goonj has been demolished completely as Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign came under fire. The ABVP has won 3 of the 4 key DUSU posts, retaining control of the central panel. A Congress-backed NSUI, meanwhile, has failed to win any of the 4 central positions. Reacting to the verdict was also Union Minister Kiran Rijiju and JP Nadda, who mocked Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign, saying Jhoot Ki Goonj has been demolished completely. The result comes amid Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign that is being recently held in Indore in Madhya Pradesh, while Shaukeen's independent victory has another dimension to the AVVP-NSUI contest. The election also comes days after the Satyaniketan hostel collapse and amid NSUI allegations of poll rigging and administrative favoritism towards the AVVP.
5: दिल्ली यूनिवर्सिटी में एवीबीपी का इतना प्रचंड जीत ये दिखाता है कि कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी ये छात्रों का गूंज के नाम से जो घूमता है वो वैसे तो ये झूठ का गूंज है, क्योंकि युवाओं ने बोल दिया है. अब इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में इतना भारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत दिलाना, मैं एवीबीपी के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं.
6: आज दूसू के परिणाम आए हैं. एबीवीपी ने 4 में से 3 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है. आपको बता दें कि दिल्ली में एबीवीपी की जो शुरुआत थी, जो बीज बोया था, वो जेपी नड्डा जी ने बोया था. हमारे साथ हैं नड्डा जी. आज की जीत पर आप क्या कहेंगे?
7: सबसे पहले तो बीज तो विद्यार्थी परिषद का मेरे से पहले बहुत वो दिया गया था, लेकिन हाँ, राष्ट्रवादी ताकतें आगे बढ़ी हैं और उसमें मुझे भी लंबे समय तक काम करने का मौका मिला है. दिल्ली में भी काम करने का एवीपी में मौका मिला है. लगभग 4.5 साल काम किया है. आज मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ. जिस तरीके से उन्होंने शानदार जीत दर्ज कराई है, ये राष्ट्रवादी ताकत
6: पर एक तरफ छात्रों की गूंज राहुल गांधी कर रहे हैं और एक यहाँ पर परिणाम है.
7: वहाँ की गूंज तो सुनाई ही नहीं, लेकिन ये धमाका समय सुना.
9: मैंने अभी सुना है कि एनएसयूआई के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि वहाँ काउंटिंग में और सेंटर्स में भी बहुत धांधली हुई है. उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन छोटे मार्जिन जो हैं बाकी 2-3 सीट पे, उसमें इसका बड़ा असर हो सकता है. दूसरा, कैंपेनिंग में भी बहुत दिक्कत हुई, हमारे लोगों को हर जगह जाने नहीं दिया गया, रोका गया. तो उस कारण से हो सकता है कि जो छोटे छोटे मार्जिन की जो 2-3 सीटों पर हम लोग हारे हैं, ये जीत में भी तब्दील हो सकते थे.
0: On to other stories that we're tracking from the state of West Bengal. The TMC split has triggered a direct fight over the party's name, symbol and organizational control, with the Election Commission freezing the original identity for the upcoming by-polls. Mamata Banerjee has challenged the Election Commission order in the Supreme Court after the poll panel froze the original TMC name and flowers and grass symbol for the upcoming by-polls. The BJP says that the Election Commission acted within its rule while dealing with the rival claims over the TMC name and symbol. Rahul Gandhi has pointed to the TMC dispute alongside earlier Shiv Sena and NCP split. Rahul has described the TMC episode as a part of what he calls a wider pattern of vote theft, government theft and the party theft as well. Rijiju, meanwhile, has hit back at Rahul by pointing to the origins of both NCP and the TMC as breakaways from the Congress party.
10: দেখুন, এগুলো নিয়ে কিছু হবে না. ইলেকশন কমিশনের সিদ্ধান্ত ইলেকশন কমিশন তার নিয়ম মেনে সব পক্ষের কথা শুনে করেছে.
8: আমাদের কোন সরাসরি বিজেপির রোল নেই। তবে আমরা এই বলি, একটা কথা বলি, আমি নির্বাচনের দিন, গণনার দিন রাত্রে হলদিয়াতে মিডনাইটে বলেছিলাম, আর যেই থাকুক এরা থাকবে না। তার কারণটা হচ্ছে অতি দর্পে হত লঙ্কা অতি মানে চক।
11: कई दिनों से कांग्रेस टॉप लीडरशिप के साथ हमारा लीडर ममता बनर्जी को बातचीत कम्युनिकेशन हो रहे थे, लेकिन ये जो अभी तो ये जो डिसीशन है वो पॉलिटिकल डिसीशन है। ये सामने पूरा देश में एंटी भाजपा जो यूनिटी का बात हम लोग कर रहे हैं, सेकुलर फोर्स का, डेमोक्रेटिक फोर्स का, प्रोग्रेसिव फोर्स का, तो इसीलिए नंदीग्राम कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए हमारा पार्टी डिसीजन लिए हुए है। आज ममता दीदी ने ये अनाउंस कर दिया।
13: इन येट अनदर अटेम्प्ट टू डिफेम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अटैक द भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी एंड्स अप एक्सपोजिंग द सॉर्डिड हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इज इट नॉट ट्रू दैट इन द ईयर 1980 the then Congress government, misusing Article 356, dismissed 9 state governments? Why is it that Rahul Gandhi insists on attacking the Election Commission, which is hailed the world over as the harbinger of not only democracy, but also a commission that has used modern technology to ensure that every vote counts?
14: कांग्रेस पार्टी हमेशा मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर में डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहता है
15: जी।
14: चुनाव आयोग को जल्दी से जल्दी जो सिद्धांत लेना था वो नहीं लिया, और उसका कारण जो आज ये डेमोक्रेसी में क्राइसिस क्रिएट हुआ है। आज कोई सिंबल में कोई जीत जाता है, उसका बाद उन्होंने दूसरी पार्टी में जाके काम करता है। ये एक ऐसा एनार्की इनसाइड द डेमोक्रेसी व्हिच इज वेरी डेट्रीमेंटल इन आवर society, in our country।
17: ममता बनर्जी का तृणमूल तो कोई खेला लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं किया। करोड़ों लोगों को धोखा दिया था मेसी को लाकर, एक झलक मेसी को देख नहीं पाए। खेला हो बे खून को लेकर खेला किया, तो फुटबॉल का प्रतीक मत लगाइए ममता बनर्जी, खून का प्रतीक लगाइए। 15 साल तो खून किया है अपना सरकार, आपका सरकार खून हुआ है, उसका विचार नहीं किया है, खून किया है सत्ता के लिए, तो फुटबॉल मत लगाइए। फुटबॉल तो स्वामी विवेकानंद बोले थे कि भगवान के पास अगर जल्दी पहुंचना है तो खेलो, फुटबॉल खेलो, फुटबॉल मत लगाइए, आपका शोभा नहीं देता है, खून का प्रतीक लगाइए।
26: देखिए, ऐसा करते करते चुनाव पार हो जाएगा, ना कैंडिडेट दे पाएंगे ना लड़ पाएंगे। अब किसी का भी अधिकार है कोर्ट में जाने का, वो जाके देखे।
0: Moving on to other stories that we are tracking from the state of Maharashtra, and this is in regard with a second year IIT Bombay student that has died by suicide in what is now the third such reported case on the Powai campus in 7 months. The student, identified as Sahil Wakode from the Department of Energy Science and Engineering, was allegedly caught using a mobile phone during an exam. The IIT Bombay University now says that he had uploaded the question paper on ChatGPT to seek answers, but no disciplinary action had been initiated. The institute says the student was counseled and assured the incident would not affect his academic career. However, the students protesting on the campus are alleging a different sequence of events, including claims that he was removed from the exam. They were demanding an inquiry into the action taken against Sahil and have also sought the resignation of the Dean of Administrative Affairs in the university. We have a couple of reactions coming in on that big story.
27: आज हमारा ये प्रोटेस्ट के कारण है कि आज हमारा कॉलेज में सुसाइड हुआ था, तो इसीलिए हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और आंसरेबल होने के लिए हम आज प्रोटेस्ट के लिए आया था। और अभी ये पहली नहीं है, यही साल में 4 हो गया और 2 महीने में 2 हो गया, तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा है क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, सब कुछ हमारा डीन डायरेक्टर सब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है उसको हमको बस ये रिपोर्ट दे दो कि हम जानकारी लेंगे, हम वी विल बी आंसरबल टू दैट, अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंसी सब हम लेंगे और इससे आगे कुछ ऐसे नहीं होगा हमारी तरफ से।

0: The 20th Asian Games are officially underway in Aichi, Nagoya in Japan. For the next 16 days, this is where India's sporting dreams will play out.
1: We are in the happy hunting ground with the athlete I am sitting with right now, PV Sindhu.
2: 32 years and no medal. Can India's weightlifting contingent give us that elusive medal?
3: Gold rush on the field.
1: Go for it.
0: Hello and welcome. You're watching NDTV. Before we get to the big stories of the day, here's a quick check of the headlines that we're tracking. Delhi University Students' Union elections have been declared after the completion of 20 rounds of vote counting. The AVVP won 3 of 4 central posts, president, secretary and the joint secretary as well. AVVP wins 3 posts. Independent Dipanshu Shaukeen creates history by securing the post of the VP in the Delhi University Students' elections. Bengal bipolar see a fresh twist as Mamata Banerjee's Rejinagar candidate Raibul Alam takes a U-turn after announcing his withdrawal. Raibul now says that he will contest the bipolar. Mamata's Nandigram candidate withdrew nomination and Congress's Milan Pradhan was arrested. It's a big NDTV impact in Bengaluru after NDTV reported on crumbling infrastructure on Bengaluru's Varthur-Gunjur road. Commissioner has now ordered for urgent road repairs to ensure the safety of school children and public. From Mirabai Chanu to Preeti, India's Commonwealth Games stars head to Japan for Asian Games with the podium ambitions. Two residents of the Saudi capital saw black smoke and flames from an area near the Riyadh International Airport, while other people in the city reportedly heard explosions. We're starting this edition with the breaking news that's just coming in, and this is a reaction that's coming from the former Union Education Minister Dharmendra Pradhan, who has now hit out at Rahul Gandhi after Delhi University Students Union elections result were declared. Now Dharmendra Pradhan has slammed Rahul Gandhi, saying it is system versus students narrative that has been set and that students need not need solutions, they need not need theatre. Dharmendra Pradhan has flagged higher education access as well, and he has said that politics for students, not over students, should be the motto. And remember, this reaction of Dharmendra Pradhan has come after AVVP, student wing of the BJP, had swept the Delhi University Students Union election. And these are not university elections that we're talking about. These are, of course, going to have implications that are going to expand nationally as far as the political forum and further elections are concerned. Moving on to some other stories that we are tracking, and this is regarding the Delhi University Students' Union election, where, like I just said, AVVP has swept the Delhi University Students' Union election. It was the NSUI who had a zero in the election results, and an independent candidate, Dipanshu Shaukeen, had won the place of a vice president. And all of this, remember, has having national implications. So what does the Delhi University Students' Union elections result mean politically? It means that it is going to have a political implication as far as the elections are concerned. And there is a political war of words, of course, which has erupted. But before we get to that, let's first hear in to what the president, the vice president and the NSUI candidate had to say on the Delhi University student election results today.
4: मैं बस यही कहना चाहूंगा, ये जीत समरसता की है, ये जीत देशभक्ति की है, ये जीत संघ शक्ति की है.
5: When we spoke in the morning, you were talking about the varied issues that you would be working upon. Now, what is the plan ahead, roadmap ahead?
4: जो मैंने आपको बताया था वही सेम है. ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद हम कुछ अलग हो जाएंगे. जो हमने काम कहा था, चाहे वो सेफ्टी ऑडिट को हो, चाहे नए हॉस्टल्स का हो, किसी भी तरीके का हो, विद्यार्थी परिषद पहले ही दिन से अपने काम पर जुट जाएगी.
5: Like to add in terms of, you know, how the contest went, there was a lot of neck to neck at one point with the NSUI candidate as well, and at this point NSUI is alleging that it's been rigged by the ABVP.
4: ये सब students का आपने देखा, जो प्यार विद्यार्थी परिषद को मिला, और कुछ अन्य कैंडिडेट्स को भी मिला, लेकिन NSUI को 4-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने।
6: मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, ABVP से पहली कैंडिडेट हूँ मैं, अपने कॉलेज से पहली कैंडिडेट हूँ मैं, अपने एरिया से पहली कैंडिडेट हूँ, पहली लड़की हूँ, तो मुझे उस बात पे बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत थैंकफुल फील हो रहा है।
5: Tell us your age. What is your age? How young you are?
6: 21 years.
5: 21 years, Riya. What is the plan ahead? You're into student politics now.
6: अभी तो हमें अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की चीज़ें देखनी है, जो जो हमें स्टूडेंट्स ने हमसे एक्सपेक्ट किया है वो चीज़ें पूरी करनी है, अपने मैनिफेस्टो का पूरा करना है सबसे।
5: जैसे कि क्या, किन मुद्दों पर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे?
6: सबसे पहले गर्ल सेफ्टी ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद PG सेफ्टी, PG ऑडिट्स एंड कैंपस सेफ्टी, और बाकी जो जो चीज़ें हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखी है वो हम पूरी पूरी करने की कोशिश करेंगे।
5: क्या कहना चाहेंगी आप टू अदर स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग अस राइट नाउ, व्यूअर्स हु वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स?
6: कभी हार नहीं हारो, क्योंकि मैं अपने कॉलेज इलेक्शंस में प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हारी थी और उसके अगले साल आज मैं सेक्रेटरी की पोस्ट पे जीती हूँ डूसू में। सो कभी अपने आप को डीमोटिवेट मत करना, यू कैन डू दैट।
7: विनोद, इस रिजल्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत भी की, लड़ाई भी लड़ी, लेकिन नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया?
8: देखिए, लड़ाई जो है कैसे लड़ी गई ये महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि डूसू इलेक्शन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर दिल्ली की CM रेखा गुप्ता तक जो है एक स्टार कैंपेनर के तौर पे काम किया है, और पूरे देश के अंदर विद्यार्थियों ने जो है NSUI को बहुत मजबूती से जो है वोट दिया है। मैं सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने NSUI के पैनल को वोट किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि NSUI जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करी है वो उनके लिए लगातार पूरे साल काम करेगी और उनको उन वादों को मनवाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ेगी।
7: आप विनोद ये बोल रहे हैं कि हमने लड़ाई लड़ी, आपने जीतने की कोशिश भी की, आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए। सवाल तो इस बात पे भी खड़ा होता है ना कि फिर राहुल गांधी क्यों नहीं प्रचार करने जाते हैं? जब प्रधानमंत्री प्रचार करने जाते हैं, डूसू इलेक्शन में भी वो जाते हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि राहुल गांधी एक और छात्रों की गूंज कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जेंजी हमारे साथ हैं, अब जो रिजल्ट आए हैं उसमें तो जेंजी ने अपना वोट दे दिया, स्पष्ट कर दिया।
8: देखिए, ये मैंडेट जेंजी का नहीं है। आप देखिए ना कि सारे बिल्कुल बेशक चुनाव जीते हैं, उनका जीत का आंकड़ा देखिए, जीत का नंबर नॉट अ गेम, लड़ाई नंबर की नहीं है। हमें विपक्ष में कितना वोट पड़ा है वो महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी जी की रही प्रचार की बात, तो ये छात्रों का इलेक्शन है, छात्रों का इलेक्शन, छात्र लड़े, देश के प्रधानमंत्री जो है कैंपेन में आ रहे हैं, तो छात्रों का इलेक्शन तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है ना। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को यही डर सता रहा था कि कैसे भी करके जो है चुनाव जीतना है।
0: And with the Delhi University Students Union elections result that are now out, celebrations were there on the campus following a closely watched election. The AVVP won 3 central panel posts, while independent candidate Dipanshu Shaukeen secured the vice presidential post. Dipanshu Shaukeen's victory gives an independent candidate the vice president post in year's DUSU central panel, and Shaukeen's independent campaign ends with a win in one of Delhi University Student Union's key positions. Shaukeen, remember, has credited the younger generation of the voters, saying Gen Z students are more aware and cannot be easily misled. Shaukeen has also said that his focus after the victory would be on doing what he described as honest work for students in a Gen Z coordinate post. He tweeted on X and said, "It's done, bro."
5: पांचो, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जीत पर? आपको NSUI की तरफ से आप खड़े होने वाले थे, पर फिर आपने विड्रॉ कर लिया अपना कैंडिडेचर, क्या हुआ एग्जैक्टली, और अब आप अपनी जीत को कैसे देखते हो?
9: ये जीत छात्र शक्ति की हुई है, स्टूडेंट्स की हुई है, जो भरोसा स्टूडेंट्स ने मुझ पर दिखाया, उनकी एक आप देख सकते हैं इतने बड़े मार्जिन से जीत होना साफ दर्शाता है कि स्टूडेंट्स की पहली पसंद, जेंजी की पहली पसंद दीपांशु शौकीन को उन्होंने माना कि मैं उनके बीच से निकल कर उनकी आवाज़ को मैं उठा रहा हूँ, और स्टूडेंट्स ने जो भरोसा जताया है मैं उस पर खरा उतरूंगा।
5: क्या आप इससे CJP के बाद का एक आफ्टरमाथ इफेक्ट भी देखते हैं कि किस तरीके से वोटिंग पैटर्न्स चेंज हुए हैं डूसू में?
9: स्टूडेंट्स ने प्रूव किया है कि जब जब उनके साथ गलत हुआ है तो वो आवाज़ उठाते हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, और वही उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में करके दिखाया है।
0: Now, the results of the Delhi University Student Union elections have given the BJP leaders fresh ammunition against the Congress party. While the NSUI drew a blank, Kiran Rijiju said that Jhoot Ki Goonj has been demolished completely as Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign came under fire. The ABVP has won 3 of the 4 key DOSU posts, retaining control of the central panel. A Congress-backed NSUI, meanwhile, has failed to win any of the 4 central positions. Reacting to the verdict was also Union Minister Kiran Rijiju and JP Nadda, who mocked Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign, saying Jhoot Ki Goonj has been demolished completely. The result comes amid Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign that is being recently held in Indore in Madhya Pradesh, while Shokin's independent victory has another dimension to the ABVP-NSUI contest. The election also comes days after the Satyaniketan hostel collapse and amid NSUI allegations of poll rigging and administrative favoritism towards the ABVP.
10: Delhi University mein ABVP ka itna prachand jeet ye dikhata hai ki Congress aur opposition party ये छात्रों का गूंज के नाम से जो घूमता है वो वैसे तो ये झूठ का गूंज है क्योंकि युवाओं ने बोल दिया है. अब इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में इतना भारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत दिलाना, मैं एवीबीपी के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूँ.
11: आज दूसू के परिणाम आए हैं. एबीवीपी ने 4 में से 3 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है. आपको बता दें कि दिल्ली में एबीवीपी की जो शुरुआत थी, जो बीज बोया था, वो जेपी नड्डा जी ने बोया था. हमारे साथ हैं नड्डा जी, आज की जीत पर आप क्या कहेंगे?
12: सबसे पहले तो बीज तो विद्यार्थी परिषद का मेरे से पहले बहुत बो दिया गया था, लेकिन हाँ, राष्ट्रवादी ताकतें आगे बढ़ी हैं और उसमें मुझे भी लंबे समय तक काम करने का मौका मिला है. दिल्ली में भी काम करने का एबीवीपी में मौका मिला है. लगभग 4.5 साल काम किया है. आज मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ. जिस तरीके से उन्होंने शानदार जीत दर्ज कराई है, ये राष्ट्रवादी ताकत.
11: एक तरफ छात्रों की गूंज राहुल गांधी कर रहे हैं और एक यहाँ पर परिणाम है.
12: वहाँ की गूंज तो सुनाई ही नहीं, लेकिन ये धमाका सबने सुना है.
13: मैंने अभी सुना है कि एनएसयूआई के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ काउंटिंग में और सेंटर्स में भी बहुत धांधली हुई है. उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन छोटे मार्जिन जो हैं बाकी 2-3 सीट पे, उसमें इसका बड़ा असर हो सकता है. दूसरा, कैंपेनिंग में भी बहुत दिक्कत हुई, हमारे लोगों को हर जगह जाने नहीं दिया गया, रोका गया. तो उस कारण से हो सकता है कि जो छोटे छोटे मार्जिन की जो 2-3 सीटों पर हम लोग हारे हैं, ये जीत में भी तब्दील हो सकते थे.
0: On to other stories that we're tracking from the state of West Bengal, the TMC split has triggered a direct fight over the party's name, symbol and organizational control, with the Election Commission freezing the original identity for the upcoming by-polls. Mamata Banerjee has challenged the Election Commission order in the Supreme Court after the poll panel froze the original TMC name and flowers and grass symbol for the upcoming by-polls. The BJP says that the Election Commission acted within its rule while dealing with the rival claims over the TMC name and symbol. Rahul Gandhi has pointed to the TMC dispute alongside earlier Shiv Sena and NCP split. Rahul has described the TMC episode as a part of a what he calls a wider pattern of vote theft, government theft and the party theft as well. Rijiju, meanwhile, has hit back at Rahul by pointing to the origins of both NCP and the TMC as breakaways from the Congress party.
14: দেখুন, এগুলো নিয়ে কিছু হবে না. ইলেকশন কমিশনের সিদ্ধান্ত ইলেকশন কমিশন, তার নিয়ম মেনে সব পক্ষের কথা শুনে করেছে. উনি ওনার দলকে একদিন রাখতে পারেননি. দলের মধ্যে কি দুভাগ তিনভাগ চারভাগ হয়েছে তার দায়টাই কিন্তু ওনার, এটা আমাদের কোনো সরাসরি বিজেপির রোল নেই. তবে আমি বলি, একটা কথা বলি, আমি নির্বাচনের দিন, গণনার দিন, রাত্রে হলদিয়াতে মিডনাইটে বলেছিলাম, আর যেই থাকুক এরা থাকবেন. তার কারণটা হচ্ছে, অতি দর্পে হত লঙ্কা অতি মানে চক.
15: कई दिनों से कांग्रेस टॉप लीडरशिप के साथ हमारा लीडर ममता बनर्जी को बातचीत कम्युनिकेशन हो रहे थे, लेकिन ये

0: Election Commission of India and attacked the Bharatiya Janata Party, Rahul Gandhi ends up exposing the sordid history of the Indian National Congress. Is it not true that in the year 1980, the then Congress government, misusing Article 356, dismissed 9 state governments? Why is it that Rahul Gandhi insists on attacking the Election Commission, which is hailed the world over as the harbinger of not only democracy, but also a commission that has used modern technology to ensure that every vote counts?
1: कांग्रेस पार्टी हमेशा मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर में डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहता है
2: जी।
1: चुनाव आयोग को जल्दी से जल्दी जो सिद्धांत लेना था वो नहीं लिया, और उसका कारण जो आज ये डेमोक्रेसी में क्राइसिस क्रिएट हुआ है। आज कोई सिंबल में कोई जीत जाता है, उसका बाद उन्होंने दूसरी पार्टी में जाके काम करता है। ये एक ऐसा एनार्की इनसाइड द डेमोक्रेसी व्हिच इज वेरी डेट्रीमेंटल इन आवर सोसाइटी इन आवर कंट्री।
3: ममता बनर्जी का तृणमूल तो कोई खेला लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं किया। करोड़ों लोगों को धोखा दिया था मेसी को लाकर, एक झलक मेसी को देख नहीं पाए। खेला हो बे खून को लेकर खेला किया, तो फुटबॉल का प्रतीक मत लगाइए ममता बनर्जी, खून का प्रतीक लगाइए। 15 साल तो खून किया है अपना सरकार, आपका सरकार खून हुआ है, उसका विचार नहीं किया है, खून किया है सत्ता के लिए, तो फुटबॉल मत लगाइए। फुटबॉल तो स्वामी विवेकानंद बोले थे कि भगवान के पास अगर जल्दी पहुंचना है तो खेलो, फुटबॉल खेलो, फुटबॉल मत लगाइए, आपका शोभा नहीं देता है, खून का प्रतीक लगाइए।
4: देखिए, ऐसा करते करते चुनाव पार हो जाएगा, ना कैंडिडेट दे पाएंगे ना लड़ पाएंगे। अब किसी का भी अधिकार है कोर्ट में जाने का, वो जाके देखें।
5: Moving on to other stories that we are tracking from the state of Maharashtra, and this is in regard with a second year IIT Bombay student that has died by suicide in what is now the third such reported case on the Powai campus in 7 months. The student, identified as Sahil Wakode from the Department of Energy Science and Engineering, was allegedly caught using a mobile phone during an exam. The IIT Bombay University now says that he had uploaded the question paper on ChatGPT to seek answers, but no disciplinary action had been initiated. The institute says that the student was counseled and assured the incident would not affect his academic career. However, the students protesting on the campus are alleging a different sequence of events, including claims that he was removed from the exam. They were demanding an inquiry into the action taken against Sahil and have also sought the resignation of the Dean of Administrative Affairs in the university. We have a couple of reactions coming in on that big story.
6: आज हमारा ये प्रोटेस्ट के कारण है कि आज हमारा कॉलेज में सुसाइड हुआ था, तो इसीलिए हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और आंसरेबल होने के लिए हम आज प्रोटेस्ट के लिए आया था। और अभी ये पहली नहीं है, यही साल में 4 हो गया और 2 महीने में 2 हो गया, तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है सब कुछ। हमारा डीन, डायरेक्टर साहब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है उसको हमको बस ये रिपोर्ट दे दो कि हम जानकारी लेंगे, हम वी विल बी आंसरेबल टू दैट, अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंसी सब हम लेंगे, और इससे आगे कुछ ऐसे नहीं होगा हमारी तरफ से।
7: आईआईटी पवई में एक स्टूडेंट ने सुसाइड की थी, उसके बाद आईआईटी के कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए और उनकी मांगों के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। इसमें आईआईटी एडमिनिस्ट्रेशन उनसे चर्चा करके कुछ अमिकेबल सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पे पुलिस का भी एक प्रॉपर बंदोबस्त रखा गया है।
5: A major NDTV impact in Bengaluru has taken place. Our report on the city's pothole mess has prompted action from the Karnataka government. Following our coverage, authorities have ordered repairs of potholes and identified black spots as well, while also planning an alternate route to ease the traffic. The government has also directed officials to put safety measures in place as road repair work begins. The action comes after NDTV highlighted the dangerous state of Bengaluru's roads and questioned why key stretches remain in such poor condition.

0: अहेड, रोड मैप अहेड।
1: जो मैंने आपको बताया था वही सेम है, ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद हम कुछ अलग हो जाएंगे। जो हमने काम कहा था, चाहे वो सेफ्टी ऑडिट को हो, चाहे नए हॉस्टल्स का हो, किसी भी तरीके का हो, विद्यार्थी परिषद पहले ही दिन से अपने काम पर जुट जाएगी।
0: Like to add in terms of, you know, how the contest went. There was a lot of neck to neck at one point with the NSUI candidate as well. And at this point, NSUI is alleging that it's been rigged by the ABVP.
1: ये सब students का आपने देखा, जो प्यार विद्यार्थी परिषद को मिला और कुछ अन्य candidates को भी मिला, लेकिन NSUI को 4-0 से clean sweep कर दिया है Delhi University के students ने।
2: मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ABVP से पहली कैंडिडेट हूँ मैं, अपने कॉलेज से पहली कैंडिडेट हूँ मैं, अपने एरिया से पहली कैंडिडेट हूँ, पहली लड़की हूँ, तो मुझे उस बात पे बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत थैंकफुल फील हो रहा है।
0: Tell us your age. What is your age? How young you are?
2: 21 years.
0: 21 years, Riya. What is the plan ahead? You're into student politics now.
2: अभी तो हमें अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की चीज़ें देखनी है, जो जो हमें स्टूडेंट्स ने हमसे एक्सपेक्ट किया है वो चीज़ें पूरी करनी है, अपने मैनिफेस्टो को पूरा करना है सबसे।
0: जैसे कि क्या, किन मुद्दों पर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे?
2: सबसे पहले गर्ल सेफ्टी ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद PG सेफ्टी, PG ऑडिट्स एंड कैंपस सेफ्टी, और बाकी जो जो चीज़ें हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखी है वो हम पूरी पूरी करने की कोशिश करेंगे।
0: क्या कहना चाहेंगी आप टू अदर स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग अस राइट नाउ, व्यूअर्स हु वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स?
2: कभी हार नहीं हारो, क्योंकि मैं अपने कॉलेज इलेक्शंस में प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हारी थी और उसके अगले साल आज मैं सेक्रेटरी की पोस्ट पे जीती हूँ डूसू में। सो कभी अपने आप को डीमोटिवेट मत करना, यू कैन डू दैट।
3: विनोद, इस रिजल्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत भी की, लड़ाई भी लड़ी, लेकिन नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया?
4: देखिए, लड़ाई जो है कैसे लड़ी गई ये महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि डूसू इलेक्शन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर दिल्ली की CM रेखा गुप्ता तक जो है एक स्टार कैंपेनर के तौर पे काम किया है, और पूरे देश के अंदर विद्यार्थियों ने जो है NSUI को बहुत मजबूती से जो है वोट दिया है। मैं सबसे पहले जन विद्यार्थियों ने NSUI के पैनल को वोट किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि NSUI जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करी है वो उनके लिए लगातार पूरे साल काम करेगी और उनको उन वादों को मनवाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ेगी।
3: आप विनोद ये बोल रहे हैं कि हमने लड़ाई लड़ी, आपने जीतने की कोशिश भी की, आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए। सवाल तो इस बात पे भी खड़ा होता है ना कि फिर राहुल गांधी क्यों नहीं प्रचार करने जाते हैं? जब प्रधानमंत्री प्रचार करने जाते हैं, डूसू इलेक्शन में भी वो जाते हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि राहुल गांधी एक और छात्रों की गूंज कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जेंजी हमारे साथ हैं, अब जो रिजल्ट आए हैं उसमें तो जेंजी ने अपना वोट दे दिया, स्पष्ट कर दिया।
4: देखिए, ये मैंडेट जेंजी का नहीं है। आप देखिए ना कि सारे बिल्कुल बेशक चुनाव जीते हैं, उनका जीत का आंकड़ा देखिए, जीत का नंबर नॉट अ गेम, लड़ाई नंबर की नहीं है। हमें विपक्ष में कितना वोट पड़ा है वो महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी जी की रही प्रचार की बात, तो ये छात्रों का इलेक्शन है, छात्रों का इलेक्शन, छात्र लड़े, देश के प्रधानमंत्री जो है कैंपेन में आ रहे हैं, तो छात्रों का इलेक्शन तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है ना। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को यही डर सता रहा था कि कैसे भी करके जो है चुनाव जीतना है।
5: And with the Delhi University Students Union elections result that are now out, celebrations were there on the campus following a closely watched election. The AVVP won 3 central panel posts, while the independent candidate Dipanshu Shaukeen secured the vice presidential post. Dipanshu Shaukeen's victory gives an independent candidate the vice president post in year's DUSU central panel, and Shaukeen's independent campaign ends with a win in one of Delhi University Student Union's key positions. Shaukeen, remember, has credited the younger generation of the voters, saying Gen Z students are more aware and cannot be easily misled. Shaukeen has also said that his focus after the victory would be on doing what he described as honest work for students in a Gen Z coordinate post. He tweeted on X and said, "It's done, bro."
0: पांचो, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जीत पर? आपको NSUI की तरफ से आप खड़े होने वाले थे, पर फिर आपने विड्रॉ कर लिया अपना कैंडिडेचर, क्या हुआ एग्जैक्टली, और अब आप अपनी जीत को कैसे देखते हो?
6: ये जीत छात्र शक्ति की हुई है, स्टूडेंट्स की हुई है, जो भरोसा स्टूडेंट्स ने मुझ पर दिखाया उनकी एक आप देख सकते हैं, इतने बड़े मार्जिन से जीत होना साफ दर्शाता है कि स्टूडेंट्स की पहली पसंद, जेंजी की पहली पसंद दीपांशु शौकीन को उन्होंने माना कि मैं उनके बीच से निकल कर उनकी आवाज़ को मैं उठा रहा हूँ, और स्टूडेंट्स ने जो भरोसा जताया है मैं उस पर खरा उतरूंगा।
0: क्या आप इससे CJP के बाद का एक आफ्टरमाथ इफेक्ट भी देखते हैं कि किस तरीके से वोटिंग पैटर्न्स चेंज हुए हैं डूसू में?

0: We are crossing a heavy ridgeline now. We are going to be descending into the valley where the damage has taken place. This is the Bhotekoshi River now. It used to be Trishuli downstream. It's now the Bhotekoshi. This is the first look that we saw by helicopter of the exact spot where the floods broke through. To my left over here, they were all homes. Ashwini, you see the bank of the river over here? They were all homes. None of them exist. They've been completely...
1: Hello and welcome. You're watching NDTV. Before we get to the big stories of the day, here's a quick check of the headlines that we're tracking. Delhi University Students' Union elections have been declared after the completion of 20 rounds of vote counting. The AVVP won 3 of 4 central posts, president, secretary and the joint secretary as well. AVVP wins 3 posts. Independent Dipanshu Shokin creates history by securing the post of the VP in the Delhi University Students' elections. Bengal by polls see a fresh twist as Mamata Banerjee's Rejinagar candidate Raibul Alam takes a U-turn after announcing his withdrawal. Raibul now says that he will contest the by poll. Mamata's Nandigram candidate withdrew nomination and Congress's Milan Pradhan was arrested. It's a big NDTV impact in Bengaluru after NDTV reported on crumbling infrastructure on Bengaluru's Varthur-Gunjur Road. Commissioner has now ordered for urgent road repairs to ensure the safety of school children and public. From Mirabai Chanu to Preeti, India's Commonwealth Games stars head to Japan for Asian Games with the podium ambitions. Two residents of the Saudi capital saw black smoke and flames from an area near the Riyadh International Airport, while other people in the city reportedly heard explosions. We're starting this edition with the breaking news that's just coming in, and this is a reaction that's coming from the former Union Education Minister Dharmendra Pradhan, who has now hit out at Rahul Gandhi after Delhi University Students' Union elections result were declared. Now, Dharmendra Pradhan has slammed Rahul Gandhi, saying it is system versus students' narrative that has been set and that students need not need solutions, they need not need theatre. Dharmendra Pradhan has flagged higher education access as well, and he has said that politics for students, not over students, should be the motto. And remember, this reaction of Dharmendra Pradhan has come after AVVP, student wing of the BJP, had swept the Delhi University Students' Union election. And these are not university elections that we're talking about. These are, of course, going to have implications that are going to expand nationally as far as the political forum and further elections are concerned. Moving on to some other stories that we are tracking, and this is regarding the Delhi University Students' Union election, where, like I just said, AVVP has swept the Delhi University Students' Union election. It was the NSUI who had a zero in the election results, and an independent candidate, Dipanshu Shokin, had won the place of a vice president. And all of this, remember, has having national implications. So what does the Delhi University Students' Union elections result mean politically? It means that it is going to have a political implication as far as the elections are concerned. And there is a political war of words, of course, which has erupted. But before we get to that, let's first hear in to what the president, the vice president and the NSUI candidate had to say on the Delhi University student election results today.
2: मैं बस यही कहना चाहूंगा, ये जीत समरसता की है, ये जीत देशभक्ति की है, ये जीत संघ शक्ति की है.
3: When we spoke in the morning, you were talking about the varied issues that you would be working upon. Now, what is the plan ahead, roadmap ahead?
2: जो मैंने आपको बताया था वही सेम है. ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद हम कुछ अलग हो जाएंगे. जो हमने काम कहा था, चाहे वो सेफ्टी ऑडिट को हो, चाहे नए हॉस्टल्स का हो, किसी भी तरीके का हो, विद्यार्थी परिषद पहले ही दिन से अपने काम पर जुट जाएगी.
3: Like to add in terms of, you know, how the contest went. There was a lot of neck to neck at one point with the NSUI candidate as well. And at this point, NSUI is alleging that it's been rigged by the ABVP.
2: ये सब students का आपने देखा, जो प्यार विद्यार्थी परिषद को मिला, और कुछ अन्य कैंडिडेट्स को भी मिला, लेकिन NSUI को 4-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने।
4: मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, ABVP से पहली कैंडिडेट हूँ मैं, अपने कॉलेज से पहली कैंडिडेट हूँ मैं, अपने एरिया से पहली कैंडिडेट हूँ, पहली लड़की हूँ, तो मुझे उस बात पे बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत थैंकफुल फील हो रहा है।
3: Tell us your age. What is your age? How young you are?
4: 21 years.
3: 21 years, Riya. What is the plan ahead? You're into student politics now.
4: अभी तो हमें अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की चीज़ें देखनी है, जो जो हमें स्टूडेंट्स ने हमसे एक्सपेक्ट किया है वो चीज़ें पूरी करनी है, अपने मैनिफेस्टो को पूरा करना है सबसे।
3: जैसे कि क्या, किन मुद्दों पर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे?
4: सबसे पहले गर्ल सेफ्टी ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद PG सेफ्टीज, PG ऑडिट्स एंड कैंपस सेफ्टी, और बाकी जो जो चीज़ें हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखी है वो हम पूरी पूरी करने की कोशिश करेंगे।
3: क्या कहना चाहेंगी आप टू अदर स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग अस राइट नाउ, व्यूअर्स हु वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स?
4: कभी हार नहीं हारो, क्योंकि मैं अपने कॉलेज इलेक्शंस में प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हारी थी और उसके अगले साल आज मैं सेक्रेटरी की पोस्ट पे जीती हूँ डूसू में। सो कभी अपने आप को डीमोटिवेट मत करना, यू कैन डू दैट।
5: विनोद, इस रिजल्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत भी की, लड़ाई भी लड़ी, लेकिन नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया?
6: देखिए, लड़ाई जो है कैसे लड़ी गई ये महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि डूसू इलेक्शन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर दिल्ली की CM रेखा गुप्ता तक जो है एक स्टार कैंपेनर के तौर पे काम किया है, और पूरे देश के अंदर विद्यार्थियों ने जो है NSUI को बहुत मजबूती से जो है वोट दिया है। मैं सबसे पहले जन विद्यार्थियों ने NSUI के पैनल को वोट किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि NSUI जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करी है वो उनके लिए लगातार पूरे साल काम करेगी और उनको उन वादों को मनवाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ेगी।
5: आप विनोद ये बोल रहे हैं कि हमने लड़ाई लड़ी, आपने जीतने की कोशिश भी की, आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए। सवाल तो इस बात पे भी खड़ा होता है ना कि फिर राहुल गांधी क्यों नहीं प्रचार करने जाते हैं? जब प्रधानमंत्री प्रचार करने जाते हैं, डूसू इलेक्शन में भी वो जाते हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि राहुल गांधी एक और छात्रों की गूंज कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जेंजी हमारे साथ हैं, अब जो रिजल्ट आए हैं उसमें तो जेंजी ने अपना वोट दे दिया, स्पष्ट कर दिया।
6: देखिए, ये मैंडेट जेंजी का नहीं है। आप देखिए ना कि सारे बिल्कुल बेशक चुनाव जीते हैं, उनका जीत का आंकड़ा देखिए, जीत का नंबर नॉट अ गेम, लड़ाई नंबर की नहीं है। हमें विपक्ष में कितना वोट पड़ा है वो महत्वपूर्ण है, और राहुल गांधी जी की रही प्रचार की बात, तो ये छात्रों का इलेक्शन है, छात्रों का इलेक्शन, छात्र लड़े, देश के प्रधानमंत्री जो है कैंपेन में आ रहे हैं, तो छात्रों का इलेक्शन तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है ना। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को यही डर सता रहा था कि कैसे भी करके जो है चुनाव जीतना है।
1: And with the Delhi University Students Union elections results that are now out, celebrations were there on the campus following a closely watched election. The AVVP won 3 central panel posts, while the independent candidate Dipanshu Shaukeen secured the vice presidential post. Dipanshu Shaukeen's victory gives an independent candidate the vice president post in year's DUSU central panel, and Shaukeen's independent campaign ends with a win in one of Delhi University Student Union's key positions. Shaukeen, remember, has credited the younger generation of the voters, saying Gen Z students are more aware and cannot be easily misled. Shaukeen has also said that his focus after the victory would be on doing what he described as honest work for students in a Gen Z coordinate post. He tweeted on X and said, "It's done, bro."
3: पांशु, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जीत पर? आपको NSUI की तरफ से आप खड़े होने वाले थे, पर फिर आपने विड्रॉ कर लिया अपना कैंडिडेचर, क्या हुआ एग्जैक्टली, और अब आप अपनी जीत को कैसे देखते हो?
7: ये जीत छात्र शक्ति की हुई है, स्टूडेंट्स की हुई है, जो भरोसा स्टूडेंट्स ने मुझ पर दिखाया उनकी एक आप देख सकते हैं, इतने बड़े मार्जिन से जीत होना साफ दर्शाता है कि स्टूडेंट्स की पहली पसंद, जेंजी की पहली पसंद दीपांशु शौकीन को उन्होंने माना।

0: कि मैं उनके बीच से निकल कर उनकी आवाज़ को मैं उठा रहा हूँ और स्टूडेंट्स ने जो भरोसा जताया है मैं उस पर खरा उतरूंगा।
1: क्या आप इससे CJP के बाद का एक आफ्टरमाथ इफेक्ट भी देखते हैं कि किस तरीके से वोटिंग पैटर्न्स चेंज हुए हैं डूसू में?
0: स्टूडेंट्स ने प्रूव किया कि जब जब उनके साथ गलत हुआ है तो वो आवाज़ उठाते हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं और वही उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में करके दिखाया है।
2: Now the results of the Delhi University Student Union elections have given the BJP leaders fresh ammunition against the Congress party. While the NSUI drew a blank, Kiran Rijiju said that Jhoot Ki Goonj has been demolished completely as Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign came under fire. The ABVP has won 3 of the 4 key DOSU posts, retaining control of the central panel. Now, Congress-backed NSUI, meanwhile, has failed to win any of the 4 central positions. Reacting to the verdict was also Union Minister Kiran Rijiju and JP Nadda, who mocked Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign, saying Jhoot Ki Goonj has been demolished completely. The result comes amid Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign that is being recently held in Indore in Madhya Pradesh, while Shokin's independent victory has another dimension to the ABVP-NSUI contest. The election also comes days after the Satyaniketan hostel collapse and amid NSUI allegations of poll rigging and administrative favoritism towards the ABVP.
3: Delhi University mein ABVP ka itna prachand jeet ye dikhata hai ki Congress aur opposition party ये छात्रों का गूंज के नाम से जो घूमता है वो वैसे तो ये झूठ का गूंज है, क्योंकि युवाओं ने बोल दिया है। अब इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में इतना भारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत दिलाना, मैं ABVP के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूँ।
4: आज डूसू के परिणाम आए हैं। ABVP ने 4 में से 3 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है। आपको बता दें कि दिल्ली में ABVP की जो शुरुआत थी, जो बीज बोया था, वो JP नड्डा जी ने बोया था। हमारे साथ हैं नड्डा जी, आज की जीत पर आप क्या कहेंगे?
5: सबसे पहले तो बीज तो विद्यार्थी परिषद का मेरे से पहले बहुत बो दिया गया था, लेकिन हाँ, राष्ट्रवादी ताकतें आगे बढ़ी हैं और उसमें मुझे भी लंबे समय तक काम करने का मौका मिला है। दिल्ली में भी काम करने का ABVP में मौका मिला है, लगभग 4.5 साल काम किया है। आज मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने शानदार जीत दर्ज कराई है। ये राष्ट्रवादी ताकत,
4: एक तो छात्रों की गूंज राहुल गांधी कर रहे हैं और एक यहाँ पर परिणाम है,
5: वहाँ की गूंज तो सुनाई ही नहीं, लेकिन ये धमाका सबने सुना।
6: मैंने अभी सुना है कि NSUI के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि वहाँ काउंटिंग में और सेंटर्स में भी बहुत धांधली हुई है, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन छोटे मार्जिन जो हैं बाकी 2-3 सीट पे उसमें इसका बड़ा असर हो सकता है। दूसरा, कैंपेनिंग में भी बहुत दिक्कत हुई, हमारे लोगों को हर जगह जाने नहीं दिया गया, रोका गया, तो उस कारण से हो सकता है कि जो छोटे छोटे मार्जिन की जो 2-3 सीटों पर हम लोग हारे हैं ये जीत में भी तब्दील हो सकते थे।
2: On to other stories that we're tracking from the state of West Bengal, the TMC split has triggered a direct fight over the party's name, symbol and organizational control, with the Election Commission freezing the original identity for the upcoming by-polls. Mamata Banerjee has challenged the Election Commission order in the Supreme Court after the poll panel froze the original TMC name and flowers and grass symbol for the upcoming by-polls. The BJP says that the Election Commission acted within its rule while dealing with the rival claims over the TMC name and symbol. Rahul Gandhi has pointed to the TMC dispute alongside earlier Shiv Sena and NCP split. Rahul has described the TMC episode as a part of what he calls a wider pattern of vote theft, government theft and the party theft as well. Rijiju, meanwhile, has hit back at Rahul by pointing to the origins of both NCP and the TMC as breakaways from the Congress party.
7: দেখুন, এগুলো নিয়ে কিছু করবেন না। ইলেকশন কমিশনের সিদ্ধান্ত ইলেকশন কমিশন, তার নিয়ম মেনে সব পক্ষের কথা শুনে করেছে। উনি উনার দলকে একদিন রাখতে পারেননি, দলের মধ্যে কি 2-3-4 ভাগ হয়েছে তার দায় দায়িত্ব তো ওনার, এটা আমাদের কোনো সরাসরি বিজেপির রোল নেই। তবে আমি বলি, একটা কথা বলি, আমি নির্বাচনের দিন, গণনার দিন রাত্রে হলদিয়াতে মিডনাইটে বলেছিলাম, আর যেই থাকুক এরা থাকবেন। তার কারণটা হচ্ছে, অতি দর্পে হত লঙ্কা, অতি মানে যখন
8: कहीं दिनों से कांग्रेस टॉप लीडरशिप के साथ हमारा लीडर ममता बनर्जी को बातचीत कम्युनिकेशन हो रहे थे, लेकिन ये जो अभी तो ये जो डिसीजन है वो पॉलिटिकल डिसीजन है।

सामने पूरा देश में एंटी भाजपा जो यूनिटी का बात हम लोग कर रहे हैं, सेकुलर फोर्स का, डेमोक्रेटिक फोर्स का, प्रोग्रेसिव फोर्स का, तो इसीलिए नंदीग्राम कांग्रेस को सपोर्ट

0: governments? Why is it that Rahul Gandhi insists on attacking the Election Commission, which is hailed the world over as the harbinger of not only democracy, but also a commission that has used modern technology to ensure that every vote counts?
1: कांग्रेस पार्टी हमेशा मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर में डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहता है
2: जी।
1: चुनाव आयोग को जल्दी से जल्दी जो सिद्धांत लेना था वो नहीं लिया और उसका कारण जो आज ये डेमोक्रेसी में क्राइसिस क्रिएट हुआ है। आज कोई सिंबल में कोई जीत जाता है उसका बाद उन्होंने दूसरी पार्टी में जाके काम करता है। ये एक ऐसा एनार्की इनसाइड द डेमोक्रेसी व्हिच इज वेरी डिट्रीमेंटल इन आवर सोसाइटी इन आवर कंट्री।
3: ममता बनर्जी का तृणमूल तो कोई खेला लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं किया। करोड़ों लोगों को धोखा दिया था मेसी को लाकर, एक झलक मेसी को देख नहीं पाए। खेला हो बे खून को लेकर खेला किया। तो फुटबॉल का प्रतीक मत लगाइए ममता बनर्जी, खून का प्रतीक लगाइए। 15 साल तो खून किया है अपना सरकार, आपका सरकार खून हुआ है, उसका विचार नहीं किया है, खून किया है सत्ता के लिए। तो फुटबॉल मत लगाइए। फुटबॉल तो स्वामी विवेकानंद बोले थे कि भगवान के पास अगर जल्दी पहुंचना है तो खेलो फुटबॉल। फुटबॉल मत लगाइए, आपका शोभा नहीं देता है, खून का प्रतीक लगाइए।
4: देखिए ऐसा करते करते चुनाव पार हो जाएगा, ना कैंडिडेट दे पाएंगे ना लड़ पाएंगे। अब किसी का भी अधिकार है कोर्ट में जाने का, वो जाके देखे।
5: Moving on to other stories that we are tracking from the state of Maharashtra, and this is in regard with a second year IIT Bombay student that has died by suicide in what is now the third such reported case on the Powai campus in 7 months. The student identified as Sahil Wakode from the Department of Energy Science and Engineering was allegedly caught using a mobile phone during an exam. The IIT Bombay University now says that he had uploaded the question paper on ChatGPT to seek answers, but no disciplinary action had been initiated. The institute says that the student was counseled and assured the incident would not affect his academic career. However, the students protesting on the campus are alleging a different sequence of events, including claims that he was removed from the exam. They were demanding an inquiry into the action taken against Sahil and have also sought the resignation of the Dean of Administrative Affairs in the university. We have a couple of reactions coming in on that big story.
6: आज हमारा ये प्रोटेस्ट के कारण है कि आज हमारा कॉलेज में सुसाइड हुआ था, तो इसीलिए हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी और आंसरेबल होने के लिए हम आज प्रोटेस्ट के लिए आया था। और अभी ये पहली नहीं है, यही साल में 4 हो गया और 2 महीने में 2 हो गया, तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा है क्यों हो रहे, क्या रीजन है सब कुछ। हमारा डीन डायरेक्टर सब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है उसको हमको बस ये रिपोर्ट दे दो कि हम जानकारी लेंगे, हम वी विल बी आंसरेबल टू दैट, अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंसी सब हम लेंगे और इससे आगे कुछ ऐसे नहीं होगा हमारी तरफ से।
7: IIT पवई में एक स्टूडेंट ने सुसाइड की थी, उसके बाद IIT के कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए और उनकी मांगों के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। इसमें IIT एडमिनिस्ट्रेशन उनसे चर्चा करके कुछ अमिकेबल सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे पुलिस का भी एक प्रॉपर बंदोबस्त रखा गया है।
5: A major NDTV impact in Bengaluru has taken place. Our report on the city's pothole mess has prompted action from the Karnataka government. Following our coverage, authorities have ordered repairs of potholes and identified black spots as well, while also planning an alternate route to ease the traffic. The government has also directed officials to put safety measures in place as road repair work begins. The action comes after NDTV highlighted the dangerous state of Bengaluru's roads and questioned why key stretches remain in such poor condition.
8: ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ

0: The 20th Asian Games are officially underway in Aichi, Nagoya in Japan. For the next 16 days, this is where India's sporting dreams will play out.
1: We are in the happy hunting ground with the athlete I am sitting with right now, PV Sindhu.
2: 32 years and no medal. Can India's weightlifting contingent give us that elusive medal?
3: Gold rush on the field.
0: Go for glory, only on NDTV.
4: Launch control, 0 to 100.
5: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
6: This car makes no sense, yet it makes every sense.
7: What we are sitting inside is a Joby.
0: Hello and welcome. You're watching NDTV. Before we get to the big stories of the day, here's a quick check of the headlines that we're tracking. Delhi University Students' Union elections have been declared after the completion of 20 rounds of vote counting. The AVVP won 3 of 4 central posts, President, Secretary and the Joint Secretary as well. AVVP wins 3 posts. Independent Dipanshu Shaukeen creates history by securing the post of the VP in the Delhi University Students' elections. Bengal by polls see a fresh twist as Mamata Banerjee's Rejinagar candidate Raibul Alam takes a U-turn after announcing his withdrawal. Raibul now says that he will contest the by poll. Mamata's Nandigram candidate withdrew nomination and Congress's Milan Pradhan was arrested. It's a big NDTV impact in Bengaluru after NDTV reported on crumbling infrastructure on Bengaluru's Varthur-Gunjur Road. Commissioner has now ordered for urgent road repairs to ensure the safety of school children and public. From Mirabai Chanu to Preeti, India's Commonwealth Games stars head to Japan for Asian Games with the podium ambitions. Two residents of the Saudi capital saw black smoke and flames from an area near the Riyadh International Airport, while other people in the city reportedly heard explosions. We're starting this edition with the breaking news that's just coming in, and this is a reaction that's coming from the former Union Education Minister Dharmendra Pradhan, who has now hit out at Rahul Gandhi after Delhi University Students' Union elections result were declared. Now Dharmendra Pradhan has slammed Rahul Gandhi, saying it is system versus students narrative that has been set and that students need not need solutions, they need not need theatre. Dharmendra Pradhan has flagged higher education access as well, and he has said that politics for students, not over students, should be the motto. And remember, this reaction of Dharmendra Pradhan has come after AVVP, student wing of the BJP, had swept the Delhi University Students' Union election. And these are not university elections that we're talking about. These are, of course, going to have implications that are going to expand nationally as far as the political forum and further elections are concerned. Moving on to some other stories that we are tracking, and this is regarding the Delhi University Students' Union election, where, like I just said, AVVP has swept the Delhi University Students' Union election. It was the NSUI who had a zero in the election results, and an independent candidate, Dipanshu Shaukeen, had won the place of a vice president. And all of this, remember, has having national implications. What does the Delhi University Students' Union elections result mean politically? It means that it is going to have a political implication as far as the elections are concerned. And there is a political war of words, of course, which has erupted. But before we get to that, let's first hear in to what the president, the vice president and the NSUI candidate had to say on the Delhi University student election results today.
8: मैं बस यही कहना चाहूंगा, ये जीत समरसता की है, ये जीत देशभक्ति की है, ये जीत संघ शक्ति की है.
9: When we spoke in the morning, you were talking about the varied issues that you would be working upon. Now, what is the plan ahead, roadmap ahead?
8: जो मैंने आपको बताया था वही सेम है. ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद हम कुछ अलग हो जाएंगे. जो हमने काम कहा था, चाहे वो सेफ्टी ऑडिट को हो, चाहे नए हॉस्टल्स का हो, किसी भी तरीके का हो, विद्यार्थी परिषद पहले ही दिन से अपने काम पर जुट जाएगी.
9: All like to add in terms of, you know, how the contest went? There was a lot of neck to neck at one point with the NSUI candidate as well. And at this point, NSUI is alleging that it's been rigged by the ABVP.
8: ये सब स्टूडेंट्स का आपने देखा जो प्यार विद्यार्थी परिषद को मिला और कुछ अन्य कैंडिडेट्स को भी मिला, लेकिन NSUI को 4-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने।
10: मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, ABVP से पहली कैंडिडेट हूँ मैं, अपने कॉलेज से पहली कैंडिडेट हूँ मैं, अपने एरिया से पहली कैंडिडेट हूँ, पहली लड़की हूँ, तो मुझे उस बात पे बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत थैंकफुल फील हो रहा है।
9: Tell us your age. What is your age? How young you are?
10: 21 years.
9: 21 years, Riya. What is the plan ahead? You're into student politics now.
10: अभी तो हमें अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की चीज़ें देखनी है, जो जो हमें स्टूडेंट्स ने हमसे एक्सपेक्ट किया है वो चीज़ें पूरी करनी है और हमें मैनिफेस्टो का पूरा करना है सबसे।
9: जैसे कि क्या किन मुद्दों पर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे?
10: सबसे पहले गर्ल सेफ्टी ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद PG सेफ्टीज, PG ऑडिट्स एंड कैंपस सेफ्टी, और बाकी जो जो चीज़ें हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखी है वो हम पूरी पूरी करने की कोशिश करेंगे।
9: क्या कहना चाहेंगी आप टू अदर स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग अस राइट नाउ, व्यूअर्स हु वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स?
10: कभी हार नहीं हारो, क्योंकि मैं अपने कॉलेज इलेक्शंस में प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हारी थी और उसके अगले साल आज मैं सेक्रेटरी की पोस्ट पे जीती हूँ डूसू में। सो कभी अपने आप को डीमोटिवेट मत करना, यू कैन डू दैट।
11: विनोद, इस रिजल्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत भी की, लड़ाई भी लड़ी, लेकिन नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया?
12: देखिए, लड़ाई जो है कैसे लड़ी गई ये महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि डूसू इलेक्शन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर दिल्ली की CM रेखा गुप्ता तक जो है एक स्टार कैंपेनर के तौर पे काम किया है, और पूरे देश के अंदर विद्यार्थियों ने जो है NSUI को बहुत मजबूती से जो है वोट दिया है। मैं सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने NSUI के पैनल को वोट किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि NSUI जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करी है वो उनके लिए लगातार पूरे साल काम करेगी और उनको उन वादों को मनवाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ेगी।
11: आप विनोद ये बोल रहे हैं कि हमने लड़ाई लड़ी, आपने जीतने की कोशिश भी की, आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए। सवाल तो इस बात पे भी खड़ा होता है ना कि फिर राहुल गांधी क्यों नहीं प्रचार करने जाते हैं? जब प्रधानमंत्री प्रचार करने जाते हैं, डूसू इलेक्शन में भी वो जाते हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि राहुल गांधी एक और छात्रों की गूंज कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जेंजी हमारे साथ हैं, अब जो रिजल्ट आए हैं उसमें तो जेंजी ने अपना वोट दे दिया, स्पष्ट कर दिया।
12: देखिए, ये मैंडेट जेंजी का नहीं है। आप देखिए ना कि सारे बिल्कुल बेशक चुनाव जीते हैं, उनका जीत का आंकड़ा देखिए, जीत का नंबर नॉट अ गेम, लड़ाई नंबर की नहीं है। हमें विपक्ष में कितना वोट पड़ा है वो महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी जी की रही प्रचार की बात, तो ये छात्रों का इलेक्शन है, छात्रों का इलेक्शन, छात्र लड़े, देश के प्रधानमंत्री जो है कैंपेन में आ रहे हैं, तो छात्रों का इलेक्शन तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है ना। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को यही डर सता रहा था कि कैसे भी करके जो है चुनाव जीतना है।
0: And with the Delhi University Students Union elections result that are now out, celebrations were there on the campus following a closely watched election. The AVVP won 3 central panel posts, while independent candidate Dipanshu Shaukeen secured the vice presidential post. Dipanshu Shaukeen's victory gives an independent candidate the vice president post in year's DUSU central panel, and Shaukeen's independent campaign ends with a win in one of Delhi University Student Union's key positions. Shaukeen, remember, has credited the younger generation of the voters, saying Gen Z students are more aware and cannot be easily misled. Shaukeen has also said that his focus after the victory would be on doing what he described as honest work for students in a Gen Z coordinate post. He tweeted on X and said, "It's done, bro."
9: पांशु, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जीत पर? आपको NSUI की तरफ से आप खड़े होने वाले थे, पर फिर आपने विड्रॉ कर लिया अपना कैंडिडेचर, क्या हुआ एग्जैक्टली, और अब आप अपनी जीत को कैसे देखते हो?
13: ये जीत छात्र शक्ति की हुई है, स्टूडेंट्स की हुई है, जो भरोसा स्टूडेंट्स ने मुझ पर दिखाया उनकी एक आप देख सकते हैं, इतने बड़े मार्जिन से जीत होना साफ दर्शाता है कि स्टूडेंट्स की पहली पसंद, जेन जी की पहली पसंद दीपांशु शौकीन को उन्होंने माना कि मैं उनके बीच से निकल कर उनकी आवाज़ को मैं उठा रहा हूँ, और स्टूडेंट्स ने जो भरोसा जताया है मैं उस पर खरा उतरूंगा।
9: क्या आप इसे CJP के बाद का एक aftermath इफेक्ट भी देखते हैं कि किस तरीके से वोटिंग पैटर्न्स चेंज हुए हैं डूसू में?
13: स्टूडेंट्स ने प्रूव किया है कि जब जब उनके साथ गलत हुआ है तो वो आवाज़ उठाते हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, और वही उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में करके दिखाया है।
0: Now, the results of the Delhi University Student Union elections have given the BJP leaders fresh ammunition against the Congress party. While the NSUI drew a blank, Kiran Rijiju said that Jhoot Ki Goonj has been demolished completely as Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign came under fire. The ABVP has won three of the four key DUS

0: NSU post, retaining control of the central panel. A Congress-backed NSUI, meanwhile, has failed to win any of the four central positions. Reacting to the verdict was also Union Minister Kiran Rijiju and JP Nadda, who mocked Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj campaign, saying Jhoot Ki Goonj has been demolished completely. The result comes amid Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj campaign that is being recently held in Indore in Madhya Pradesh, while Shokin's independent victory has another dimension to the AVVP-NSUI contest. The election also comes days after the Satyaniketan hostel collapse and amid NSUI allegations of poll rigging and administrative favoritism towards the AVVP.
1: Delhi University mein AVVP ka itna prachand jeet ye dikhata hai ki Congress aur opposition party ye chhatron ka goonj ke naam se jo ghumta hai wo वैसे तो ये झूठ का गूंज है, क्योंकि युवाओं ने बोल दिया है। अब इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में इतना भारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत दिलाना, मैं एवीबीपी के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं।
2: आज दूसू के परिणाम आए हैं। एवीबीपी ने 4 में से 3 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है। आपको बता दें कि दिल्ली में एबीवीपी की जो शुरुआत थी, जो बीज बोया था, वो जेपी नड्डा जी ने बोया था। हमारे साथ हैं नड्डा जी, आज की जीत पर आप क्या कहेंगे?
3: सबसे पहले तो बीज तो विद्यार्थी परिषद का मेरे से पहले बहुत बो दिया गया था, लेकिन हाँ, राष्ट्रवादी ताकतें आगे बढ़ी हैं और उसमें मुझे भी लंबे समय तक काम करने का मौका मिला है। दिल्ली में भी काम करने का एबीवीपी में मौका मिला है, लगभग 4.5 साल काम किया है। आज मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने शानदार जीत दर्ज कराई है, ये राष्ट्रवादी ताकतों
2: पर एक तरफ छात्रों की गूंज राहुल गांधी कर रहे हैं और एक यहाँ पर परिणाम है।
3: वहाँ की गूंज तो सुनाई ही नहीं, लेकिन ये धमाका सबने सुना।
4: मैंने अभी सुना है कि एनएसयूआई के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ काउंटिंग में और सेंटर्स में भी बहुत धांधली हुई है, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन छोटे मार्जिन जो हैं बाकी 2-3 सीट पे, उसमें इसका बड़ा असर हो सकता है। दूसरा, कैंपेनिंग में भी बहुत दिक्कत हुई, हमारे लोगों को हर जगह जाने नहीं दिया गया, रोका गया, तो उस कारण से हो सकता है कि जो छोटे छोटे मार्जिन्स की जो 2-3 सीटों पे हम लोग हारे हैं, ये जीत में भी तब्दील हो सकते थे।
0: On to other stories that we're tracking from the state of West Bengal, the TMC split has triggered a direct fight over the party's name, symbol and organizational control, with the Election Commission freezing the original identity for the upcoming by-polls. Mamata Banerjee has challenged the Election Commission order in the Supreme Court after the poll panel froze the original TMC name and flowers and grass symbol for the upcoming by-polls. The BJP says that the Election Commission acted within its rule while dealing with the rival claims over the TMC name and symbol. Rahul Gandhi has pointed to the TMC dispute alongside earlier Shiv Sena and NCP split. Rahul has described the TMC episode as a part of what he calls a wider pattern of vote theft, government theft and the party theft as well. Rijiju, meanwhile, has hit back at Rahul by pointing to the origins of both NCP and the TMC as breakaways from the Congress party.
5: দেখুন, এগুলো নিয়ে কথা হবে না, ইলেকশন কমিশনের সিদ্ধান্ত ইলেকশন কমিশন তার নিয়ম মেনে সব পক্ষের কথা শুনে করেছে। উনি উনারা দলকে একদিন রাখতে পারেননি, দলের মধ্যে কি 2-3-4 হয়েছে তার দায় দায়িত্ব তো ওনার, এটা আমাদের কোনো সরাসরি বিজেপির রোল নেই। তবে আমি বলি, একটা কথা বলি, আমি নির্বাচনের দিন, গণনার দিন রাত্রে হলদিয়াতে মিডনাইটে বলেছিলাম, আর যেই থাকুক এরা থাকবে না। তার কারণটা হচ্ছে, অতি দর্পে হত লঙ্কা, অতি মানে চ।
6: कई दिनों से कांग्रेस टॉप लीडरशिप के साथ हमारा लीडर ममता बनर्जी को बातचीत कम्युनिकेशन हो रहे थे, लेकिन ये जो अभी तो ये जो डिसीशन है, वो पॉलिटिकल डिसीशन है। ये सामने पूरा देश में एंटी भाजपा जो यूनिटी का बात हम लोग कर रहे हैं, सेकुलर फोर्स का, डेमोक्रेटिक फोर्स का, प्रोग्रेसिव फोर्स का, तो इसीलिए नंदीग्राम कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए हमारा पार्टी डिसीजन लिए हुए है। आज ममता दीदी ने ये अनाउंस कर दिया।
7: In yet another attempt to defame the Election Commission of India and attack the Bharatiya Janata Party, Rahul Gandhi ends up exposing the sordid history of the Indian National Congress. Is it not true that in the year 1980, the then Congress government, misusing Article 356, dismissed 9 state governments? Why is it that Rahul Gandhi

0: He insists on attacking the Election Commission, which is hailed the world over as the harbinger of not only democracy, but also a commission that has used modern technology to ensure that every vote counts.
1: कांग्रेस पार्टी हमेशा मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर में डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहता है
2: जी।
1: चुनाव आयोग को जल्दी से जल्दी जो सिद्धांत लेना था वो नहीं लिया और उसका कारण जो आज ये डेमोक्रेसी में क्राइसिस क्रिएट हुआ है। आज कोई सिंबल में कोई जीत जाता है उसका बाद उन्होंने दूसरी पार्टी में जाके काम करता है। ये एक ऐसा एनार्की इनसाइड द डेमोक्रेसी व्हिच इज वेरी डिट्रीमेंटल इन आवर सोसाइटी इन आवर कंट्री।
3: ममता बनर्जी का तृणमूल तो कोई खेला लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं किया। करोड़ों लोगों को धोखा दिया था मेसी को लाकर, एक झलक मेसी को देख नहीं पाए। खेला हो बे खून को लेकर खेला किया। तो फुटबॉल का प्रतीक मत लगाइए ममता बनर्जी, खून का प्रतीक लगाइए। 15 साल तो खून किया है अपना सरकार, आपका सरकार खून हुआ है, उसका विचार नहीं किया है, खून किया है सत्ता के लिए। तो फुटबॉल मत लगाइए। फुटबॉल तो स्वामी विवेकानंद बोले थे कि भगवान के पास अगर जल्दी पहुंचना है तो खेलो, फुटबॉल खेलो। फुटबॉल मत लगाइए, आपका शोभा नहीं देता है, खून का प्रतीक लगाइए।
4: देखिए ऐसा करते करते चुनाव पार हो जाएगा, ना कैंडिडेट दे पाएंगे ना लड़ पाएंगे। अब किसी का भी अधिकार है कोर्ट में जाने का, वो जाके देखे।
5: Moving on to other stories that we are tracking from the state of Maharashtra, and this is in regard with a second year IIT Bombay student that has died by suicide in what is now the third such reported case on the Powai campus in 7 months. The student identified as Sahil Wakode from the Department of Energy Science and Engineering was allegedly caught using a mobile phone during an exam. The IIT Bombay University now says that he had uploaded the question paper on ChatGPT to seek answers, but no disciplinary action had been initiated. The institute says the student was counseled and assured the incident would not affect his academic career. However, the students protesting on the campus are alleging a different sequence of events, including claims that he was removed from the exam. They were demanding an inquiry into the action taken against Sahil and have also sought the resignation of the Dean of Administrative Affairs in the university. We have a couple of reactions coming in on that big story.
6: आज हमारा ये प्रोटेस्ट के कारण है कि आज हमारा कॉलेज में सुसाइड हुआ था, तो इसीलिए हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी और आंसरेबल होने के लिए हम आज प्रोटेस्ट के लिए आया था। और अभी ये पहली नहीं है, यही साल में 4 हो गया और 2 महीने में 2 हो गया, तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा है क्यों हो रहा है, क्या रीजन है सब कुछ। हमारा डीन डायरेक्टर सब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है उसको हमको बस ये रिपोर्ट दे दो कि हम जानकारी लेंगे, हम वी विल बी आंसरेबल टू दैट, अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंसी सब हम लेंगे और इससे आगे कुछ ऐसे नहीं होगा हमारी तरफ से।
7: IIT पवई में एक स्टूडेंट ने सुसाइड की थी, उसके बाद IIT के कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए और उनकी मांगों के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। इसमें IIT एडमिनिस्ट्रेशन उनसे चर्चा करके कुछ अमिकेबल सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे पुलिस का भी एक प्रॉपर बंदोबस्त रखा गया है।
5: A major NDTV impact in Bengaluru has taken place. Our report on the city's pothole mess has prompted action from the Karnataka government. Following our coverage, authorities have ordered repairs of potholes and identified black spots as well, while also planning an alternate route to ease the traffic. The government has also directed officials to put safety measures in place as road repair work begins. The action comes after NDTV highlighted the dangerous state of Bengaluru's roads and questioned why key stretches remain in such poor condition.
8: ಕೇಳಿ

0: The 20th Asian Games are officially underway in Aichi, Nagoya in Japan. For the next 16 days, this is where India's sporting dreams will play out.
1: We are in the happy hunting ground with the athlete I am sitting with right now, PV Sindhu.
2: 32 years and no medal. Can India's weightlifting contingent give us that elusive medal?
3: Gold rush on the field.
1: Go for it.
0: Hello and welcome. You're watching NDTV. Before we get to the big stories of the day, here's a quick check of the headlines that we're tracking. Delhi University Students' Union elections have been declared after the completion of 20 rounds of vote counting. The AVVP won 3 of 4 central posts, President, Secretary and the Joint Secretary as well. AVVP wins 3 posts. Independent Dipanshu Shokin creates history by securing the post of the VP in the Delhi University Students' elections. Bengal by polls see a fresh twist as Mamata Banerjee's Rejinagar candidate Raibul Alam takes a U-turn after announcing his withdrawal. Raibul now says that he will contest the by poll. Mamata's Nandigram candidate withdrew nomination and Congress's Milan Pradhan was arrested. It's a big NDTV impact in Bengaluru after NDTV reported on crumbling infrastructure on Bengaluru's Varthur-Gunjur Road. Commissioner has now ordered for urgent road repairs to ensure the safety of school children and public. From Mirabai Chanu to Preeti, India's Commonwealth Games stars head to Japan for Asian Games with the podium ambitions. Two residents of the Saudi capital saw black smoke and flames from an area near the Riyadh International Airport, while other people in the city reportedly heard explosions. We're starting this edition with the breaking news that's just coming in, and this is a reaction that's coming from the former Union Education Minister Dharmendra Pradhan, who has now hit out at Rahul Gandhi after Delhi University Students' Union elections result were declared. Now Dharmendra Pradhan has slammed Rahul Gandhi, saying it is system versus students narrative that has been set and that students need not need solutions, they need not need theatre. Dharmendra Pradhan has flagged higher education access as well, and he has said that politics for students, not over students, should be the motto. And remember, this reaction of Dharmendra Pradhan has come after AVVP, student wing of the BJP, had swept the Delhi University Students' Union election. And these are not university elections that we're talking about. These are, of course, going to have implications that are going to expand nationally as far as the political forum and further elections are concerned. Moving on to some other stories that we are tracking, and this is regarding the Delhi University Students' Union election, where, like I just said, AVVP has swept the Delhi University Students' Union election. It was the NSUI who had a zero in the election results, and an independent candidate, Dipanshu Shokin, had won the place of a vice president. And all of this, remember, has having national implications. What does the Delhi University Students' Union elections result mean politically? It means that it is going to have a political implication as far as the elections are concerned. And there is a political war of words, of course, which has erupted. But before we get to that, let's first hear in to what the president, the vice president and the NSUI candidate had to say on the Delhi University student election results today.
4: मैं बस यही कहना चाहूंगा, ये जीत समरसता की है, ये जीत देशभक्ति की है, ये जीत संघ शक्ति की है.
5: When we spoke in the morning, you were talking about the varied issues that you would be working upon. Now, what is the plan ahead, roadmap ahead?
4: जो मैंने आपको बताया था वही सेम है. ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद हम कुछ अलग हो जाएंगे. जो हमने काम कहा था, चाहे वो सेफ्टी ऑडिट को हो, चाहे नए हॉस्टल्स का हो, किसी भी तरीके का हो, विद्यार्थी परिषद पहले ही दिन से अपने काम पर जुट जाएगी.
5: Like to add in terms of, you know, how the contest went. There was a lot of neck to neck at one point with the NSUI candidate as well, and at this point NSUI is alleging that it's been rigged by the ABVP.
4: ये सब students का आपने देखा, जो प्यार विद्यार्थी परिषद को मिला और कुछ अन्य candidates को भी मिला, लेकिन NSUI को 4-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने।
6: मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ABVP से पहली कैंडिडेट हूँ मैं, अपने कॉलेज से पहली कैंडिडेट हूँ मैं, अपने एरिया से पहली कैंडिडेट हूँ, पहली लड़की हूँ, तो मुझे उस बात पे बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत थैंकफुल फील हो रहा है।
5: Tell us your age. What is your age? How young you are?
6: 21 years.
5: 21 years, Riya. What is the plan ahead? You're into student politics now.
6: अभी तो हमें अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की चीज़ें देखनी है, जो जो हमें स्टूडेंट्स ने हमसे एक्सपेक्ट किया है वो चीज़ें पूरी करनी है और अपने मैनिफेस्टो का पूरा करना है सबसे।
5: जैसे कि क्या, किन मुद्दों पर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे?
6: सबसे पहले गर्ल सेफ्टी ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद PG सेफ्टीज, PG ऑडिट्स एंड कैंपस सेफ्टी, और बाकी जो जो चीज़ें हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखी है वो हम पूरी पूरी करने की कोशिश करेंगे।
5: क्या कहना चाहेंगी आप टू अदर स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग अस राइट नाउ, व्यूअर्स हु वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स?
6: कभी हार नहीं हारो, क्योंकि मैं अपने कॉलेज इलेक्शंस में प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हारी थी और उसके अगले साल आज मैं सेक्रेटरी की पोस्ट पे जीती हूँ डूसू में। सो कभी अपने आप को डीमोटिवेट मत करना, यू कैन डू दैट।
7: विनोद, इस रिजल्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत भी की, लड़ाई भी लड़ी, लेकिन नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया?
8: देखिए, लड़ाई जो है कैसे लड़ी गई ये महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि डूसू इलेक्शन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर दिल्ली की CM रेखा गुप्ता तक जो है एक स्टार कैंपेनर के तौर पे काम किया है, और पूरे देश के अंदर विद्यार्थियों ने जो है NSUI को बहुत मजबूती से जो है वोट दिया है। मैं सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने NSUI के पैनल को वोट किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि NSUI जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करी है वो उनके लिए लगातार पूरे साल काम करेगी और उनको उन वादों को मनवाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ेगी।
7: आप विनोद ये बोल रहे हैं कि हमने लड़ाई लड़ी, आपने जीतने की कोशिश भी की, आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए। सवाल तो इस बात पे भी खड़ा होता है ना कि फिर राहुल गांधी क्यों नहीं प्रचार करने जाते हैं? जब प्रधानमंत्री प्रचार करने जाते हैं, डूसू इलेक्शन में भी वो जाते हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि राहुल गांधी एक और छात्रों की गूंज कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जेंजी हमारे साथ हैं, अब जो रिजल्ट आए हैं उसमें तो जेंजी ने अपना वोट दे दिया, स्पष्ट कर दिया।
8: देखिए, ये मैंडेट जेंजी का नहीं है। आप देखिए ना कि सारे बिल्कुल बेशक चुनाव जीते हैं, उनका जीत का आंकड़ा देखिए, जीत का नंबर नॉट अ गेम, लड़ाई नंबर की नहीं है। हमें विपक्ष में कितना वोट पड़ा है वो महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी जी की रही प्रचार की बात, तो ये छात्रों का इलेक्शन है, छात्रों का इलेक्शन, छात्र लड़े, देश के प्रधानमंत्री जो है कैंपेन में आ रहे हैं, तो छात्रों का इलेक्शन तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है ना। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को यही डर सता रहा था कि कैसे भी करके जो है चुनाव जीतना है।
0: And with the Delhi University Students Union elections result that are now out, celebrations were there on the campus following a closely watched election. The AVVP won 3 central panel posts, while independent candidate Dipanshu Shaukeen secured the vice presidential post. Dipanshu Shaukeen's victory gives an independent candidate the vice president post in year's DUSU central panel, and Shaukeen's independent campaign ends with a win in one of Delhi University Student Union's key positions. Shaukeen, remember, has credited the younger generation of the voters, saying Gen Z students are more aware and cannot be easily misled. Shaukeen has also said that his focus after the victory would be on doing what he described as honest work for students in a Gen Z coordinate post. He tweeted on X and said, "It's done, bro."
5: पांचों, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जीत पर? आपको NSUI की तरफ से आप खड़े होने वाले थे, पर फिर आपने विड्रॉ कर लिया अपना कैंडिडेचर, क्या हुआ एग्जैक्टली, और अब आप अपनी जीत को कैसे देखते हो?
9: ये जीत छात्र शक्ति की हुई है, स्टूडेंट्स की हुई है। जो भरोसा स्टूडेंट्स ने मुझ पर दिखाया, उनकी एक आप देख सकते हैं इतने बड़े मार्जिन से जीत होना साफ दर्शाता है कि स्टूडेंट्स की पहली पसंद, जेन जी की पहली पसंद दीपांशु शौकीन को उन्होंने माना कि मैं उनके बीच से निकल कर उनकी आवाज़ को मैं उठा रहा हूँ, और स्टूडेंट्स ने जो भरोसा जताया है मैं उस पर खरा उतरूंगा।
5: क्या आप इसे CJP के बाद का एक aftermath इफेक्ट भी देखते हैं कि किस तरीके से वोटिंग पैटर्न्स चेंज हुए हैं डूसू में?
9: स्टूडेंट्स ने प्रूव किया है कि जब जब उनके साथ गलत हुआ है तो वो आवाज़ उठाते हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, और वही उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में करके दिखाया है।
0: Now, the results of the Delhi University Student Union elections have given the BJP leaders fresh ammunition against the Congress party. While the NSUI drew a blank, Kiran Rijiju said that Jhoot Ki Goonj has been demolished completely as Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign came under fire. The ABVP has won 3 of the 4 key DUSU posts, retaining control of the central panel. A Congress-backed NSUI, meanwhile, has failed to win any of the 4 central positions. Reacting to the verdict was also Union Minister Kiran Rijiju and JP Nadda,

0: who mocked Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj campaign, saying Jhoot Ki Goonj has been demolished completely. The result comes amid Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj campaign that is being recently held in Indore in Madhya Pradesh, while Shaukin's independent victory has another dimension to the AVBP-NSUI contest. The election also comes days after the Satyaniketan hostel collapse and amid NSUI allegations of poll rigging and administrative favoritism towards the AVBP.
1: दिल्ली यूनिवर्सिटी में एवीबीपी का इतना प्रचंड जीत ये दिखाता है कि कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी ये छात्रों का गूंज के नाम से जो घूमता है वो वैसे तो ये झूठ का गूंज है क्योंकि युवाओं ने बोल दिया है. अब इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में इतना भारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत दिलाना, मैं एवीबीपी के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं.
2: आज दूसू के परिणाम आए हैं. एवीबीपी ने 4 में से 3 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है. आपको बता दें कि दिल्ली में एवीबीपी की जो शुरुआत थी, जो बीज बोया था, वो जेपी नड्डा जी ने बोया था. हमारे साथ हैं नड्डा जी, आज की जीत पर आप क्या कहेंगे?
3: सबसे पहले तो बीज तो विद्यार्थी परिषद का मेरे से पहले बहुत बो दिया गया था, लेकिन हाँ, राष्ट्रवादी ताकतें आगे बढ़ी हैं और उसमें मुझे भी लंबे समय तक काम करने का मौका मिला है. दिल्ली में भी काम करने का एवीपी में मौका मिला है. लगभग 4.5 साल काम किया है. आज मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ. जिस तरीके से उन्होंने शानदार जीत दर्ज कराई है, ये राष्ट्रवादी ताकतों
2: पर एक तरफ छात्रों की गूंज राहुल गांधी कर रहे हैं और एक यहाँ पर परिणाम है.
4: मैंने अभी सुना है कि एनएसयूआई के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि वहाँ काउंटिंग में और सेंटर्स में भी बहुत धांधली हुई है. उसको देखना पड़ेगा क्योंकि इन छोटे मार्जिन जो हैं बाकी 2-3 सीट पे, उसमें इसका बड़ा असर हो सकता है. दूसरा, कैंपेनिंग में भी बहुत दिक्कत हुई, हमारे लोगों को हर जगह जाने नहीं दिया गया, रोका गया, तो उस कारण से हो सकता है कि जो छोटे छोटे मार्जिन की जो 2-3 सीटों पे हम लोग हारे हैं, ये जीत में भी तब्दील हो सकते थे.
0: On to other stories that we're tracking from the state of West Bengal, the TMC split has triggered a direct fight over the party's name, symbol and organizational control, with the Election Commission freezing the original identity for the upcoming by-polls. Mamata Banerjee has challenged the Election Commission order in the Supreme Court after the poll panel froze the original TMC name and flowers and grass symbol for the upcoming by-polls. The BJP says that the Election Commission acted within its rule while dealing with the rival claims over the TMC name and symbol. Rahul Gandhi has pointed to the TMC dispute alongside earlier Shiv Sena and NCP split. Rahul has described the TMC episode as a part of a what he calls a wider pattern of vote theft, government theft and the party theft as well. Rijiju, meanwhile, has hit back at Rahul by pointing to the origins of both NCP and the TMC as breakaways from the Congress party.
5: দেখুন, এগুলো নিয়ে কিছু হবে না. ইলেকশন কমিশনের সিদ্ধান্ত ইলেকশন কমিশন তার নিয়ম মেনে সব পক্ষের কথা শুনে করেছে. উনি উনার দলকে একদিন রাখতে পারেননি. দলের মধ্যে কি 2-3-4 ভাগ হয়েছে তার দায় দায়িত্ব তো ওনার, এটা আমাদের কোনো সরাসরি বিজেপির রোল নেই. তবে আমি বলি, একটা কথা বলি, আমি নির্বাচনের দিন, গণনার দিন, রাত্রে হলদিয়াতে মিডনাইটে বলেছিলাম, আর যেই থাকুক এরা থাকবেন. তার কারণটা হচ্ছে অতি দর্পে হত লঙ্কা অতি মানে চক.
6: कहीं दिनों से कांग्रेस टॉप लीडरशिप के साथ हमारा लीडर ममता बनर्जी को बातचीत कम्युनिकेशन हो रहे थे, लेकिन ये जो अभी तो ये जो डिसीजन है वो पॉलिटिकल डिसीजन है. ये सामने पूरा देश में एंटी भाजपा जो यूनिटी का बात हम लोग कर रहे हैं, सेकुलर फोर्स का, डेमोक्रेटिक फोर्स का, प्रोग्रेसिव फोर्स का, तो इसीलिए नंदीग्राम कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए हमारा पार्टी डिसीजन लिए हुए है. आज ममता दीदी ने ये अनाउंस कर दिया.
7: In yet another attempt to defame the Election Commission of India and attack the Bharatiya Janata Party, Rahul Gandhi ends up exposing the sordid history of the Indian National Congress. Is it not true that in the year 1980, the then Congress government, misusing Article 356, dismissed 9 state governments? Why is it that Rahul Gandhi insists on attacking the Election Commission, which is hailed the world over as the harbinger of not only democracy but also a commission that has used modern technology to ensure that every vote counts.
8: कांग्रेस पार्टी हमेशा

0: is very detrimental in our society, in our country.
1: ममता बनर्जी का तृणमूल तो कोई खेला लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं किया, करोड़ों लोगों को धोखा दिया था मेसी को लाकर, एक झलक मेसी को देख नहीं पाए। खेला हो बे खून को लेकर खेला किया, तो फुटबॉल का प्रतीक मत लगाइए ममता बनर्जी, खून का प्रतीक लगाइए। 15 साल तो खून किया है अपना सरकार, आपका सरकार खून हुआ है, उसका विचार नहीं किया है, खून किया है सत्ता के लिए, तो फुटबॉल मत लगाइए। फुटबॉल तो स्वामी विवेकानंद बोले थे कि भगवान के पास अगर जल्दी पहुंचना है तो खेलो, फुटबॉल खेलो, फुटबॉल मत लगाइए, आपका शोभा नहीं देता है, खून का प्रतीक लगाइए।
2: देखिए, ऐसा करते करते चुनाव पार हो जाएगा, ना कैंडिडेट दे पाएंगे ना लड़ पाएंगे, अब किसी का भी अधिकार है कोर्ट में जाने का, वो जाके देखे।
3: Moving on to other stories that we are tracking from the state of Maharashtra, and this is in regard with a second year IIT Bombay student that has died by suicide in what is now the third such reported case on the Powai campus in 7 months. The student identified as Sahil Wakode from the Department of Energy Science and Engineering was allegedly caught using a mobile phone during an exam. The IIT Bombay University now says that he had uploaded the question paper on ChatGPT to seek answers, but no disciplinary action had been initiated. The institute says that the student was counseled and assured the incident would not affect his academic career. However, the students protesting on the campus are alleging a different sequence of events, including claims that he was removed from the exam. They were demanding an inquiry into the action taken against Sahil and have also sought the resignation of the Dean of Administrative Affairs in the university. We have a couple of reactions coming in on that big story.
4: आज हमारा ये प्रोटेस्ट के कारण है कि आज हमारा कॉलेज में सुसाइड हुआ था, तो इसीलिए हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और आंसरेबल होने के लिए हम आज प्रोटेस्ट के लिए आया था। और अभी ये पहली नहीं है, यही साल में 4 हो गया और 2 महीने में 2 हो गया, तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है सब कुछ। हमारा डीन, डायरेक्टर साहब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है उसको हमको बस ये रिपोर्ट दे दो कि हम जानकारी लेंगे, हम वी विल बी आंसरेबल टू दैट, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंसी सब हम लेंगे और इससे आगे कुछ ऐसे नहीं होगा हमारी तरफ से।
5: आईआईटी पवई में एक स्टूडेंट ने सुसाइड की थी, उसके बाद आईआईटी के कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए और उनकी मांगों के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। इसमें आईआईटी एडमिनिस्ट्रेशन उनसे चर्चा करके कुछ अमिकेबल सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे पुलिस का भी एक प्रॉपर बंदोबस्त रखा गया है।
3: A major NDTV impact in Bengaluru has taken place. Our report on the city's pothole mess has prompted action from the Karnataka government. Following our coverage, authorities have ordered repairs of potholes and identified black spots as well, while also planning an alternate route to ease the traffic. The government has also directed officials to put safety measures in place as road repair work begins. The action comes after NDTV highlighted the dangerous state of Bengaluru's roads and questioned why key stretches remain in such poor condition.
6: इतनी परेशानी होती है कि कहीं कभी भी जाने के लिए 1.5 घंटे कम से कम लगता है, 1.5 से 2 घंटे। अभी मैं फ्लाइट मेरी छूट गई थी एक दिन, मैं इधर से जाने का कोई रास्ता ही नहीं है और ना तो इसका मेंटेनेंस हो रहा है, कुछ भी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं लोग, बहुत परेशानी है।
7: अभी देखिए सर, आप यहाँ पर पैच वर्क शुरू,
6: ये पैच वर्क से क्या होगा, हाँ ये तो आपने करा तब जाके हुआ है, लेकिन यहाँ हम लोग बहुत बहुत परेशान हैं। कभी भी हमारा माने कभी ट्रेन छूट जाएगा, कभी वो छूट जाएगा, यहाँ 2 घंटे पहले चलेंगे तब भी प्रॉब्लम हो जाता है।
8: यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है मैम, क्योंकि अभी डे बिफोर यस्टरडे बच्चे, स्कूल के बच्चे, मतलब मेरी खुद की बेटी 2 आवर्स सिर्फ

0: कि क्या किन मुद्दों पर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे?
1: सबसे पहले गर्ल सेफ्टी ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद पीजी सेफ्टी, पीजी ऑडिट्स एंड कैंपस सेफ्टी, और बाकी जो जो चीज़ें हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखी है वो हम पूरी पूरी करने की कोशिश करेंगे।
0: क्या कहना चाहेंगी आप टू अदर स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग अस राइट नाउ, व्यूअर्स हु वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स?
1: कभी हार नहीं हारो, क्योंकि मैं अपने कॉलेज इलेक्शंस में प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हारी थी और उसके अगले साल आज मैं सेक्रेटरी की पोस्ट पे जीती हूँ डूसू में। सो कभी अपने आप को डीमोटिवेट मत करना, यू कैन डू दैट।
2: विनोद, इस रिजल्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत भी की, लड़ाई भी लड़ी, लेकिन नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया?
3: देखिए, लड़ाई जो है कैसे लड़ी गई ये महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि डूसू इलेक्शन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता तक जो है एक स्टार कैंपेनर के तौर पे काम किया है, और पूरे देश के अंदर विद्यार्थियों ने जो है एनएसयूआई को बहुत मजबूती से जो है वोट दिया है। मैं सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने एनएसयूआई के पैनल को वोट किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि एनएसयूआई जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करी है वो उनके लिए लगातार पूरे साल काम करेगी और उनको उन वादों को मनवाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ेगी।
2: आप विनोद ये बोल रहे हैं कि हमने लड़ाई लड़ी, आपने जीतने की कोशिश भी की, आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए। सवाल तो इस बात पे भी खड़ा होता है ना कि फिर राहुल गांधी क्यों नहीं प्रचार करने जाते हैं? जब प्रधानमंत्री प्रचार करने जाते हैं, डूसू इलेक्शन में भी वो जाते हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि राहुल गांधी एक और छात्रों की गूंज कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जेंजी हमारे साथ हैं, अब जो रिजल्ट आए हैं उसमें तो जेंजी ने अपना वोट दे दिया, स्पष्ट कर दिया।
3: देखिए, ये मैंडेट जेंजी का नहीं है। आप देखिए ना कि सारे बिल्कुल बेशक चुनाव जीते हैं, उनका जीत का आंकड़ा देखिए, जीत का नंबर नॉट अ गेम, लड़ाई नंबर की नहीं है। हमें विपक्ष में कितना वोट पड़ा है वो महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी जी की रही प्रचार की बात, तो ये छात्रों का इलेक्शन है, छात्रों का इलेक्शन, छात्र लड़े, देश के प्रधानमंत्री जो है कैंपेन में आ रहे हैं, तो छात्रों का इलेक्शन तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है ना। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को यही डर सता रहा था कि कैसे भी करके जो है चुनाव जीतना है।
4: And with the Delhi University Students Union elections result that are now out, celebrations were there on the campus following a closely watched election. The AVVP won 3 central panel posts, while independent candidate Dipanshu Shaukeen secured the vice presidential post. Dipanshu Shaukeen's victory gives an independent candidate the vice president post in year's DUSU central panel, and Shaukeen's independent campaign ends with a win in one of Delhi University Student Union's key positions. Shaukeen, remember, has credited the younger generation of the voters, saying Gen Z students are more aware and cannot be easily misled. Shaukeen has also said that this victory, that his focus after the victory would be on doing what he described as honest work for students in a Gen Z coordinate post. He tweeted on X and said, "It's done, bro."
0: पांचों, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जीत पर? आपको एनएसयूआई की तरफ से आप खड़े होने वाले थे, पर फिर आपने विड्रॉ कर लिया अपना कैंडिडेचर, क्या हुआ एग्जैक्टली, और अब आप अपनी जीत को कैसे देखते हो?
5: ये जीत छात्र शक्ति की हुई है, स्टूडेंट्स की हुई है। जो भरोसा स्टूडेंट्स ने मुझ पर दिखाया, उनकी एक आप देख सकते हैं इतने बड़े मार्जिन से जीत होना साफ दर्शाता है कि स्टूडेंट्स की पहली पसंद, जेन जी की पहली पसंद दीपांशु शौकीन को उन्होंने माना कि मैं उनके बीच से निकल कर उनकी आवाज़ को मैं उठा रहा हूँ, और स्टूडेंट्स ने जो भरोसा जताया है मैं उस पर खरा उतरूंगा।
0: क्या आप इससे सीजेपी के बाद का एक आफ्टरमाथ इफेक्ट भी देखते हैं कि किस तरीके से वोटिंग पैटर्न्स चेंज हुए हैं डूसू में?
5: स्टूडेंट्स ने प्रूव किया है कि जब जब उनके साथ गलत हुआ है तो वो आवाज़ उठाते हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, और वही उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में करके दिखाया है।
4: Now the results of the Delhi University Student Union elections have given the BJP leaders fresh ammunition against the Congress party. While the NSUI drew a blank, Kiran Rijiju said that Jhoot Ki Goonj has been demolished completely as Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign came under fire. The ABVP has won 3 of the 4 key DUSU posts, retaining control of the central panel. A Congress-backed NSUI, meanwhile, has failed to win any of the 4 central positions. Reacting to the verdict was also Union Minister Kiran Rijiju and JP Nadda, who mocked Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign, saying Jhoot Ki Goonj has been demolished completely. The result comes amid Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign that is being recently held in Indore in Madhya Pradesh, while Shaukeen's independent victory has another dimension to the AVVP-NSUI contest. The election also comes days after the Satyaniketan hostel collapse and amid NSUI allegations of poll rigging and administrative favoritism towards the AVVP.
6: दिल्ली यूनिवर्सिटी में

0: एवीबीपी का इतना प्रचंड जीत ये दिखाता है कि कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी ये छात्रों का गूंज के नाम से जो घूमता है वो वैसे तो ये झूठ का गूंज है, क्योंकि युवाओं ने बोल दिया है। अब इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में इतना भारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत दिलाना, मैं एवीबीपी के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं।
1: आज दूसू के परिणाम आए हैं, एबीवीपी ने 4 में से 3 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है। आपको बता दें कि दिल्ली में एबीवीपी की जो शुरुआत थी, जो बीज बोया था, वो जेपी नड्डा जी ने बोया था। हमारे साथ हैं नड्डा जी, आज की जीत पर आप क्या कहेंगे?
2: सबसे पहले तो बीज तो विद्यार्थी परिषद का मेरे से पहले बहुत बो दिया गया था, लेकिन हाँ, राष्ट्रवादी ताकतें आगे बढ़ी हैं और उसमें मुझे भी लंबे समय तक काम करने का मौका मिला है। दिल्ली में भी काम करने का एबीपी में मौका मिला है, लगभग 4.5 साल काम किया है। आज मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने शानदार जीत दर्ज कराई है, ये राष्ट्रवादी ताकतों
1: पर एक तरफ छात्रों की गूंज राहुल गांधी कर रहे हैं और एक यहाँ पर परिणाम है,
2: वहाँ की गूंज तो सुनाई ही नहीं, लेकिन ये धमाका सबने सुना।
3: मैंने अभी सुना है कि एनएसयूआई के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि वहाँ काउंटिंग में और सेंटर्स में भी बहुत धांधली हुई है, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन छोटे मार्जिन जो हैं बाकी 2-3 सीट पे उसमें इसका बड़ा असर हो सकता है। दूसरा, कैंपेनिंग में भी बहुत दिक्कत हुई, हमारे लोगों को हर जगह जाने नहीं दिया गया, रोका गया, तो उस कारण से हो सकता है कि जो छोटे छोटे मार्जिन की जो 2-3 सीटों पर हम लोग हारे हैं ये जीत में भी तब्दील हो सकते थे।
4: On to other stories that we're tracking from the state of West Bengal, the TMC split has triggered a direct fight over the party's name, symbol and organizational control, with the election commission freezing the original identity for the upcoming by-polls. Mamata Banerjee has challenged the election commission order in the Supreme Court after the poll panel froze the original TMC name and flowers and grass symbol for the upcoming by-polls. The BJP says that the election commission acted within its rule while dealing with the rival claims over the TMC name and symbol. Rahul Gandhi has pointed to the TMC dispute alongside earlier Shiv Sena and NCP split. Rahul has described the TMC episode as a part of what he calls a wider pattern of vote theft, government theft and the party theft as well. Richardu meanwhile has hit back at Rahul by pointing to the origins of both NCP and the TMC as breakaways from the Congress party.
5: দেখুন, এগুলো নিয়ে কিছু হবে না, ইলেকশন কমিশনের সিদ্ধান্ত, ইলেকশন কমিশন তার নিয়ম মেনে সব পক্ষের কথা শুনে করেছে। উনি উনার দলকে একদিন রাখতে পারেননি, দলের মধ্যে কি 2-3-4 হয়েছে তার দায় দায়িত্ব তো ওনার, এরা আমাদের কোনো সরাসরি বিজেপির রোল নেই। তবে আমি বলি, একটা কথা বলি, আমি নির্বাচনের দিন, গণনার দিন রাত্রে হলদিয়াতে মিডনাইটে বলেছিলাম, আর যেই থাকুক এরা থাকবেন। তার কারণটা হচ্ছে, অতি দর্পে হত লঙ্কা, অতি মানে চক।
6: कई दिनों से कांग्रेस टॉप लीडरशिप के साथ हमारा लीडर ममता बनर्जी को बातचीत कम्युनिकेशन हो रहे थे, लेकिन ये जो अभी तो ये जो डिसीशन है वो पॉलिटिकल डिसीशन है। ये सामने पूरा देश में एंटी भाजपा जो यूनिटी का बात हम लोग कर रहे हैं, सेकुलर फोर्स का, डेमोक्रेटिक फोर्स का, प्रोग्रेसिव फोर्स का, तो इसीलिए नंदीग्राम कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए हमारा पार्टी डिसीजन लिए हुए है। आज ममता दीदी ने ये अनाउंस कर दिया।
7: In yet another attempt to defame the Election Commission of India and attack the Bharatiya Janata Party, Rahul Gandhi ends up exposing the sordid history of the Indian National Congress. Is it not true that in the year 1980, the then Congress government, misusing Article 356, dismissed 9 state governments? Why is it that Rahul Gandhi insists on attacking the Election Commission, which is hailed the world over as the harbinger of not only democracy, but also a commission that has used modern technology to ensure that every vote counts?
8: कांग्रेस पार्टी हमेशा मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर में डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहता है। चुनाव आयोग को जल्दी से जल्दी जो सिद्धांत लेना था वो नहीं लिया, और उसका कारण जो आज ये डेमोक्रेसी में क्राइसिस क्रिएट हुआ है, आज कोई सिंबल में कोई जीत जाता है, उसका बाद

0: उन्हें दूसरी पार्टी में जाके काम करता है। ये एक ऐसा एनर्की इनसाइड द डेमोक्रेसी व्हिच इज वेरी डिट्रीमेंटल इन आवर सोसाइटी इन आवर कंट्री।
1: ममता बनर्जी का तृणमूल तो कोई खेला लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं किया, करोड़ों लोगों को धोखा दिया था मेसी को लाकर, एक झलक मेसी को देख नहीं पाए। खेला हो बे खून को लेकर खेला किया, तो फुटबॉल का प्रतीक मत लगाइए ममता बनर्जी, खून का प्रतीक लगाइए। 15 साल तो खून किया है अपना सरकार, आपका सरकार खून हुआ है, उसका विचार नहीं किया है, खून किया है सत्ता के लिए, तो फुटबॉल मत लगाइए। फुटबॉल तो स्वामी विवेकानंद बोले थे कि भगवान के पास अगर जल्दी पहुंचना है तो खेलो फुटबॉल मत लगाइए, आपका शोभा नहीं देता है, खून का प्रतीक लगाइए।
2: देखिए ऐसा करते करते चुनाव पार हो जाएगा, ना कैंडिडेट दे पाएंगे ना लड़ पाएंगे, अब किसी का भी अधिकार है कोर्ट में जाने का, वो जाके देखे।
3: Moving on to other stories that we are tracking from the state of Maharashtra, and this is in regard with a second year IIT Bombay student that has died by suicide in what is now the third such reported case on the Powai campus in 7 months. The student identified as Sahil Wakode from the Department of Energy Science and Engineering was allegedly caught using a mobile phone during an exam. The IIT Bombay University now says that he had uploaded the question paper on ChatGPT to seek answers, but no disciplinary action had been initiated. The institute says the student was counseled and assured the incident would not affect his academic career. However, the students protesting on the campus are alleging a different sequence of events, including claims that he was removed from the exam. They were demanding an inquiry into the action taken against Sahil and have also sought the resignation of the Dean of Administrative Affairs in the university. We have a couple of reactions coming in on that big story.
4: आज हमारा ये प्रोटेस्ट के कारण है कि आज हमारा कॉलेज में सुसाइड हुआ था, तो इसीलिए हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी और आंसरेबल होने के लिए हम आज प्रोटेस्ट के लिए आया था। और अभी ये पहली नहीं है, यही साल में 4 हो गया और 2 महीने में 2 हो गया, तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा है क्यों हो रहा है, क्या रीजन है सब कुछ। हमारा डीन डायरेक्टर सब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है उसको हमको बस ये रिपोर्ट दे दो कि हम जानकारी लेंगे, हम वी विल बी आंसरबल टू दैट, अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंसी सब हम लेंगे और इससे आगे कुछ ऐसे नहीं होगा हमारी तरफ से।
5: IIT पवई में एक स्टूडेंट ने सुसाइड की थी, उसके बाद IIT के कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए और उनकी मांगों के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। इसमें IIT एडमिनिस्ट्रेशन उनसे चर्चा करके कुछ अमिकेबल सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे पुलिस का भी एक प्रॉपर बंदोबस्त रखा गया है।
3: A major NDTV impact in Bengaluru has taken place. Our report on the city's pothole mess has prompted action from the Karnataka government. Following our coverage, authorities have ordered repairs of potholes and identified black spots as well, while also planning an alternate route to ease the traffic. The government has also directed officials to put safety measures in place as road repair work begins. The action comes after NDTV highlighted the dangerous state of Bengaluru's roads and questioned why key stretches remain in such poor condition.
6: इतनी परेशानी होती है कि कहीं भी जाने के लिए 1.5 घंटे कम से कम लगता है, 1.5 से 2 घंटे। अभी मैं फ्लाइट मेरी छूट गई थी एक दिन, मैं इधर से जाने का कोई रास्ता ही नहीं है और ना तो इसका मेंटेनेंस हो रहा है, कुछ भी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं लोग, बहुत परेशानी है।
7: बट अभी देखिए सर, आप यहाँ पर पैच वर्क शुरू,
6: ये पैच वर्क से क्या होगा मैडम, हाँ ये तो आपने करा तब जाके हुआ है, लेकिन यहाँ हम लोग बहुत बहुत परेशान हैं। कभी भी हमारा माने कभी ट्रेन छूट जाएगा, कभी वो छूट जाएगा, यहाँ 2 घंटे पहले चलेंगे तब भी प्रॉब्लम हो जाता है।
8: यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है मैम, क्योंकि

0: Hello and welcome. You're watching NDTV. Before we get to the big stories of the day, here's a quick check of the headlines that we're tracking. Delhi University Students' Union elections have been declared after the completion of 20 rounds of vote counting. The AVVP won 3 of 4 central posts, president, secretary and the joint secretary as well. AVVP wins 3 posts. Independent Dipanshu Shokin creates history by securing the post of the VP in the Delhi University students' elections. Bengal bipolar see a fresh twist as Mamata Banerjee's Rajinagar candidate Raibul Alam takes a U-turn after announcing his withdrawal. Raibul now says that he will contest the bipolar. Mamata's Nandigram candidate withdrew nomination and Congress's Milan Pradhan was arrested. It's a big NDTV impact in Bengaluru after NDTV reported on crumbling infrastructure on Bengaluru's Varthur-Gunjur Road. Commissioner has now ordered for urgent road repairs to ensure the safety of school children and public. From Mirabai Chanu to Preeti, India's Commonwealth Games stars head to Japan for Asian Games with the podium ambitions. Two residents of the Saudi capital saw black smoke and flames from an area near the Riyadh International Airport, while other people in the city reportedly heard explosions. We're starting this edition with the breaking news that's just coming in, and this is a reaction that's coming from the former Union Education Minister Dharmendra Pradhan, who has now hit out at Rahul Gandhi after Delhi University Students Union elections result were declared. Now Dharmendra Pradhan has slammed Rahul Gandhi, saying it is system versus students narrative that has been set and that students need not need solutions, they need not need theatre. Dharmendra Pradhan has flagged higher education access as well, and he has said that politics for students, not over students, should be the motto. And remember, this reaction of Dharmendra Pradhan has come after AVVP, student wing of the BJP, had swept the Delhi University Students Union election. And these are not university elections that we're talking about. These are, of course, going to have implications that are going to expand nationally as far as the political forum and further elections are concerned. Moving on to some other stories that we are tracking, and this is regarding the Delhi University Students Union election, where, like I just said, AVVP has swept the Delhi University Students Union election. It was the NSUI who had a zero in the election results, and an independent candidate, Dipanshu Shokin, had won the place of a vice president. And all of this, remember, has having national implications. So what does the Delhi University Students Union elections result mean politically? It means that it is going to have a political implication as far as the elections are concerned. And there is a political war of words, of course, which has erupted. But before we get to that, let's first hear to what the president, the vice president and the NSUI candidate had to say on the Delhi University student election results today.
1: मैं बस यही कहना चाहूंगा, ये जीत समरसता की है, ये जीत देशभक्ति की है, ये जीत संघ शक्ति की है.
2: When we spoke in the morning, you were talking about the varied issues that you would be working upon. Now what is the plan ahead, roadmap ahead?
1: जो मैंने आपको बताया था वही सेम है. ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद हम कुछ अलग हो जाएंगे. जो हमने काम कहा था, चाहे वो सेफ्टी ऑडिट को हो, चाहे नए हॉस्टल्स का हो, किसी भी तरीके का हो, विद्यार्थी परिषद पहले ही दिन से अपने काम पर जुट जाएगी.
2: Like to add in terms of, you know, how the contest went, there was a lot of neck to neck at one point with the NSUI candidate as well, and at this point NSUI is alleging that it's been rigged by the ABVP.
1: ये सब स्टूडेंट्स का आपने देखा, जो प्यार विद्यार्थी परिषद को मिला और कुछ अन्य कैंडिडेट्स को भी मिला, लेकिन एनएसयूआई को 4-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने.
3: मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. एबीवीपी से पहली कैंडिडेट हूँ मैं, अपने कॉलेज से पहली कैंडिडेट हूँ मैं, अपने एरिया से पहली कैंडिडेट हूँ, पहली लड़की हूँ, तो मुझे उस बात पे बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत थैंकफुल फील हो रहा है.
2: Tell us your age. What is your age? How young you are?
3: 21 years.
2: 21 years, Riya. What is the plan ahead? You're into student politics now.
3: अभी तो हमें अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की चीज़ें देखनी है, जो जो हमें स्टूडेंट्स ने हमसे एक्सपेक्ट किया है वो चीज़ें पूरी करनी है, अपने मैनिफेस्टो का पूरा करना है सबसे।
2: जैसे कि क्या, किन मुद्दों पर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे?
3: सबसे पहले गर्ल सेफ्टी ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद पीजी सेफ्टी, पीजी ऑडिट्स एंड कैंपस सेफ्टी, और बाकी जो जो चीज़ें हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखी है वो हम पूरी पूरी करने की कोशिश करेंगे।
2: क्या कहना चाहेंगी आप टू अदर स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग अस राइट नाउ, व्यूअर्स हु वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स?
3: कभी हार नहीं हारो, क्योंकि मैं अपने कॉलेज इलेक्शंस में प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हारी थी और उसके अगले साल आज मैं सेक्रेटरी की पोस्ट पे जीती हूँ डूसू में। सो कभी अपने आप को डीमोटिवेट मत करना, यू कैन डू दैट।
4: विनोद, इस रिजल्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत भी की, लड़ाई भी लड़ी, लेकिन नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया?
5: देखिए, लड़ाई जो है कैसे लड़ी गई ये महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि डूसू इलेक्शन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता तक जो है एक स्टार कैंपेनर के तौर पे काम किया है, और पूरे देश के अंदर विद्यार्थियों ने जो है एनएसयूआई को बहुत मजबूती से जो है वोट दिया है। मैं सबसे पहले जन विद्यार्थियों ने एनएसयूआई के पैनल को वोट किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि एनएसयूआई जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करी है वो उनके लिए लगातार पूरे साल काम करेगी और उनको उन वादों को मनवाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ेगी।
4: आप विनोद ये बोल रहे हैं कि हमने लड़ाई लड़ी, आपने जीतने की कोशिश भी की, आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए। सवाल तो इस बात पे भी खड़ा होता है ना कि फिर राहुल गांधी क्यों नहीं प्रचार करने जाते हैं? जब प्रधानमंत्री प्रचार करने जाते हैं, डूसू इलेक्शन में भी वो जाते हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि राहुल गांधी एक और छात्रों की गूंज कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जेंजी हमारे साथ हैं, अब जो रिजल्ट आए हैं उसमें तो जेंजी ने अपना वोट दे दिया, स्पष्ट कर दिया।
5: देखिए, ये मैंडेट जेंजी का नहीं है। आप देखिए ना कि सारे बिल्कुल बेशक चुनाव जीते हैं, उनका जीत का आंकड़ा देखिए, जीत का नंबर नॉट अ गेम, लड़ाई नंबर की नहीं है। हमें विपक्ष में कितना वोट पड़ा है वो महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी जी की रही प्रचार की बात, तो ये छात्रों का इलेक्शन है, छात्रों का इलेक्शन, छात्र लड़े, देश के प्रधानमंत्री जो है कैंपेन में आ रहे हैं, तो छात्रों का इलेक्शन तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है ना। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को यही डर सता रहा था कि कैसे भी करके जो है चुनाव जीतना है।
0: And were the Delhi University Students Union elections results that are now out? Celebrations were there on the campus following a closely watched election. The AVVP won three central panel posts, while independent candidate Dipanshu Shaukeen secured the vice presidential post. Dipanshu Shaukeen's victory gives an independent candidate the vice president post in year's DUSU central panel, and Shaukeen's independent campaign ends with a win in one of Delhi University Student Union's key positions. Shaukeen, remember, has credited the younger generation of the voters, saying Gen Z students are more aware and cannot be easily misled. Shaukeen has also said that his focus after the victory would be on doing what he described as honest work for students in a Gen Z coordinate post. He tweeted on X and said, "It's done, bro."
2: पांचो, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जीत पर? आपको एनएसयूआई की तरफ से आप खड़े होने वाले थे, पर फिर आपने विड्रॉ कर लिया अपना कैंडिडेचर, क्या हुआ एग्जैक्टली, और अब आप अपनी जीत को कैसे देखते हो?
6: ये जीत छात्र शक्ति की हुई है, स्टूडेंट्स की हुई है, जो भरोसा स्टूडेंट्स ने मुझ पर दिखाया उनकी एक आप देख सकते हैं, इतने बड़े मार्जिन से जीत होना साफ दर्शाता है कि स्टूडेंट्स की पहली पसंद, जेन जी की पहली पसंद दीपांशु शौकीन को उन्होंने माना कि मैं उनके बीच से निकल कर उनकी आवाज़ को मैं उठा रहा हूँ, और स्टूडेंट्स ने जो भरोसा जताया है मैं उस पर खरा उतरूंगा।
2: क्या आप इससे सीजेपी के बाद का एक आफ्टरमाथ इफेक्ट भी देखते हैं कि किस तरीके से वोटिंग पैटर्न्स चेंज हुए हैं डूसू में?
6: स्टूडेंट्स ने प्रूव किया है कि जब जब उनके साथ गलत हुआ है तो वो आवाज़ उठाते हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, और वही उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में करके दिखाया है।
0: Now the results of the Delhi University Student Union elections have given the BJP leaders fresh ammunition against the Congress party. While the NSUI drew a blank, Kiran Rijiju said that Jhoot Ki Goonj has been demolished completely as Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign came under fire. The ABVP has won three of the four key DUSU posts, retaining control of the central panel. A Congress-backed NSUI, meanwhile, has failed to win any of the four central positions. Reacting to the verdict was also Union Minister Kiran Rijiju and JP नड्डा हु मॉक्ड राहुल गांधी छात्रों की गूंज कैंपेन सेइंग झूठ की गूंज हैज बीन डिमोलिश्ड कंप्लीटली द रिजल्ट कम्स अमिड राहुल गांधी छात्रों की गूंज कैंपेन दैट इज बीइंग रिसेंटली हेल्ड इन इंदौर इन मध्य प्रदेश व्हाइल शॉकिंस इंडिपेंडेंट विक्ट्री एज अनदर डायमेंशन टू द एवीवीपी एनएसयूआई कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑल्सो कम्स days after the Satyaniketan hostel collapse and amid NSUI allegations of poll rigging and administrative favoritism towards the AVVP.
7: Delhi University mein AVVP ka itna prachand jeet ye dikhata hai ki Congress aur opposition party ye chhatron ka goonj ke naam se jo ghumta hai wo वैसे तो ये झूठ का गूंज है क्योंकि युवाओं ने बोल दिया है. अब इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में इतना भारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत दिलाना, मैं एवीबीपी के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं.
8: आज डूसू के परिणाम आए हैं. एवीबीपी ने 4 में से 3 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है. आपको बता दें कि दिल्ली में एवीबीपी की जो शुरुआत थी, जो बीज बोया था, वो जेपी नड्डा जी ने बोया था. हमारे साथ हैं नड्डा जी. आज की जीत पर आप क्या कहेंगे?
9: सबसे पहले तो बीज तो विद्यार्थी परिषद का मेरे से पहले बहुत बो दिया गया था, लेकिन हाँ, राष्ट्रवादी ताकतें आगे बढ़ी हैं और उसमें मुझे भी लंबे समय तक काम करने का मौका मिला है. दिल्ली में भी काम करने का एवीपी में मौका मिला है. लगभग 4.5 साल काम किया है. आज मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ. जिस तरीके से उन्होंने शानदार जीत दर्ज कराई है, ये राष्ट्रवादी ताकतों
8: की, एक तरफ छात्रों की गूंज राहुल गांधी कर रहे हैं और एक यहाँ पर परिणाम है.
9: वहाँ की गूंज तो सुनाई ही नहीं, लेकिन ये धमाका सबने सुना.
10: मैंने अभी सुना है कि एनएसयूआई के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि वहाँ काउंटिंग में और सेंटर्स में भी बहुत धांधली हुई है. उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन छोटे मार्जिन जो हैं बाकी 2-3 सीट पे, उसमें इसका बड़ा असर हो सकता है. दूसरा, कैंपेनिंग में भी बहुत दिक्कत हुई, हमारे लोगों को हर जगह जाने नहीं दिया गया, रोका गया. तो उस कारण से हो सकता है कि जो छोटे छोटे मार्जिन की जो 2-3 सीटों पर हम लोग हारे हैं, ये जीत में भी तब्दील हो सकते थे.
0: Moving on to other stories that we are tracking from the state of West Bengal, the TMC split has triggered a direct fight over the party's name, symbol and organizational control, with the Election Commission freezing the original identity for the upcoming by-polls. Mamata Banerjee has challenged the Election Commission order in the Supreme Court after the poll panel froze the original TMC name and flowers and grass symbol for the upcoming by-polls. The BJP says that the Election Commission acted within its rule while dealing with the rival claims over the TMC name and symbol. Rahul Gandhi has pointed to the TMC dispute alongside earlier Shiv Sena and NCP split. Rahul has described the TMC episode as a part of a what he calls a wider pattern of vote theft, government theft and the party theft as well. Rijiju meanwhile has hit back at Rahul by pointing to the origins of both NCP and the TMC as breakaways from the Congress party.
11: দেখুন, এগুলো নিয়ে কিছু করবে না. ইলেকশন কমিশনের সিদ্ধান্ত ইলেকশন কমিশন, তার নিয়ম মেনে সব পক্ষের কথা শুনে করেছে. উনি উনার দলকে একদিন রাখতে পারেননি. দলের মধ্যে কি দুভাগ তিনভাগ চারভাগ হয়েছে তার দায় দায়িত্ব ওনার, এটা আমাদের কোনো সরাসরি বিজেপির রোল নেই. তবে আমি বলি, একটা কথা বলি, আমি নির্বাচনের দিন, গণনার দিন, রাত্রে হলদিয়াতে মিডনাইটে বলেছিলাম, আর যেই থাকুক এরা থাকবেন. তার কারণটা হচ্ছে অতি দর্পে হত লঙ্কা অতি মানে চক.
12: कहीं दिनों से कांग्रेस टॉप लीडरशिप के साथ हमारा लीडर ममता बनर्जी को बातचीत कम्युनिकेशन हो रहे थे, लेकिन ये जो अभी तो ये जो डिसीजन है वो पॉलिटिकल डिसीजन है. ये सामने पूरा देश में एंटी भाजपा जो यूनिटी का बात हम लोग कर रहे हैं, सेकुलर फोर्स का, डेमोक्रेटिक फोर्स का, प्रोग्रेसिव फोर्स का, तो इसीलिए नंदीग्राम कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए हमारा पार्टी डिसीजन लिए हुए है. आज ममता दीदी ने ये अनाउंस कर दिया.
13: In yet another attempt to defame the Election Commission of India and attack the Bharatiya Janata Party, Rahul Gandhi ends up exposing the sordid history of the Indian National Congress. Is it not true that in the year 1980, the then Congress government, misusing Article 356, dismissed 9 state governments? Why is it that Rahul Gandhi insists on attacking the Election Commission, which is hailed the world over as the harbinger of not only democracy but also a commission that has used modern technology to ensure that every vote counts.
14: कांग्रेस पार्टी हमेशा मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर में डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहता है
15: जी।
14: चुनाव आयोग को जल्दी से जल्दी जो सिद्धांत लेना था वो नहीं लिया और उसका कारण जो आज ये डेमोक्रेसी में क्राइसिस क्रिएट हुआ है। आज कोई सिंबल में कोई जीत जाता है उसका बाद उन्होंने दूसरी पार्टी में जाके काम करता है। ये एक ऐसा एनार्की इनसाइड द डेमोक्रेसी व्हिच इज वेरी डेट्रीमेंटल इन आवर

0: इसका विचार नहीं किया है, खून किया है सत्ता के लिए। तो फुटबॉल मत लगाइए। फुटबॉल तो स्वामी विवेकानंद बोले थे कि भगवान के पास अगर जल्दी पहुंचना है तो खेलो, फुटबॉल खेलो। फुटबॉल मत लगाइए, आपका शोभा नहीं देता है। खून का प्रतीक लगाइए।
1: देखिए, ऐसा करते करते चुनाव पार हो जाएगा, ना कैंडिडेट दे पाएंगे ना लड़ पाएंगे। अब किसी का भी अधिकार है कोर्ट में जाने का, वो जाके देखे।
2: Moving on to other stories that we are tracking from the state of Maharashtra, and this is in regard with a second year IIT Bombay student that has died by suicide in what is now the third such reported case on the Powai campus in 7 months. The student identified as Sahil Wakode from the Department of Energy Science and Engineering was allegedly caught using a mobile phone during an exam. The IIT Bombay University now says that he had uploaded the question paper on ChatGPT to seek answers, but no disciplinary action had been initiated. The institute says that the student was counseled and assured the incident would not affect his academic career. However, the students protesting on the campus are alleging a different sequence of events, including claims that he was removed from the exam. They were demanding an inquiry into the action taken against Sahil and have also sought the resignation of the Dean of Administrative Affairs in the university. We have a couple of reactions coming in on that big story.
3: आज हमारा ये प्रोटेस्ट के कारण है कि आज हमारा कॉलेज में सुसाइड हुआ था, तो इसीलिए हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और आंसरेबल होने के लिए हम आज प्रोटेस्ट के लिए आया था। और अभी ये पहली नहीं है, यही साल में 4 हो गया और 2 महीने में 2 हो गया, तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है सब कुछ। हमारा डीन, डायरेक्टर साहब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है उसको हमको बस ये रिपोर्ट दे दो कि हम जानकारी लेंगे, हम वी विल बी आंसरेबल टू दैट, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंसी सब हम लेंगे और इससे आगे कुछ ऐसे नहीं होगा हमारी तरफ से।
4: IIT पवई में एक स्टूडेंट ने सुसाइड की थी, उसके बाद IIT के कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए और उनकी मांगों के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। इसमें IIT एडमिनिस्ट्रेशन उनसे चर्चा करके कुछ अमिकेबल सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे पुलिस का भी एक प्रॉपर बंदोबस्त रखा गया है।
2: A major NDTV impact in Bengaluru has taken place. Our report on the city's pothole mess has prompted action from the Karnataka government. Following our coverage, authorities have ordered repairs of potholes and identified black spots as well, while also planning an alternate route to ease the traffic. The government has also directed officials to put safety measures in place as road repair work begins. The action comes after NDTV highlighted the dangerous state of Bengaluru's roads and questioned why key stretches remain in such poor condition.
5: इतनी परेशानी होती है कि कहीं कभी भी जाने के लिए 1.5 घंटे कम से कम लगता है, 1.5 से 2 घंटे। अभी मैं फ्लाइट मेरी छूट गई थी एक दिन, मैं इधर से जाने का कोई रास्ता ही नहीं है और ना तो इसका मेंटेनेंस हो रहा है, कुछ भी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं लोग, बहुत परेशानी है।
6: बट अभी देखिए सर, आप यहाँ पर पैच वर्क शुरू हो रहा
5: है, पैच वर्क से क्या होगा मैडम? हाँ, ये तो आपने करा तब जाके हुआ है, लेकिन यहाँ हम लोग बहुत बहुत परेशान हैं। कभी भी हमारा माने कभी ट्रेन छूट जाएगा, कभी वो छूट जाएगा, यहाँ 2 घंटे पहले चलेंगे तब भी प्रॉब्लम हो जाता है।
7: यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है मैम, क्योंकि अभी डे बिफोर यस्टरडे बच्चे, स्कूल के बच्चे, मतलब मेरी खुद की बेटी 2 आवर्स सिर्फ ट्रैफिक में फंसी हुई थी और उसका एग्ज़ाम भी था उस दिन, तो वो उस पैनिक में उसने उसका एग्ज़ाम भी उतना अच्छा हुआ नहीं मेरे ख्याल से। और मैं खुद मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट था और मुझे इतना फीवरिश था, मेरे को पहुँचने के लिए हॉस्पिटल मुझे 2 घंटे लग गए सिर्फ जस्ट शोभा ड्रीम एकर से यहाँ पे, हार्डली 5 से 6 किलोमीटर के लिए। तो मतलब बहुत टेरिबल कंडीशन है यहाँ पे, बहुत प्रॉब्लम है।
6: बट हमने बताया उसके बाद जो है ये काम शुरू हुआ है, तो किस तरीके से आपको क्या लगता है कि हम जब बताते हैं, जब मीडिया बताती है तभी दरअसल

0: कभी अपने आप को डीमोटिवेट मत करना, यू कैन डू दैट।
1: विनोद, इस रिजल्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत भी की, लड़ाई भी लड़ी, लेकिन नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया?
2: देखिए, लड़ाई जो है कैसे लड़ी गई ये महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि डूसू इलेक्शन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता तक जो है एक स्टार कैंपेनर के तौर पे काम किया है, और पूरे देश के अंदर विद्यार्थियों ने जो है एनएसयूआई को बहुत मजबूती से जो है वोट दिया है। मैं सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने एनएसयूआई के पैनल को वोट किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि एनएसयूआई जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करी है वो उनके लिए लगातार पूरे साल काम करेगी और उनको उन वादों को मनवाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ेगी।
1: आप विनोद ये बोल रहे हैं कि हमने लड़ाई लड़ी, आपने जीतने की कोशिश भी की, आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए। सवाल तो इस बात पे भी खड़ा होता है ना कि फिर राहुल गांधी क्यों नहीं प्रचार करने जाते हैं? जब प्रधानमंत्री प्रचार करने जाते हैं, डूसू इलेक्शन में भी वो जाते हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि राहुल गांधी एक और छात्रों की गूंज कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जेंजी हमारे साथ हैं, अब जो रिजल्ट आए हैं उसमें तो जेंजी ने अपना वोट दे दिया, स्पष्ट कर दिया।
2: देखिए, ये मैंडेट जेंजी का नहीं है। आप देखिए ना कि सारे बिल्कुल बेशक चुनाव जीते हैं, उनका जीत का आंकड़ा देखिए, जीत का नंबर नॉट अ गेम, लड़ाई नंबर की नहीं है। हमें विपक्ष में कितना वोट पड़ा है वो महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी जी की रही प्रचार की बात, तो ये छात्रों का इलेक्शन है, छात्रों का इलेक्शन, छात्र लड़े, देश के प्रधानमंत्री जो है कैंपेन में आ रहे हैं, तो छात्रों का इलेक्शन तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है ना। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को यही डर सता रहा था कि कैसे भी करके जो है चुनाव जीतना है।
3: And with the Delhi University Students Union elections result that are now out, celebrations were there on the campus following a closely watched election. The AVVP won 3 central panel posts, while independent candidate Dipanshu Shaukeen secured the vice presidential post. Dipanshu Shaukeen's victory gives an independent candidate the vice president post in year's DUSU central panel, and Shaukeen's independent campaign ends with a win in one of Delhi University Student Union's key positions. Shaukeen, remember, has credited the younger generation of the voters, saying Gen Z students are more aware and cannot be easily misled. Shaukeen has also said that his focus after the victory would be on doing what he described as honest work for students in a Gen Z coordinate post. He tweeted on X and said, "It's done, bro."
4: पांचों, अब क्या करना चाहेंगे अपनी जीत पर? आपको एनएसयूआई की तरफ से आप खड़े होने वाले थे, पर फिर आपने विड्रॉ कर लिया अपना कैंडिडेचर, क्या हुआ एग्जैक्टली, और अब आप अपनी जीत को कैसे देखते हो?
5: ये जीत छात्र शक्ति की हुई है, स्टूडेंट्स की हुई है। जो भरोसा स्टूडेंट्स ने मुझ पर दिखाया, उनकी एक आप देख सकते हैं इतने बड़े मार्जिन से जीत होना साफ दर्शाता है कि स्टूडेंट्स की पहली पसंद, जेन जी की पहली पसंद दीपांशु शौकीन को उन्होंने माना कि मैं उनके बीच से निकल कर उनकी आवाज़ को मैं उठा रहा हूँ, और स्टूडेंट्स ने जो भरोसा जताया है मैं उस पर खरा उतरूंगा।
4: क्या आप इससे CJP के बाद का एक aftermath इफेक्ट भी देखते हैं कि किस तरीके से वोटिंग पैटर्न्स चेंज हुए हैं डूसू में?
5: स्टूडेंट्स ने प्रूव किया है कि जब जब उनके साथ गलत हुआ है तो वो आवाज़ उठाते हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, और वही उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में करके दिखाया है।
3: Now the results of the Delhi University Student Union elections have given the BJP leaders fresh ammunition against the Congress party. While the NSUI drew a blank, Kiran Rijiju said that Jhoot Ki Goonj has been demolished completely as Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign came under fire. The ABVP has won 3 of the 4 key DUSU posts, retaining control of the central panel. A Congress-backed NSUI, meanwhile, has failed to win any of the 4 central positions. Reacting to the verdict was also Union Minister Kiran Rijiju and JP Nadda, who mocked Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign, saying Jhoot Ki Goonj has been demolished completely. The result comes amid Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign that is being recently held in Indore in Madhya Pradesh, while Shaukeen's independent victory has another dimension to the AVVP-NSUI contest. The election also comes days after the Satyaniketan hostel collapse and amid NSUI allegations of poll rigging and administrative favoritism towards the AVVP.
6: दिल्ली यूनिवर्सिटी में AVVP का इतना प्रचंड जीत ये दिखाता है कि कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी ये छात्रों का गूंज के नाम से जो घूमता है वो वैसे तो ये झूठ का गूंज है, क्योंकि युवाओं ने बोल दिया है। अब इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में इतना भारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत दिलाना, मैं एवीबीपी के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं।
7: आज दूसू के परिणाम आए हैं, एबीवीपी ने 4 में से 3 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है। आपको बता दें कि दिल्ली में एबीवीपी की जो शुरुआत थी, जो बीज बोया था, वो जेपी नड्डा जी ने बोया था। हमारे साथ हैं नड्डा जी, आज की जीत पर आप क्या कहेंगे?
8: सबसे पहले तो बीज तो विद्यार्थी परिषद का मेरे से पहले बहुत बो दिया गया था, लेकिन हाँ, राष्ट्रवादी ताकतें आगे बढ़ी हैं और उसमें मुझे भी लंबे समय तक काम करने का मौका मिला है, दिल्ली में भी काम करने का एबीवीपी में मौका मिला है, लगभग 4.5 साल काम किया है। आज मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने शानदार जीत दर्ज कराई है, ये राष्ट्रवादी ताकतों
7: पर एक तरफ छात्रों की गूंज राहुल गांधी कर रहे हैं और एक यहाँ पर परिणाम है,
8: वहाँ की गूंज तो सुनाई ही नहीं, लेकिन ये धमाका सबने सुना।
9: मैंने अभी सुना है कि एनएसयूआई के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि वहाँ काउंटिंग में और सेंटर्स में भी बहुत धांधली हुई है, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन छोटे मार्जिन जो हैं बाकी 2-3 सीट पे, उसमें इसका बड़ा असर हो सकता है। दूसरा, कैंपेनिंग में भी बहुत दिक्कत हुई, हमारे लोगों को हर जगह जाने नहीं दिया गया, रोका गया, तो उस कारण से हो सकता है कि जो छोटे छोटे मार्जिन की जो 2-3 सीटों पर हम लोग हारे हैं, ये जीत में भी तब्दील हो सकते थे।
3: On to other stories, after tracking from the state of West Bengal, the TMC split has triggered a direct fight over the party's name, symbol and organizational control, with the Election Commission freezing the original identity for the upcoming by-polls. Mamata Banerjee has challenged the Election Commission order in the Supreme Court after the poll panel froze the original TMC name and flowers and grass symbol for the upcoming by-polls. The BJP says that the Election Commission acted within its rule while dealing with the rival claims over the TMC name and symbol. Rahul Gandhi has pointed to the TMC dispute alongside earlier Shiv Sena and NCP split. Rahul has described the TMC episode as a part of what he calls a wider pattern of vote theft, government theft and the party theft as well. Rijiju, meanwhile, has hit back at Rahul by pointing to the origins of both NCP and the TMC as breakaways from the Congress party.
10: দেখুন, এগুলো নিয়ে ইলেকশন কমিশনের সিদ্ধান্ত, ইলেকশন কমিশন তার নিয়ম মেনে সব পক্ষের কথা শুনে করেছে। উনি উনারা দলকে একদিন রাখতে পারেননি, দলের মধ্যে কি 2-3-4 হয়েছে তার দায় দায়িত্ব তো ওনার, এটা আমাদের কোনো সরাসরি বিজেপির রোল নেই। তবে আমি বলি, একটা কথা বলি, আমি নির্বাচনের দিন, গণনার দিন রাত্রে হলদিয়াতে মিডনাইটে বলেছিলাম, আর যেই থাকুক এরা থাকবেন। তার কারণটা হচ্ছে, অতি দর্পে হত লঙ্কা, অতি মানে চক।
11: कई दिनों से कांग्रेस टॉप लीडरशिप के साथ हमारा लीडर ममता बनर्जी को बातचीत, कम्युनिकेशन हो रहे थे, लेकिन ये जो अभी तो ये जो डिसीशन है, वो पॉलिटिकल डिसीशन है। ये सामने पूरा देश में एंटी भाजपा जो यूनिटी का बात हम लोग कर रहे हैं, सेकुलर फोर्स का, डेमोक्रेटिक फोर्स का, प्रोग्रेसिव फोर्स का, तो इसीलिए नंदीग्राम कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए हमारा पार्टी डिसीजन लिए हुए है। आज ममता दीदी ने ये अनाउंस कर दिया।
12: In yet another attempt to defame the Election Commission of India and attack the Bharatiya Janata Party, Rahul Gandhi ends up exposing the sordid history of the Indian National Congress. Is it not true that in the year 1980, the then Congress government, misusing Article 356, dismissed 9 state governments? Why is it that Rahul Gandhi insists on attacking the Election Commission, which is hailed the world over as the harbinger of not only democracy, but also a commission that has used modern technology to ensure that every vote counts?
13: कांग्रेस पार्टी हमेशा मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर में डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहता है
14: जी।
13: चुनाव आयोग को जल्दी से जल्दी जो सिद्धांत लेना था वो नहीं लिया, और उसका कारण जो आज ये डेमोक्रेसी में क्राइसिस क्रिएट हुआ है, आज कोई सिंबल में कोई जीत जाता है, उसका बाद उन्होंने दूसरी पार्टी में जाके काम करता है, ये एक ऐसा एनार्की इनसाइड द डेमोक्रेसी व्हिच इज वेरी डिट्रीमेंटल इन आवर सोसाइटी, इन आवर कंट्री।
15: ममता बनर्जी का तृणमूल तो कोई खेला लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं किया, करोड़ों लोगों को धोखा दिया था मेसी को लाकर, एक झलक मेसी को देख नहीं पाए, खेला हो बे खून को लेकर खेला किया, तो फुटबॉल का प्रतीक मत लगाइए ममता बनर्जी, खून का प्रतीक लगाइए। 15 साल तो खून किया है अपना सरकार, आपका सरकार खून हुआ है, उसका विचार नहीं किया है, खून किया है सत्ता के लिए, तो फुटबॉल मत लगाइए। फुटबॉल तो स्वामी विवेकानंद बोले थे कि भगवान के पास अगर जल्दी पहुंचना है तो खेलो, फुटबॉल खेलो, फुटबॉल मत लगाइए, आपका शोभा नहीं देता है, खून का प्रतीक लगाइए।
14: देखिए ऐसा करते करते चुनाव पार हो जाएगा, ना कैंडिडेट दे पाएंगे ना लड़ पाएंगे, अब किसी का भी अधिकार है कोर्ट में जाने का, वो जाके देखे।
3: Moving on to other stories that we are tracking from the state of Maharashtra, and this is in regard with a second year IIT Bombay student that has died by suicide in what is now the third such reported case on the Powai campus in 7 months. The student identified as Sahil Wakode from the Department of Energy Science and Engineering was allegedly caught using a mobile phone during an exam. The IIT Bombay University now says that he had uploaded the question paper on ChatGPT to seek answers, but no disciplinary action had been initiated. The institute says that the student was counseled and assured the incident would not affect his academic career. However, the students protesting on the campus are alleging a different sequence of events, including claims that he was removed from the exam. They were demanding an inquiry into the action taken against Sahil and have also sought the resignation of the Dean of Administrative Affairs in the university. We have a couple of reactions coming in on that big story.
16: आज हमारा ये प्रोटेस्ट के कारण है कि आज हमारा कॉलेज में सुसाइड हुआ था, तो इसीलिए हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और आंसरेबल होने के लिए हम आज प्रोटेस्ट के लिए आया था। और अभी ये पहली नहीं है, यही साल में 4 हो गया और 2 महीने में 2 हो गया, तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा है क्यों हो रहा है, क्या रीजन है सब कुछ। हमारा डीन, डायरेक्टर सब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है उसको हमको बस ये रिपोर्ट दे दो कि हम जानकारी लेंगे, हम वी विल बी आंसरेबल टू दैट, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंसी सब हम लेंगे और इससे आगे कुछ ऐसे नहीं होगा हमारी तरफ से।
17: IIT पवई में एक स्टूडेंट ने सुसाइड की थी, उसके बाद IIT के कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए और उनकी मांगों के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। इसमें IIT एडमिनिस्ट्रेशन उनसे चर्चा करके कुछ अमिकेबल सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे पुलिस का भी एक प्रॉपर बंदोबस्त रखा गया है।
3: A major NDTV impact in Bengaluru has taken place. Our report on the city's pothole mess has prompted action from the Karnataka government. Following our coverage, authorities have ordered repairs of potholes and identified black spots as well, while also planning an alternate route to ease the traffic. The government has also directed officials to put safety measures in place as road repair work begins. The action comes after NDTV highlighted the dangerous state of Bengaluru's roads and questioned why key stretches remain in such poor condition.
18: इतनी परेशानी होती है कि कहीं भी जाने के लिए 1.5 घंटे कम से कम लगता है, 1.5 से 2 घंटे। अभी मैं फ्लाइट मेरी छूट गई थी एक दिन, मैं इधर से जाने का कोई रास्ता ही नहीं है और ना तो इसका मेंटेनेंस हो रहा है, कुछ भी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं लोग, बहुत परेशानी है।
19: पर अभी देखिए सर, आप यहाँ पर पैच वर्क शुरू,
18: ये पैच वर्क से क्या होगा मैडम? हाँ, ये तो आपने करा तब जाके हुआ है, लेकिन यहाँ हम लोग बहुत बहुत परेशान हैं। कभी भी हमारा माने कभी ट्रेन छूट जाएगा, कभी वो छूट जाएगा, हाँ 2 घंटे पहले चलेंगे तब भी प्रॉब्लम हो जाता है।
20: यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है मैम, क्योंकि अभी डे बिफोर यस्टरडे बच्चे, स्कूल के बच्चे, मतलब मेरी खुद की बेटी 2 आवर्स सिर्फ ट्रैफिक में फंसी हुई थी और उसका एग्ज़ाम भी था उस दिन, तो वो उस पैनिक में उसने उसका एग्ज़ाम भी उतना अच्छा हुआ नहीं मेरे ख्याल से। और मैं खुद मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट था और मुझे इतना फीवरिश था, मेरे को पहुँचने के लिए हॉस्पिटल मुझे 2 घंटे लग गए सिर्फ जस्ट शोभा ड्रीम एकर से यहाँ पे, हार्डली 5 से 6 किलोमीटर के लिए। तो मतलब बहुत टेरिबल कंडीशन है यहाँ पे, बहुत प्रॉब्लम है।
0: बट हमने बताया उसके बाद जो है ये काम शुरू हुआ है, तो किस तरीके से आपको क्या लगता है कि हम जब बताते हैं, जब मीडिया बताती है तभी दरअसल
20: हाँ वही जब जब जब आप लोग कुछ इस पे लाइट डालते हैं तभी कुछ होता है, नहीं तो फिर ये कुछ कुछ नहीं करते यहाँ के जो भी है लोकल MLAs।
3: A day after NDTV showed the deplorable conditions of Bengaluru's Vartur Gunjur stretches, in fact, right there you have now an impact that's seen on the ground. Right after NDTV reported about how that the traffic congestions are often seen in these stretches, and you know the commuters facing various difficulties, not just the commuters, in fact also the school children's as well. And there you see now the civic body has swung into an action, and the pothole filling work has began in these stretches. So that's the impact that the NDTV has made it on ground. In fact, now these just a day back that there was a video that had gone viral of whether the school children's were seen traveling for, you know, for 4 kilometers, not less than 2 hours that they really took to reach their homes. The parents were seen being quite panicked, and they had also expressed their frustration as well and the anger while speaking to NDTV. And the school students, in fact, had also appealed the state government and the civic bodies to take up the work in a right manner and give them a proper roads, which is their right. And there you have, right after NDTV reported this hole, the impact is seen on the ground, whether the pothole filling work has begun. The officials, in fact, are also now, have been said that, you know, that they will be working on these stretches overnight from today onwards until unless all the patchworks are been done at this particular stretch now. But hopefully, you see, what is more important is that for the people here who are commuting day and night, it's a matter of their safety as well. It's also about the school students who are spending maximum of their time on the roads. So the safety roads, right road is their right, is what is, of course, the residents and the school students have also expressed while speaking to NDTV. But hopefully this will not be seen as the temporary fix is what that the residents are hoping. And this should be a permanent, there should be a permanent solution is what that they say. With video journalist Govind Ritu Rajpurohit for NDTV from Bengaluru. And before we slip into a short break, here are pictures that Deepika Padukone and Ranveer Singh shared on Instagram, where they have welcomed their second child, a baby girl, today. The couple announced the arrival with a joint social media post reading, "Welcome baby girl 19-9-2026, signed by Dua, Deepika and Ranveer. Their first daughter, Dua, was born in September 2024 and is now a big sister. The baby's name has not been revealed yet.

0: says that he will contest the Bipur. Mamata's Nandigram candidate withdrew nomination and Congress's Milan Pradhan was arrested. It's a big NDTV impact in Bengaluru after NDTV reported on crumbling infrastructure on Bengaluru's Varthur-Gunjur Road. Commissioner has now ordered for urgent road repairs to ensure the safety of school children and public. From Mirabai Chanu to Preeti, India's Commonwealth Games stars head to Japan for Asian Games with the podium ambitions. Two residents of the Saudi capital saw black smoke and flames from an area near the Riyadh International Airport, while other people in the city reportedly heard explosions. We're starting this edition with the breaking news that's just coming in, and this is a reaction that's coming from the former Union Education Minister Dharmendra Pradhan, who has now hit out at Rahul Gandhi after Delhi University Students Union elections result were declared. Now Dharmendra Pradhan has slammed Rahul Gandhi, saying it is system versus students narrative that has been set, and that students need not need solutions, they need not need theatre. Dharmendra Pradhan has flagged higher education access as well, and he has said that politics for students, not over students, should be the motto. And remember, this reaction of Dharmendra Pradhan has come after AVVP, a student wing of the BJP, had swept the Delhi University Students Union election. And these are not university elections that we're talking about. These are, of course, going to have implications that are going to expand nationally as far as the political forum and further elections are concerned. Moving on to some other stories that we are tracking, and this is regarding the Delhi University Students Union election, where, like I just said, AVVP has swept the Delhi University Students Union election. It was the NSUI who had a zero in the election results, and an independent candidate, Dipanshu Shaukeen, had won the place of a vice president. And all of this, remember, has having national implications. What does the Delhi University Students Union elections result mean politically? It means that it is going to have a political implication as far as the elections are concerned. And there is a political war of words, of course, which has erupted. But before we get to that, let's first hear in to what the president, the vice president and the NSUI candidate had to say on the Delhi University student election results today.
1: मैं बस यही कहना चाहूंगा, ये जीत समरसता की है, ये जीत देशभक्ति की है, ये जीत संघ शक्ति की है.
2: When we spoke in the morning, you were talking about the varied issues that you would be working upon. Now, what is the plan ahead, roadmap ahead?
1: जो मैंने आपको बताया था वही सेम है. ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद हम कुछ अलग हो जाएंगे. जो हमने काम कहा था, चाहे वो सेफ्टी ऑडिट को हो, चाहे नए हॉस्टल्स का हो, किसी भी तरीके का हो, विद्यार्थी परिषद पहले ही दिन से अपने काम पर जुट जाएगी.
2: Like to add in terms of, you know, how the contest went. There was a lot of neck to neck at one point with the NSUI candidate as well, and at this point NSUI is alleging that it's been rigged by the ABVP.
1: ये सब स्टूडेंट्स का आपने देखा, जो प्यार विद्यार्थी परिषद को मिला और कुछ अन्य कैंडिडेट्स को भी मिला, लेकिन NSUI को 4-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने.
3: मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. एबीवीपी से पहली कैंडिडेट हूँ मैं, अपने कॉलेज से पहली कैंडिडेट हूँ मैं, अपने एरिया से पहली कैंडिडेट हूँ, पहली लड़की हूँ, तो मुझे उस बात पे बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत थैंकफुल फील हो रहा है.
2: Tell us your age. What is your age? How young you are?
3: 21 years.
2: 21 years, Riya. What is the plan ahead? You're into student politics now.
3: अभी तो हमें अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की चीज़ें देखनी है. जो जो हमें स्टूडेंट्स ने हमसे एक्सपेक्ट किया है वो चीज़ें पूरी करनी है. अपने मैनिफेस्टो का पूरा करना है सबसे.
2: जैसे कि क्या, किन मुद्दों पर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे?
3: सबसे पहले गर्ल सेफ्टी ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद पीजी सेफ्टी, पीजी ऑडिट्स एंड कैंपस सेफ्टी, और बाकी जो जो चीज़ें हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखी है वो हम पूरी पूरी करने की कोशिश करेंगे.
2: क्या कहना चाहेंगी आप टू अदर स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग अस राइट नाउ, व्यूअर्स हु वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स?
3: कभी हार नहीं हारो, क्योंकि मैं अपने कॉलेज इलेक्शंस में प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हारी थी और उसके अगले साल आज मैं सेक्रेटरी की पोस्ट पे जीती हूँ डूसू में. सो कभी अपने आप को डीमोटिवेट मत करना, यू कैन डू दैट.
4: विनोद, इस रिजल्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत भी की, लड़ाई भी लड़ी, लेकिन नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया?
5: देखिए, लड़ाई जो है कैसे लड़ी गई ये महत्वपूर्ण है।